FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 जुलाई 2026। इस समय पूर्वाह्न के 8:55 होने को हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब

आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आज सुबह 9:10 से हम आपको सुनवाएंगे दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान और 9:20 से कार्यक्रम वंदना।

ठीक 10 बजे से आप सुन सकेंगे गाने पुराने ज़माने के, और 10:30 से गाने नए तराने नए।

शाम के ठीक 5 बजे हम आपको सुनवाएंगे दैनिक कार्यक्रम युववाणी और 5:30 से बालवाड़ी कार्यक्रम। शाम के 6:05 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत और रात्रि के ठीक 8 बजे से आप सुन सकेंगे लोक गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबंद। रात्रि के ठीक 9 बजे आप सुन सकेंगे सुगम संगीत।

FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल आज से शुरू। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बेंगलुरु से आई पहली फ्लाइट के यात्रियों का स्वागत किया। प्रदेश में आज से आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का आयोजन। 18 जुलाई तक दो दो पारियों में ली जाएगी ये परीक्षा। प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ा, अधिकांश हिस्सों से बादल छटने से तापमान में मामूली बढ़ोतरी। और हनुमानगढ़ जिला आज अपना 32वां स्थापना दिवस मना रहा है। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल आज से यात्रियों के लिए शुरू हो गया है। पहली फ्लाइट के बेंगलुरु से जोधपुर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यात्रियों का स्वागत किया। ये फ्लाइट फिर से यात्रियों को लेकर जोधपुर से बेंगलुरु के लिए रवाना होगी। करीब 480 करोड़ रुपए की लागत से 37 एकड़ में बना ये 24,000 वर्ग मीटर का भव्य भवन पुराने टर्मिनल से 6 गुना बड़ा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को किया था। एयरपोर्ट के इस टर्मिनल भवन में 8 प्रवेश द्वार और 20 चेक इन काउंटर्स बनाए गए हैं। पहली बार सीधे विमान में जाने के लिए एरोब्रिज, एस्केलेटर और लिफ्ट बनाई गई हैं। अक्टूबर में नए पर्यटन सत्र में कई नए शहरों के लिए यहां से उड़ान संचालित होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत की विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को गति प्रदान करेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके कल प्रदेश दौरे पर रहे। श्री उइके ने उदयपुर में केंद्र सरकार की जनजातीय कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की हर योजना का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष बल दिया। बैठक में जनजाति क्षेत्र विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा के चंबल गार्डन और किशोरपुरा मुक्तिधाम के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि कोटा के समग्र विकास को तेजी से धरातल पर साकार हो रहा है। आने वाले सालों में कोटा शिक्षा के साथ साथ खेल स्वास्थ्य

0: स्वास्थ्य, पर्यटन, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में देश के अग्रणी शहरों में विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि कोटा का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त चंबल गार्डन पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा।
1: आने वाले समय के अंदर ये आधुनिक से बना हुआ चंबल गार्डन भी राजस्थान और देश का सबसे प्रमुख गार्डन होगा जो चंबल के किनारे होगा। ये गार्डन निश्चित रूप से पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र होगा, क्योंकि गार्डन तो बहुत हो सकते हैं लेकिन चंबल का किनारा नहीं हो सकता। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र राजस्थान और देश का प्रमुख शहर बने, इस सारे देश की समृद्धि खुशहाली का आधार होगा।
0: प्रदेश में आज से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से ये परीक्षाएं 18 जुलाई तक दो दो पारियों में ली जाएंगी। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ये भर्ती परीक्षा कुल 9651 पदों के लिए है। 27 जिलों में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा में नकल रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा के सफल संचालन और शिकायतों के जल्द निस्तारण के लिए सभी जिलों में जिला स्तरीय परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी होने के बाद अधिकांश हिस्सों से बादल छंटने लगे हैं और बारिश की गतिविधियां सीमित हो गई हैं। साथ ही पारे में भी उछाल देखा गया है। श्रीगंगानगर 41.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा फलोदी और जैसलमेर में दिन का पारा 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड हुआ। इस बीच एक हफ्ते से बारिश नहीं होने के कारण किसान परेशान नजर आ रहे हैं। बाड़मेर में आज तीसरे दिन भी धूल भरी आंधी चल रही है। दिन रात लगातार आंधी चलने से अंकुरित हो रही खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 जुलाई से मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है, जिससे बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। आज हनुमानगढ़ जिले का 32वां स्थापना दिवस है। 3 दिनों से मनाया जा रहा पंच गौरव भटनेर उत्सव का आज समापन होगा। इसके तहत कल जिले भर में ब्लॉक स्तरीय क्विज प्रतियोगिता, खेलकूद, चित्रकला, मानव श्रृंखला और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज से 32 वर्ष पूर्व 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर जिले से अलग होकर हनुमानगढ़ राजस्थान का 25वां जिला बना था। स्थापना दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय पंच गौरव भटनेर उत्सव का समापन रन फॉर हनुमानगढ़ शोभा यात्रा और राजीव गांधी स्टेडियम में सुरमई संध्या स्टार नाइट के साथ होगा। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़।
0: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार 9वीं से 12वीं कक्षा में दाखिले के लिए अब 25 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि 1ली से 8वीं कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया साल भर चलती रहेगी। राजधानी जयपुर के सभी कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक आसान निकास नीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने इन्हें एग्जिट और सुरक्षा के लिए स्पष्ट नीति बनाने को कहा है। संस्थानों को पाठ्यक्रम छोड़ने पर विद्यार्थियों को आसानी से फीस वापसी का प्रावधान भी करना होगा। इसके अलावा मानसिक तनाव से निपटने के लिए नियमित काउंसलिंग को भी अनिवार्य किया गया है। जोधपुर में आज से 17वां अंतर्राष्ट्रीय रंग मल्हार कार्यक्रम शुरू हुआ। वीर दुर्गादास राठौड़ स्मृति समिति के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष डॉ. महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि मसूरिया पहाड़ी पर स्थित वीर दुर्गादास राठौड़ स्मारक स्थल पर ये कार्यक्रम मारवाड़ में अच्छी बारिश, सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना के उद्देश्य से किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल आज से शुरू। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बंगलुरु से पहली फ्लाइट के यात्रियों का स्वागत किया। प्रदेश में आज से आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का आयोजन। 18 जुलाई तक दो दो पारियों में ली जाएगी परीक्षा। प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ा, अधिकांश हिस्सों से बादल छंटने से तापमान में मामूली बढ़ोतरी। और हनुमानगढ़ जिला आज अपना 32वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 MHz पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

श्री राम के सीता के साथ वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण को अपने तन मन की सुधि जाती रही। वे व्याकुल होकर अग्रज के चरणों में आ गिरे। उदास मुखमंडल, कांपता शरीर, आंखों में उमड़ते आंसुओं ने निःशब्द उनकी पीड़ा प्रकट कर दी। श्री राम ने उन्हें धीरज बंधाया। प्रेमवश अधीर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता, गुरु और स्वामी की सीख मानकर आचरण करते हैं, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। हे भाई, भरत और शत्रुघ्न इस समय अयोध्या में नहीं हैं। वृद्ध महाराज मेरे वन प्रवास के कारण बेसुध हैं, अतः तुम्हें यहीं रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि मैं तुम्हें अपने साथ वन में ले गया तो अयोध्या नगरी एकदम अनाथ हो जाएगी। किंतु आसन्न वियोग की पीड़ा से अधीर लक्ष्मण पर श्रीराम के शीतल वचनों का वही प्रभाव हुआ जो पाले का कमल पर होता है। लक्ष्मण की ये वेदना है कि वे दास हैं, और यदि स्वामी उनका त्याग भी कर दें तो वे क्या कर सकते हैं। सच तो ये है कि वे श्रीराम के स्नेह से सिंचित मात्र एक शिशु हैं, जो श्रीराम के अतिरिक्त गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानते। धर्म और नीति संबंधी उपदेश की आवश्यकता तो उसे होती है जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य और सद्गति की अभिलाषा हो, जो मन वचन कर्म से श्रीराम के चरणों में प्रेम रखता हो। क्या उसका त्याग किया जा सकता है?

अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे वंदना।

युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582401168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: कलाकार अनूप जलोटा की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे वंदना। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए झलकी गुड़ तेल।
1: मीठा गुड़, मीठा गुड़,
2: तेल ले लो, तेल तेल तेल तेल वाला तेल तेल
1: गुड़ ले लो, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ मीठा गुड़,
2: तेल तेल तेल तेल वाला तेल तेल
1: गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़
2: तेल तेल तेल वाला तेल ले लो, शुद्ध गाने का ताजा तेल।
1: अरे वे तू चुपचाप रह।
2: मैं क्यों चुपचाप रहूं, मेरी भी दुकान है।
1: अरे काहे की दुकान है, कोई ग्राहक तो आ नहीं रहा,
2: तो मैं क्या करूं। तेल वाला तेल तेल
1: से इस आदमी ने मेरे सामने दुकान खोली है, तब से मेरे ग्राहक आने बंद हो गए।
2: अरे मैंने क्या दुकान खोली है, मेरी तो पहले से दुकान थी। दुकान तो तूने खोली है बाद में।
1: अरे तो मुझे क्या पता था कि यहाँ दुकान खोलूंगा तो ग्राहक नहीं आएंगे।
2: मुझे भी क्या पता था जब से तू दुकान खोलेगा तो ग्राहक ही नहीं आएंगे। तेल वाला तेल तेल तेल तेल
1: गुड़ वाला, गुड़ वाला गुड़ गुड़ गुड़ गुड़
3: वो ग्राहक आ रहा, देख
1: आ
3: रहा ग्राहक है ना।
1: अरे आओ आओ भाई साहब, नमस्कार नमस्कार
4: नमस्कार।
1: गुड़ ले जाओ भाई साहब, मीठा गुड़ गुड़ गुड़ ले जाओ।
4: मैं तो पीपा ले आता हूँ, साल भर चलता है।
2: भाई साहब तेल ले लो, शुद्ध घाने का ताजा तेल।
4: नहीं भैया, मैं तो बोरी ले आता हूँ, साल भर चलता है।
2: अरे यार, ये मेरे तेल की बोरी कैसे लाता है
1: यार, जैसे गुड़ का पीपा लाता है।
2: अजीब अजीब लोग हैं, अब क्या करें। अरे तेल ले लो
1: यार।
2: क्या चुप रहा,
1: कोई नहीं आ रहा, क्या करें, टाइम पास कैसे होगा।
5: जय शिव शंकर।
1: अरे पंडित जी आ गए,
2: पंडित जी।
5: जय जय जय शिव शंकर।
1: पंडित जी राम राम राम राम।
5: जीते रहो भाई, जीते रहो।
1: पंडित जी गुड़ ले जाओ, गुड़ गुड़ बहुत मीठा गुड़ है, गुड़
5: बहुत मीठा है क्या। ला दे दे सर।
1: लो पंडित जी लो।
5: भाई वाह, बहुत मीठा है, वाह जय जय शंकर जय शिव शंकर।
2: पंडित जी महाराज तेल ले लो ना, शुद्ध घानी का ताजा तेल।
5: शुद्ध घानी का है क्या।
2: शुद्ध घानी का
5: हजरा दिखाए एक दफे।
2: ये लो
5: तुम्हें दे दे। ला भाई ला। अरे वाह, जय शनि देवता, जय
2: शनि देवता।
1: अरे क्या हो रहा है,
2: अरे क्या नाटक है, कोई आता है तो पैसे नहीं देता और वैसे कोई आता ही नहीं है।
1: क्या करें यार, एक काम करते हैं यार। एक काम करना, अपना शेर शायरी करते हैं।
2: शेर शायरी,
1: हाँ।
2: इससे क्या ग्राहकी होगी क्या।
1: अरे क्या पता हो जाए यार,
2: शेर शायरी से ग्राहकी
1: हो जाएगी।
2: तो मेरे को बहुत अच्छे अच्छे शेर आते हैं।
1: तेरे को आते
2: हैं।
5: मिर्चा गालिब
1: है ना, मिर्चा गालिब के। सुना आया।
2: हाँ, बहुत जोरदार शेर है, देख
1: स्टार्ट करता हूँ मैं।
2: हाँ सुना। आज की रात,
1: हाँ
2: आज की रात आसमान में तारे कुछ ऐसे चमक रहे हैं।
1: आज की रात आसमान में तारे कुछ ऐसे चमक रहे हैं।
2: अरे ऐसे नहीं यार, बीच में मत बोल। आज की रात आसमान में तारे कुछ ऐसे चमक रहे हैं।
1: कैसे चमक रहे हैं,
2: जैसे कल चमक रहे थे। है ना, देख जोरदार।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया
2: है ना।
1: ऐसे शेर तो मेरे को भी आते हैं।
2: आते हैं क्या।
1: हाँ
2: सुनाता है।
1: सुनाऊं। सुन देख। तन्हाई को चीरती हुई दूर से एक आवाज आई।
2: तन्हाई को चीरती हुई दूर से एक आवाज आई।
1: तन्हाई को चीरती हुई दूर से एक आवाज आई।
2: क्या,
1: केले ले लो, केले ले लो, केले ले लो।
2: अरे केले बेच रहा है ठेले वाला है, आवाज आई दूर
1: तो
2: से।
1: तन्हाई को चीर दी ना आवाज ने।
2: अरे क्या आवाज चीर दी, इससे बड़ा शेर मेरे पास है।
1: ओ, तेरे पास शेर।
2: आ, सुनो। देख वो ग्राह करा,
1: कौन था
2: वो ग्राह करा।
1: भाई साहब राम राम।
6: राम राम।
1: गुड ले लो भाई साहब, गुड
6: गुड ले लो, गुड।
1: हाँ
6: कहाँ तक पढ़ा लिखा है।
1: मैं तो आठवीं फेल हूँ भाई साहब।
6: आठवीं फेल हूँ तभी गुड़ बेच रहा है, गुड़ी।
2: भाई साहब, भाई साहब तेल ले लो,
6: तेल ले लो, ये देखो उधर गुड़ ले लो, इधर तेल ले लो। तू कहाँ तक पढ़ा लिखा है।
2: मैं आठवीं में तीन बार फेल।
6: आठवीं में तीन बार फेल तभी तेल बेच रहा है, तेली।
1: अरे भाई साहब आप कहाँ तक पढ़ लिए, जो बताना जरा।
6: मैं तो बीए पास हूँ।
1: अच्छा बीए पास हूँ, क्या करते हो भाई साहब।
6: मेरी दुकान है, खुद की शॉप है, स्टेशन के सामने है।
1: काहे की है,
6: भीख मांगने की।
1: जी बात भी।
2: अरे क्या है जी, अरे इनसे लोग भाग आ रहे हैं यार,
1: यार तो टाइम ही पास नहीं हो रहा यार,
2: तो क्या करें अब
1: यार। ऐसा करना, एक शेर और सुना यार,
2: एक शेर और सुनाओ। मैं सुनाता हूँ है ना।
1: हाँ,
2: मैंने तुझे प्यार किया।
1: वाह
2: ध्यान से सुनना।
1: हाँ सुन रहा हूँ।
2: मैंने तुझे प्यार किया, तेरे बाप ने मुझे पीटा।
1: ओहो, मैंने तुझे प्यार किया और तेरे बाप ने मुझे पीटा।
2: हाँ मैंने तुझे प्यार किया।

0: तेरे बाप ने मुझे पीटा और साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। और तन की शक्ति मन की शक्ति
1: गुड़ मीठा यार। एक शेर और सुनाता
0: हूँ, सुना सुना
1: मेरे को अभी भी याद आया,
0: सुना
1: बहुत बढ़िया शेर है,
0: सुना
1: सुन कि चश्मा लगाता हूँ,
0: हाँ
1: चश्मा लगाता हूँ तो कोई लड़की देखती नहीं,
0: वाह वाह
1: चश्मा लगाता हूँ तो कोई लड़की देखती नहीं,
0: हाँ
1: और चश्मा हटाता हूँ तो दिखती नहीं।
0: तेरे को चश्मा लगाता है तब भी नहीं दिखती, लगाता है तब भी नहीं दिखती।
1: ग्राहक आया अब तो मेरा गुड़ बिठेगा ही, बिकेगा भाई बिकेगा। भाई साहब गुड़ लोगे क्या? गुड़ ले लो, गुड़
2: अरे क्यों ले लो भाई तेरा गुड़,
1: अरे ले लो भाई साहब गुड़ ले लो,
2: जा पढ़ाई कर पढ़ाई
1: पढ़ाई।
0: भाई साहब तेल तो ले लो,
2: तेल लो तेल ले लो। अरे भाई क्यों ले लूं तेरा तेल
0: तो क्या?
2: अरे जाकर अपनी पढ़ाई कर पढ़ाई
1: पढ़ाई कर पढ़ाई कर। लगता है इसका बेटा फेल हो गया होगा, पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है।
0: अजीब आदमी है यार। एक शेर और सुनाऊं मैं?
1: अरे सुना यार,
0: बहुत जोरदार
1: बढ़िया शेर
0: है ना, सुनाऊं?
1: हाँ सुना।
0: मैं तेरा चांद तो तू मेरी चकोरी,
1: वाह वाह।
0: मैं तेरा चांद तो तू मेरी चकोरी,
1: मैं तेरा चांद और तू मेरी चकोरी,
0: और मैं तेरा समोसा तो तू मेरी
1: कचोरी। अरे वो देखो हमारा पतला सा ग्राहक, ये तो गुड़ जरूर खाएगा, गुड़ खा के मोटा होगा। आजा आजा आजा आजा आजा, अबे आ रहे हैं, हाँ आ रहा ग्राहक, आ रहा वो
0: आ रहा
1: तो लेगा ही गुड़। आओ भाई साहब आ जाओ आ जाओ। क्या चाहिए भाई साहब?
2: नमक दे दो। नमक
1: नमक
2: नमक
1: नमक तो नहीं है भाई साहब हमारे पास, हमारे तो गुड़ की दुकान है, गुड़ ले जाओ मीठा गुड़।
2: सब्जी के अंदर गुड़ नहीं डलता, नहीं तो लट्टा बन जाता है वो।
1: अच्छा
2: नमक ही डलता है, नमक चाहिए मुझे
1: तो। नमक हमारे यहाँ नहीं मिलता, गुड़ की दुकान है
2: तो मैं क्या करूँ, मेरे को तो नमक चाहिए ना।
1: अरे तो नमक नहीं है हमारे पास।
2: अरे तो आपने तो बुलाया, आवाज देखे वैसा, इधर आओ इधर आओ।
1: तो हम तो गुड़ बेचते हैं यार, गुड़ के लिए बुलाया
2: तो गुड़ ही बेचते हो।
1: हाँ
2: नमक नहीं बेचते?
1: अरे नहीं बेचते यार।
2: अच्छा एक काम करो फिर,
1: हाँ
2: साबुन दे दो। साबुन
1: साबुन नहीं है यार, खाली गुड़ है मेरी दुकान में, गुड़ गुड़ गुड़।
2: साबुन भी नहीं है?
1: अरे नहीं है यार।
2: चलो दो किलो आटा दो।
1: फिर कह दिया ना नहीं है कुछ भी, खाली गुड़ है मेरे पास।
2: एक काम करो आप,
1: क्या है
2: ताला लगा दो दुकान पे।
1: हाँ क्यों?
2: नमक नहीं, आटा नहीं है, बेसन नहीं है।
1: क्या आदमी है,
2: यहाँ पे कोई है क्या?
1: हाँ मैं हूँ ना। आओ भाई साहब आओ।
2: वो नमक दे दो भाई साहब।
1: नमक जी भाई साहब, मेरी दुकान में तेल मिलता है।
2: तेल नहीं मिलता है?
1: हाँ तेल मिलता है।
2: कौन सा तेल देते हो आप?
1: वो शुद्ध घाणी का ताजा तेल।
2: क्या घाणी क्या होती है?
1: घाणी वो होती है ना लकड़ी की, जिसमें कोलू घूमता है, तेल निकलता है फिर।
2: अच्छा तेल निकलता है? हाँ, नमक नहीं आता?
1: नमक नहीं निकलता भाई, तेल ही निकलता है।
2: पर मेरे को तो भाई साहब नमक चाहिए था ना,
1: मेरी दुकान में नहीं है भाई साहब।
2: अच्छा नमक नहीं है तो साबुन दे दो।
1: अरे साबुन नहीं है यार, तेल है दुकान में सिर्फ, लिख रखा है तेली।
2: अच्छा अच्छा नहीं मैं तो तेल से थोड़ी ना आऊंगा, मतलब साबुन से ना आता हूँ।
1: तो साबुन से नहाता है तो तेल मिलता है ना दुकान में, साबुन की दुकान में जा भैया यार।
2: अच्छा समझ गया, साबुन नहीं है।
1: हाँ, नहीं।
2: लाओ फिर दो किलो आटा दे दो।
1: क्या दे दू?
2: आटा दे दो।
1: आटा दू?
2: हाँ
1: ये ले आटा।
2: कितने पैसे हुए?
1: अजीब अजीब लोग बाग आते हैं।
0: वही तो यार, परेशान कर दिया यार,
1: अब क्या करें यार।
0: कह रहे हैं गुड़ की दुकान है, नमक दे दो आटा दो, क्या करें यार, ग्राहक करनी पड़ेगी, इसमें तो बोनी भी नहीं हुई।
1: अरे लेकिन अब क्या करें?
0: और यार एक आइडिया है।
1: आइडिया?
0: हाँ
1: क्या?
0: एक काम करते हैं।
1: हाँ
0: है ना, देख तू ऐसा कर,
1: हाँ।
0: तू मेरे पास है ना गुड़ खरीदने आ, उसके बाद मैं तेरे पास तेल खरीदने आऊंगा, कम से कम बोनी तो होगी यार।
1: मैं तेरे पास गुड़ खरीदने
0: आऊंगा? हाँ तू मेरे पास गुड़ खरीदने आ,
1: और फिर तू मेरे पास तेल खरीदने
0: आ। मैं तेरे पास तेल खरीदने आऊंगा।
1: हाँ यार ये आइडिया ठीक है यार,
0: बिल्कुल ठीक है ना।
1: आता हूँ ना, देख
0: आजा
1: आता हूँ।
0: हाँ आ जा।
3: आ जाओ
0: आ जाओ
3: आ जाओ
0: आ जाओ
3: आ जाओ
0: चुप आ जा।
1: भाई साहब
0: हाँ
1: एक लीटर गुड़ दे दो।
0: हैं? अबे अबे गुड़ किलो में आता है, लीटर में नहीं आता
1: है?
0: लीटर में नहीं आता गुड़।
1: अच्छा किलो में आता है?
0: हाँ किलो में आता है। यूँ बोल एक किलो गुड़ दे दो।
1: एक किलो गुड़ दे दो।
0: हाँ
1: मैं दोबारा आता हूँ।
0: हाँ दोबारा
1: दोबारा आ रहा हूँ, है ना।
0: हाँ
3: आ जाओ
0: आ जाओ
3: आ जाओ।
0: अबे आ जा
1: भाई साहब।
0: हाँ
1: एक किलो गुड़ दे दो।
0: हाँ।
1: बोतल में।
0: हाँ
1: अबे तेरे से कितनी बार कहा पर गुड़ बोतल में आएगा क्या?
0: तो फिर कहा
1: गुड़ ठोस होता है यार, गुड़ थैली में देते हैं। तू यूं बोल एक किलो गुड़ दे दो केवल, बस बोतल बोतल मत बोल।
0: मेरे को नहीं आता है कुछ।
1: अरे यार तू अजीब आदमी। तू देख मेरी दुकान में बैठ, मैं तेरे को बताता हूँ कि गुड़ कैसे मांगते हैं।
0: हाँ मैं तेरी दुकान में।
1: हाँ तू मेरी दुकान में।
0: हाँ तू आ,
1: है ना। मैं आऊँ,
0: तू आ,
1: आ रहा हूँ मैं।
0: हाँ आ जा
1: ना।
0: हाँ
3: आ जाओ
1: आ जाओ
3: आ जाओ।
0: भाई साहब
1: हाँ
0: एक किलो गुड़ देना।
1: बोतल लाया है?
0: हाँ? हाँ?

अभी आप सुन रहे थे झल की गुड़ तेल FM बैंड 103.7 MHz पर। अब आप सुनेंगे कलाकार पंकज उदास की आवाज़ में गैर फिल्मी गज़लें।

अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज़ में गैर फिल्मी गज़लें। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे गाने पुराने ज़माने के।

कितना बड़ी खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

0: आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में बैराग फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने। गाने पुराने ज़माने के जारी रहेंगे इस अंतराल के बाद।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में बंदिश फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

बातों बातों में फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं किशोर कुमार और आशा भोंसले की। गीत को लिखा अमित खन्ना ने। गाने पुराने ज़माने की जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

ज्वेल थीफ फिल्म से इस गीत को भी आपने सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने ज़माने के, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 10:30 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए गाने नए, तराने नए।

0: मोहम्मद इरफान की आवाज़ में किक फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा मयूर पुरी ने। गाने नए तराने नए का सफ़र जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagaur@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल,

आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youtexperess@gmail.com पर और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

मीका सिंह की आवाज़ में सुल्तान फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा इरशाद कामिल ने। अगला गीत सुनिए नेहा कक्कड़ की आवाज़ में, क्वीन फिल्म से।

लाभ जोंजुआ सोनू और नेहा कक्कड़ की आवाज़ों में क्वीन फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए रेखा भारद्वाज की आवाज़ में, फिल्म का नाम है बर्फी।

अभी आप सुन रहे थे गाने नए तराने नए FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: पात्रीकर
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जयंत जी,
0: जी
1: विविध भारती की एक रचनात्मक पहल है सृजन भारती।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते हैं
1: हाँ।
0: कि इसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रस्तुतिकरण होता है।
1: हाँ, तो पिछले दिनों एक कार्यक्रम विशेष आयोजित किया गया था जिसमें सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक श्री राजेश रेड्डी ने अपनी शायरी से हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था।
0: जी मंदाग्नि जी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्ष थी जानी मानी कवियत्री और अभिनेत्री दीप्ति मिश्रा जी।
1: जी बिल्कुल,
0: इस कार्यक्रम में गण्यमान्यों की उपस्थिति थी जिनमें विविध भारती के सेवानिवृत्त कर्मचारी खास तौर से कमला कुंदर जी आई थी, कार्यक्रम अधिकारी कमलेश पाठक जी उपस्थित थी,
1: बिल्कुल
0: सेवानिवृत्त उद्घोषिका निम्मी मिश्रा जी उपस्थित थी।
1: जी हाँ,
0: और इस कार्यक्रम के अंतर्गत रेड्डी साहब का साक्षात्कार किया था हम सबके चहेते उद्घोषक यूनुस खान ने।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो विविधा में आज हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं इस विशेष बातचीत के संपादित अंश। नमस्कार, सृजन भारती में आप सभी लोगों का विविध भारती परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि सृजन करना आमतौर पर नवीनता या नवाचार का संकेत होता है, तो विविध भारती ने सृजन भारती के जरिए नवाचार करने का संकल्प लिया है और ये संकल्प आगे चलता रहेगा। आज इसी कड़ी में सृजन भारती के माध्यम से हम जुड़ेंगे जाने माने शायर राजेश रेड्डी साहब और हमारी मुख्य अतिथि कवियत्री और अभिनेत्री दीप्ति मिश्र जी से। शायर जिंदगी की आम समस्याओं को सरलता से कह देने वाले होते हैं। रेड्डी साहब विविध भारती में केंद्र निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं और खासतौर से मुझे खुशी है आज की इतने बड़ी शख्सियत के बारे में मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है। एक शानदार शख्सियत और एक संजीदा शायर राजेश रेड्डी साहब उन शायरों में से हैं जिन्होंने गजल की नई पहचान को और मजबूत किया है। आपकी गजल को जाने माने गजल गायक जगजीत सिंह जी ने भी अपनी आवाज दी है और आपके 3 संग्रह आ चुके हैं, उड़ान, आसमान से आगे और वजूद।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मंदाकिनी जी। ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि रेड्डी जी अपने ही घर में लौटे हैं। विविध भारती में बहुत सारा वक्त रेड्डी जी के साथ बीता है और बहुत सारी यादें हैं। इस आयोजन का नाम हमने रखा है ये जो जिंदगी की किताब है, ये इसलिए क्योंकि ये रेड्डी जी की एक बहुत ही मशहूर गजल जिसे जगजीत जी ने गाया है। तो रेड्डी जी की गजलों की खासियत ये है कि उनकी गजलों का हर शेर बहुत वजनदार हुआ करता है और वो पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन गजलों के लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत रेड्डी जी आपका। आज आपसे बातचीत तो करेंगे ही, साथ में आपके अशार भी सुनेंगे, तो यहाँ बहुत सारे पुराने साथी आपके समय के भी मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको विविध भारती में अपने घर में लौटते हुए?
3: नहीं, बहुत अच्छा लगता है और मैं तकरीबन 14 साल बाद लौटा हूँ।
2: क्या बात है, वनवास खत्म हुआ है।
3: रिटायरमेंट के बाद आज पहली बार दाखिल हुआ विविध भारती में।
2: वाह,
3: और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूरा परिवार जिसके साथ मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा और कुछ पुराने साथी मौजूद हैं, निमी जी, कमलेश जी, कमला जी और यूनुस और ममता, तो उस जमाने में भी खूब हमारे साथ एक्टिव रहे। पूरी टीम का जो क्रिएटिव टीम का जो हिस्सा थे बड़े, जिनके बल पर हम बहुत कुछ सोच पाए कर पाए। अब मेरा सौभाग्य था, मेरी खुशकिस्मती थी कि वो जो विविध भारती का एक मेरे अपने करियर का आखिरी दौर था, लेकिन मेरे अपने करियर का एक पीक भी था वो, कि जिसे मैं अपने अच्छी टीम के साथ और भरपूर टीम के साथ जिन्होंने अपना 100% जो हम सोचते थे उसके साथ किया और लोगों ने पसंद किया और विविध भारती की टीम को, विविध भारती के इस पूरे परिसर को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज ये फिर मौका मिला मुझे।
2: क्या बात है। सर, किसी एक गजल से शुरू करते हैं ताकि एक महफिल जो है उसकी एक बुनियाद बन जाए।
3: तरन्नुम से पेश करता हूं शुरू में ही।
2: इरशाद,
3: ये गजल जगजीत सिंह साहब ने मेरी कई गजलें गाई, लेकिन ये गजल मैं इसलिए सुना रहा हूं कि ये उनके आखिरी एल्बम की पहली गजल है जो रिकॉर्ड हुई, लेकिन रिलीज होने से पहले ही एल्बम वो इस दुनिया से चले गए। तो उनकी याद में, उनके सम्मान में मैं ये गजल पेश कर रहा हूं।

0: क्या बात है।
1: इस परिंदे में जान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। खशियत जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
0: वाह
1: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान
0: क्या बात
1: बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और ये शेर देखें, जिंदगी का क्रम।
0: इरशाद

0: एक नया इम्तिहान
1: वाह वाह वाह,
0: बाकी
1: क्या बात है।
0: है, जाने कितनी उड़ान। और इस गजल का आखिरी शेर, खास शेर, हर युग का सच है लेकिन इस युग का कुछ ज्यादा सच है।
1: जी
0: सर
1: जी
0: देखें, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, अजय भाई, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में
1: क्या बात है,
0: जुबान
1: क्या बात है, वाह
0: बाकी।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह वाह।
0: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके,

0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। काश के ये जगजीत जी की आवाज में जो रिकॉर्ड हुआ ये रिलीज हो जाए तो हम सभी के लिए ये एक अनमोल चीज बन जाएगी। मुझे लगता है कि आपकी दास्तान को शुरू से शुरू करते हैं। जयपुर में वो कौन सा दौर था जब आपने लिखना शुरू किया था? दीप्ति जी कहती हैं कि जब इश्क होता है तब लोग लिखते हैं।
1: जब दिल टूटता है तो
2: ये सवाल दीप्ति जी ने पिछली मुलाकात में भी पूछा था। ये गोष्ठी में मेरे साथ ये हुआ कि दिल लगा तो फिर लगता ही चला गया। मतलब ये था कि वो हम लोग एमए में साथ थे और अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, लेकिन उनके साहस ने इस सपने को सच बनाया
0: जी,
2: और अब वो मेरी अर्धांगिनी हैं और हम अब मेरी जो सृजन यात्रा में उनका बड़ा योगदान है। मुझे उन्होंने घर की जिम्मेदारियों से एक तरह से मुक्त रखा है, अपना लिखना पढ़ना मैं करता रहता हूँ, तो ये उनका मुझ पर बहुत बड़ा वो है, सहयोग भी एहसान भी। तो दिल टूटने का जवाब यह है।
0: उनके लिए कुछ लिखा है सर आपने?
2: पढ़ दूं? ये एक मेरी शुरुआत गीत से हुई थी वो, और फिर बाद में गजल में आया, तो ये शुरुआती गीतों में से एक है।

0: गीत मधुर मौसम ने भेजा है अपना पैगाम,
1: क्या बात है।
0: अधरों से पत्र लिखा अधरों के नाम।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपने अभी ये एक जिक्र किया कि गीतों के जरिए आपने लेखन की दुनिया में प्रवेश किया था। मुझे ये पता है कि एक गीत आपका ऐसा है जो नीरज जी से बड़ी प्रशंसा उस गीत ने पाई थी। हम चाहते हैं कि उसका जिक्र यहां हो।
0: तो वो गीत मैं पढ़ रहा हूँ। ये गीत मैंने जब मैं शुरुआत में गीत लिख रहा था, जयपुर में मंचों पर कवि सम्मेलन में जा रहा था, तो ये गीत मैंने उदयपुर के कवि सम्मेलन में पढ़ा था, जहाँ नीरज जी उस वक्त उनकी क्या शान थी और क्या जलवा था। तो उन्होंने ये वो मुख्य कवि थे और मैं एक तरफ से शुरुआती उन लोगों में से था। तो ये गीत जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने अपने गले की माला मेरे गले में डाली और एक सम्मान और एक प्यार, एक आशीर्वाद मुझे दिया। तो मैं वो गीत पढ़ रहा हूँ।
1: स्वागत है।

0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
1: जिंदगी की बस्ती में मुश्किलों का मेला है, बात क्या करे कोई हाँफती हवाओं से, बात क्या करे कोई हाँफती हवाओं से, कब तलक कटेगी ये जिंदगी दुआओं
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: से,
0: क्या बात है।
1: कब तलक कटेगी ये जिंदगी दुआओं से, दर्द के समंदर में कामना ने ठेला
0: वाह,
1: है,
0: दर्द के समंदर में कामना ने
1: दर्द
0: ठेला है।
1: के
0: क्या

0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। विविध भारती की आपके दौर की बात कर ली जाए, रेडियो का जो आपका सफर है आकाशवाणी का, उसमें आज मुझे एक दिलचस्प बात यह पता चली कि आपने समंदर के किनारे भी काम किया, रेगिस्तान में भी काम किया, पहाड़ों पर भी काम किया। तो विविध भारती का जो मामला है, विविध भारती में आप लगातार कई बार रहे और इस दौरान काफी सारी चीजें हैं जो हैं आपने शुरू की, जैसे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम है वो आपकी देन है, सरगम के सितारे आपकी देन है, यूथ एक्सप्रेस गुलदस्ता है और सखी सहेली सर के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था। हमारे कुछ पुराने साथी मौजूद हैं, मैं उनका भी यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए जिक्र कर लूं कि यहाँ हमारी भूतपूर्व उद्घोषिका निमी जी मौजूद हैं और उसके अलावा गोपाल सिंह नेपाली जी की बेटी कमला कुंदर जो कि विविध भारती में हमारी साथी थी, कमलेश पाठक जी मौजूद हैं जो प्रोड्यूसर थी, ये सारे पुराने लोग यहाँ एक साथ मौजूद हैं और आपके साथ ये सारे काम भी कर चुके हैं। तो विविध भारती से जुड़ी कुछ यादें बाटी है।
1: विविध भारती से जुड़ी तो यादें ही यादें हैं, मतलब और खूब यादें हैं। मेरा बेहतर और बेहतरीन समय आकाशवाणी में अगर कहीं गुजरा है तो या तो जयपुर और ये फिर विविध भारती। ये वो चैनल है जिसे सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ, जिसको सुनते सुनते मैंने गुनगुनाना सीखा, गाना सीखा और कभी कल्पना नहीं की थी कि उसी चैनल को जिसको मैं सुन सुन के बड़ा हो रहा हूं, मैं कभी आऊंगा और इस चैनल में कार्यक्रम की जिम्मेदारी मेरी होगी और मैं उसको निभाऊंगा।
0: क्या बात,
1: तो ये
0: क्या बात।
1: तो ये सौभाग्य है मेरा और मुझे तीन अलग अलग अवसरों पर विविध भारती में काम करने का मौका मिला और हर बार बहुत अच्छी टीम मिली, जिनकी दो सदस्य तो अभी भी बहुत सक्रिय हैं, यूनुस और ममता। बाकी भी वो दौर जब मैं 12 में रिटायर हुआ, उससे पहले का जो दौर था बहुत क्रीम टैलेंट था विविध भारती का, अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग और अपना 100% देने वाले लोग। तो विविध भारती से विदा होते हुए मैं गर्व भी महसूस कर रहा था, खुशी भी महसूस कर रहा था, मुझे कहीं नहीं लगा कि मैं किस आयोजन किस ऑर्गेनाइजेशन में इतने सामने रही। मैं बहुत शान के साथ, बहुत खुशी के साथ, संतोष के साथ यहां से गया हूं।
0: वापस शायरी की दुनिया की तरफ लौटते हैं। अब मैं आपसे उस गजल की फरमाइश कर रहा हूं जिसको सुनने के लिए सब लोग यहां पर जमा है, जिसे पंकज उधास ने गा के बहुत मशहूर किया था।
1: ये वो गजल है जिसने सारी दुनिया में मेरी पहचान बनाई या मुझे पहुंचाया। आज भी मतलब मैं जाता हूं उससे पहले ये गजल वहां होती है और लोग इसके लिए कहते हैं कि वो जरूर सुनाएं। मैं पेश कर रहा हूं यूनुस।
0: इरशाद, इरशाद।

0: का फना होने से डरता है यहाँ हर शख्स। ये खास शेर
1: इरशाद।
0: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा
1: वाह वाह वाह वाह।
0: मेरे

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है। और ये शेर आज के इंसान के नाम
1: इरशाद।
0: न बस में जिंदगी इसके न काबू मौत पर इसका,
1: वाह,
0: न बस में जिंदगी इसके न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से
1: क्या बात,
0: डरता
1: क्या बात,
0: है,
1: वाह वाह वाह वाह।
0: खिलौना है। शुक्रिया। और ये गजल का आखिरी शेर, खास शेर, वो बच्चे वाला शेर जितना प्यार से सुना गया, ये भी उतना ही मेरे हिसाब से सच्चा शेर है। अमीर हो गरीब हो किसी मुल्क का इंसान हो, एक पल आता है कि वो कहता है बहुत हो गया ऊपर वाले, वापस बुला ले। लेकिन जब वो पल आता है तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, शेर है, देखें। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा

0: और रिहा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता
1: क्या बात है, क्या बात है। इस गजल से जुड़ी हुई एक बड़ी यादगार घटना है, उसके बारे में जरा बताइए।
0: है। ये गजल पंकज जी ने गाई, दुनिया में पहुंची। इसके साथ दो घटनाएं
1: अच्छा दो हैं जी, मुझे मैंने
0: हैं।
1: एक सोचा था। जी,
0: एक घटना तो यह कि जब ये पंकज जी ने गाई, और उस वक्त एक सिर्फ दूरदर्शन ही था, ये प्राइवेट चैनल वगैरह तो उस जमाने में थे ही नहीं, तो एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम था आरोही,
1: जी,
0: है ना, उस
1: दूरदर्शन
0: वक्त।
1: का।
0: हाँ, तो उसमें ये सुगम संगीत के और एक से एक प्रोग्राम आते थे जिसमें जगजीत जी, पंकज जी, कौन कौन नहीं आया उसमें। तो ये गजल जब उन्होंने गाई तो उस वक्त स्क्रीन पे राइटर का नाम नहीं आता था या नहीं आया था उस दिन, ये जो भी है। तो ये गजल गाई, मेरा एक जयपुर का एक पुराना दोस्त था, वो अपने घर में जैसे सब लोग देख रहे थे, देख रहा

0: प्रोग्राम, तो ये जब गजल आई तो दीप्ति जी वो उसका रिएक्शन ये होता है, वो उसने मुझे बहुत बाद में बताया जब मिला, बोले हम लोग देख रहे थे और बैठ के, फिर मैंने कहा यार ये पाकिस्तानी लोग क्या कहा के गजल कहते हैं इस तरह की।
1: वाह वाह पाकिस्तानी लोग।
0: तो वो ये सोच नहीं पा रहा था कि ये हिंदुस्तान का कोई शायर इस तरह की गजल कह सकता है, ये कही होगी। तो बुरे बहुत बाद में बोला। और दूसरी बात ये कि जब ये पंकज दास जी सूरत में कंसर्ट में सुनाने गए गजल, मतलब एक कंसर्ट उनका चल रहा था, मजरू सुल्तानपुरी साहब उसके चीफ गेस्ट थे, जैसा आज ये दीप्ति जी हैं, मजरू सुल्तानपुरी ऑडियंस में बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये गजल सुनाना शुरू किया। ये गजल अपनी जब ये शेर आया तो
1: जी
0: मजरू साहब ने कहा कि पंकज फिर पढ़ो, तो दो तीन बार उन्होंने पढ़वाया। तो जब ये ऐसा कहा जाता है मुशायरे में या संगीत में, तो ये सुनाने वाले गाने वालों को लगता है कि कहीं कुछ गलत गा दिया मैंने, या गलत बोल दिया, पहले तलफ़ुज़ गलत हो गया, लाइन गलत बोल दी, कुछ तो कुछ गलत हो गया है, तभी मुझसे बार बार कह रहे हैं कि फिर पढ़ो। तो उन्होंने फिर पढ़ दिया, तीन बार ये शेर पढ़ा, फिर उन्होंने बताया, पंकज जी ने बताया मुझे कि जब ग्रीन रूम में आए तो मजरू साहब, तो उन्होंने कहा कि ये गजल किसकी थी जो तुम सुने, तो उन्होंने बताया कि वो उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था, कि बॉम्बे के एक नौजवान शायर हैं, तो उनका ये है। तो बोले मेरी तरफ से उस नौजवान शायर को मुबारकबाद दे रहे, नई तरह की गजल है, अलग तरह की गजल है, बहुत
1: क्या बात है,
0: अच्छी।
1: मजरू साहब की तरफ से ये बात आई, वाह वाह वाह क्या बात है। जगजीत सिंह के साथ आपकी बहुत सारी यादें हैं।
0: नहीं, जगजीत जी का प्यार मुझे बहुत मिला, और ऐसा प्यार मिला कि वो शायद किसी शायर के नसीब में ना हो। वो जो मैं घटना आपको बता रहा हूँ, वो ये खास बात यह है, मेरे पहला संग्रह गजल का उड़ान आया, दूसरा जो आसमान से आगे किताब आनी थी, तो मैंने जगजीत जी को फोन किया कि जगजीत जी मैं चाहता हूँ कि इसका जो लोकार्पण या किताब का विमोचन जो भी कहते हैं ना, तो वो मैं आपके हाथों से करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने कहा कि अलग से प्रोग्राम या डेट वेट क्यों करते हो, नेहरू सेंटर में मेरा उनका केयर का एक सेंटर प्रोग्राम हुआ करता हर साल, कैंसर पीड़ितों के लिए वो कंसर्ट करते थे, तो मेरा वो फला दिन को वो नेहरू सेंटर में प्रोग्राम है, उसी दिन आ जाओ, किताब ले आओ, फिर अपन कर लेंगे। तो ठीक है, मैंने कहा कि, और मैं किताब लेके चला गया वहां पे, लेकिन ये था कि वो बुलाएंगे और स्टेज पे सब हो जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें आवाज दूंगा और फिर तुम किताब लेके आ जाना और फिर अपन उसका, तो मैं ऑडियंस में बैठ गया जाकर के किताब लेकर के अपनी सारी, और उन्होंने वो गजल गाई, कंसर्ट चल रहा है उनका, उसमें दूसरी तीसरी गजल गाई, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं,
1: वाह
0: तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं, तो ये गजल गाई। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये जो गजल मैंने गाई ये हमारे प्यारे दोस्त शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है, और इत्तेफाक से वो यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, और आज उनकी किताब का भी हम चाहेंगे कि हो जाए, तो मैं किताब लेके गया स्टेज पे गया, उन्होंने रिव्यू रूम खोली और सबके सामने ऑडियंस के सामने वो जो होता है एक तरीका वो किया, क्लैपिंग भी हुई सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने रोका इशारा, बोले राजेश रुकिए, तो मैंने कहा पता नहीं आप क्या बाकी है, तो फिर उन्होंने उन्होंने कहा म्यूजिक कंसर्ट चल रहा है, मतलब गजलें चल रही हैं सुर साजिंदे स्टेज से सब, तो उन्होंने साउंड वाले को बोला कि ये एक माइक इधर लगाओ स्टैंडिंग माइक, तो मैं तो वो एक माइक लगाया, और फिर उन्होंने कहा कि राजेश वो गजल सुनाइए जाने कितनी उड़ान बाकी है, जो उन्होंने
1: क्या
0: आखिर में
1: बात है
0: रिकॉर्ड किया अल्टी,
1: क्या बात है क्या बात है।
0: कि जब मैंने गजल शुरू की जाने कितनी उड़ान बाकी है इस परिंदे में जान बाकी है, तो मैंने ये पढ़ाई है, तो जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, वो
1: वाह
0: गाने
1: वाह
0: लगे,
1: वाह वाह वाह
0: वो गाने लगे। किसी शायर को इतना बड़ा ब्लेसिंग, इतना बड़ा आशीर्वाद, प्यार क्या होगा कि वो पढ़ रहा है और उसी वक्त वो सिंगर
1: नारे, क्या बात है, अनमोल यादें, शानदार शानदार। यहां मुझे लगता है कि आप आपसे कुछ सुना जाए अब वापस।
0: तो ये शेर मतलब देखें, ये कब चाह के मैं मशहूर हो जाऊं,
1: वाह
0: ये मेरी दुआ है अपने बारे में, ये कब चाह के मैं

0: बस अपने आपको
1: वाह
0: मंजूर
1: वाह वाह, क्या
0: हो
1: बात है, शानदार,
0: जाऊं।
1: बहुत बढ़िया, क्या बात है,
0: अगर आप खुद को इस स्वीकार स्वीकृत नहीं है तो फिर मतलब क्या बाकी चीजों का।
1: वाह।
0: ये कब चाह के मैं

0: जाऊं, बस अपने आप को मंजूर हो जाऊं। ऋषि देखे खास,
1: इरशाद
0: बहाना कोई तो ऐज़

0: लिए
1: वाह
0: मजबूर
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: हो जाऊं।
1: क्या बात
0: शुक्रिया,
1: है।
0: बहुत शुक्रिया। ये कब चाह कि मैं ऋषेर,
1: इरशाद,
0: अगर हम अपने आप में टटोलें तो हम खुद अपने आप में कितना है, हम एक बहुत कुछ चीजें समझ चुकी हैं और हम खुद कितने रह गए ये देखें। ये कब चाह कि मैं मेरे अंदर से घर दुनिया निकल
1: मेरे
0: जाए,
1: अंदर से घर दुनिया निकल जाए,
0: मैं अपने आप में भरपूर
1: क्या
0: हो
1: बात है,
0: जाऊं।
1: क्या बात है, शानदार है, क्या
0: शुक्रिया।
1: बात है, क्या बात है।
0: मेरे अंदर से घर

0: कि मैं और इस गजल का आखिरी शेर, खास शेर,
1: इरशाद
0: आईने पे बहुत शेर आप लोगों ने सुने होंगे अलग अलग,
1: सर,
0: ये
1: इरशाद।
0: कब चाह कि मैं न बोलूं सच तो कैसा आईना मैं,
1: वाह, न बोलूं सच तो कैसा आईना मैं,
0: न बोलूं सच तो कैसा आईना मैं, जो बोलूं सच तो चकना
1: वाह वाह वाह
0: चूर।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, इसे फिर पढ़िए। वाह वाह वाह वाह
0: शुक्रिया।
1: वाह।

0: शुक्रिया।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं अब ऑडियंस के लिए तो फोरम ओपन करता हूं, आप में से कोई अगर सवाल पूछना चाहे तो ये माइक है और आप पूछ सकते हैं।
2: सर मेरा नाम धीरज पुरोहित है। सर मैं शायरी से जुड़ा हुआ ही एक प्रश्न पूछ रहा हूं और मुझे उसका मैं क्षमा चाहते हुए कूटनीतिक नहीं लेकिन सच्चा उत्तर चाहिए। दिल्ली के एक शायर हैं, उनका शेर इतना प्रसिद्ध हुआ जो कि मुझे बिल्कुल नागवार गुजर रहा है कि शायद ये शेर की श्रेणी में नहीं है। उनका शेर है कि कोई भी शेर अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी शेर अच्छा या बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। सर ये क्या सही है? यानी कोई भी मिठाई मिठाई नहीं होती, यानी जो मिठाई होती है वो सब एक ही कैटेगरी की होती है, उनमें भी तो विविधताएं होती है ना, तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं?
1: बड़ा मुश्किल सवाल है
2: लेकिन सर मैं आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति से जरूर।
0: नहीं बिल्कुल सही है पूरे जी, वो शेर उसकी सच्चाई अलग है कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अच्छे गायक बुरे गायक में फर्क होता है, अच्छे शायर बुरे शायर में फर्क होता है, अच्छे कहानीकार बुरे कहानीकार में फर्क होता है, हर अच्छे खिलाड़ी और बुरे खिलाड़ी में फर्क होता है। तो लेवल और स्तर का तो फर्क होता है, मतलब जैसे सुर में गा देने को सिर्फ गाना नहीं बोलते, गाने में असर होना चाहिए। असर,
1: क्या प्यारी बात है,
0: है ना, गाने में असर होना चाहिए।
2: जी सर आपके उत्तर का तात्पर्य यह है कि वो मुकम्मल शेर तो है लेकिन शेरों में भी वर्गीकरण जरूर है,
0: जिसमें असर है वही सच्चा शेर।
2: जी जी
3: सर से क्या सवाल करूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं कि आपने इतने सुंदर गीतों से अपनी यात्रा शुरू की थी, उसके बाद फिर कभी गीत लिखे ही नहीं, और क्यों?
0: हाँ नहीं, बहुत सही सवाल है कमलेश जी। मैं शुरू में मंच पे गीत पढ़ता था, जो नीरज जी वाली घटना मैंने आपको बताई, मंचों पे राजस्थान भर में घूमता था, बाहर भी गया। लेकिन जयपुर में जो हम उम्र लोग होते हैं जिसमें हिंदी वाले भी होते हैं उर्दू वाले भी होते हैं, आपका उठना बैठना होता है, हाँ, तो जो मेरे हम उम्र जो शायर दोस्त थे जो जिनके साथ उठना बैठना भी था, तो वो उनको सुनते सुनते भी फिर वो उनकी कुछ गजलें सुना और फिर कुछ मुशायरे वहाँ पे जो अटेंड किए, जिसमें बड़े बड़े शायर जो है ना जयपुर में बहुत बड़े बड़े मुशायरे होते थे, और ये सब मजरू सुल्तानपुरी साहब, कैफी आजमी साहब, निदा साहब, बशीर बद्र, शहरयार, ये सब बड़े बड़े शायर वहाँ पे आते रहे। तो वो जब मैंने देखा कि दो मिसरों में पूरी बात हो जाती है, और गीत जो है ऐसा आसान भी नहीं है कि आप गीत से लेकर आसानी से शायरी में आ जाएं और दो पंक्तियों में कहना शुरू कर दें, लेकिन वो उस विधा ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया, बांधा, मैंने उसमें कोशिश की और वो मेरे यार दोस्तों को सब हम उम्र लोगों को ठीक लगने लगी और बात कुछ जम गई, और फिर मैं वो कहने लगा तो फिर गजल का ही जादू मुझ पे सवार हो गया, वो शेर कहने पे, तो वो मैंने की। तो फिर जब हुआ तो मैंने गजल को अपनाया और फिर शायद गजल ने मुझे अपना लिया। जी
1: क्या बात है।
4: नमस्ते सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई नया नया शायर बनना चाहता है तो उसको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, विचार कहाँ से आते हैं, क्योंकि कविताएं बहुत से लोग लिखते हैं और वो बहुत ही अलग अलग तरह की कविताएं आजकल हो रही हैं, वैसे ही शेर भी बहुत ही अजीब तरीके के हो रहे हैं जिनको शेर शायद नहीं भी बोला जा सकता है, तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक अच्छी दिशा में बढ़ सके?
1: ये लड़की अपने लिए पूछ रही है
0: जी। ये काम करती है,
1: हाँ, ये कैजुअल अनाउंसर है नेहा।
0: अच्छा नेहा,
1: नेहा शर्मा।
0: हाँ नेहा, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, और खासतौर से आपकी जनरेशन के लिए इस दौर में कुछ चीजें आसान भी हुई है और कुछ चीज़ें गलत भी हुई हैं। ये सोशल मीडिया का जो दौर है जिसमें ओपन माइक और सोशल मीडिया पे फेसबुक, ट्विटर है ना, और व्हाट्सएप और ये सब, इसमें आपने आपका शौक है सिर्फ, और आपने दो लाइन लिखी और उनको मान लिया कि जैसे दीप्ति जी ने कहा कि मान लिया कि ये शेर है बस, और उसको आपने पोस्ट भी कर दिया, और आपके जो जान पहचान के लोग हैं, हम उम्र लोग हैं या परिचित लोग हैं, वो उस पर वाह वाह भी कर देंगे, है ना, और वो दाद मिलना भी शुरू हो गई और सारा कुछ हो, और उससे एक गलत फहमी पैदा हो गई कि मैं तो एक्सेप्ट कर ली गई है, कर लिया गया, मैं शायर हूँ। जब हम जैसे लोग शुरू हुए थे तो ये सब नहीं था, हम सिर्फ गोष्ठियों में होते थे, एक दूसरे को सुनते थे, सुनाते थे, और उसके बाद आत्मविश्वास जैसा कुछ चीज़ आती थी, फिर अखबारों को भेजते थे, पत्रिकाओं में भेजते थे, फिर वहाँ एक संपादक जैसी कोई चीज़ हुआ करती थी जो उसको देखता था कि वाकई ये गज़ल है या नहीं है, तो अब तो संपादक भी गायब हो गए, तो ये इतना आसान नहीं था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये चीजें सोशल मीडिया ने आसान तो कर दी हैं, लेकिन आपकी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। आपको अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, और लगातार पढ़ना चाहिए, लगातार सुनना चाहिए। ये जुनून का काम है, और वो अगर जुनून है तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे और सक्सेसफुल होंगे।
1: जी, रेडियो की तरफ वापस लौट रहा हूँ सवाल के जरिए। जब अचानक ये तय हुआ कि सखी सहेली कार्यक्रम शुरू होना है, वो दिन याद है सर आपको?
0: जी, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, लेकिन वो जमाना याद है, और बिल्कुल हंगामों वाले दिन थे।
1: बिल्कुल, अचानक सिग्नेचर ट्यून बन रही है, कॉन्सेप्ट बन रहा है,
0: डेट तय हो जाती है कि फलां से शुरू करना है,
1: लॉन्च होना है बस, और उसके बाद अब आपके ऊपर है कि आप अपनी तैयारी।
0: तो उसके बाद फिर वो सिलसिला सिग्नेचर ट्यून से लेके यूनुस है और

0: सखी सहेली की शुरुआती याद के बारे में वो भी अपनी कुछ बात कहे।
1: सखी सहेली की याद तो ऐसी है कि वो कभी भूल ही नहीं सकती। जैसे ही हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया, लोगों की चिट्ठियां आना शुरू हुई और लोगों ने लिखना शुरू किया कि ये केवल महिलाओं के लिए क्यों है प्रोग्राम, पुरुषों के लिए क्यों नहीं है। और दूसरी एक बड़ी जो खास मेरे साथ घटना घटी कि किसी ने चिट्ठी लिखी कि अगर ये महिलाओं का प्रोग्राम है तो कमलेश पाठक प्रोड्यूसर कैसे है। उसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि कमलेश पाठक खुद प्रोग्राम में बैठे एक बार तो बताएं कि पुरुष नहीं है, वे एक महिला है। और जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया तो लगा मेरा थोड़ा लोकल टच है बोलने में तो शायद पसंद नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद बाद में ऐसा हुआ कि उनको मेरा बोलना ही अच्छा लगने लगा और बहुत सारी चिट्ठियां आने लगी कि आपका जो लोकल टच है, जो क्योंकि विविध भारती बहुत रिमोट में भी सुना जाता था ज्यादातर, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा।
2: निमी जी आप बताइए। मैं क्या बताऊं, मेरी बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं। कई बार मैं जब रिटायर हो गई उसके बाद भी मुझे प्रोग्राम करने के लिए बुलाया जाता था। वो जमाना ऐसा था कि रिटायर्ड लोगों को भी बुलाते थे।
3: हम लोग रेडियो की दुनिया से मुशायरों की दुनिया में आते हैं और सवाल मेरा ये है कि राजेश जी, आप पूरे विश्व में मुशायरे पढ़ रहे हैं और बहुत कामयाब हैं, बहुत नाम है आपका हर जगह, लेकिन ये मुशायरों की जो दुनिया है, पहली बात तो ये कि इसमें प्रवेश कैसे हुआ, दूसरी बात ये कि इतना साफ सुथरा लिखते हैं आप, तो वहां कैसी जगह मिली।
0: क्या प्यारा सवाल है, बहुत सही,
4: धन्यवाद दीप्ति जी। मैंने अब नेहा को जवाब देते हुए जो बात कही कि हमने जिस दौर में शुरू किया, हमारी ग्रूमिंग, हमारी स्कूलिंग कहना चाहिए शायरी में भी कुछ ऐसी हुई कि उस वक्त अदाकारी का कोई काम ही नहीं था। मतलब ये अदाकारी शुरू हुई है बहुत बाद में जाकर के, जो मैंने नाम बताया आपको, अली सरदार जाफरी, मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, बशीर बद्र, निदा फाजली, तो ये हमारे बड़े लोग थे, गुलाम रब्बानी ताबा, तो ऐसे लोगों को तो सुन सुन के हम स्टेज की तरफ आकर्षित हुए
0: जी।
4: तो इनकी कोई अदाकारी नहीं, शायरी है, प्योर शायरी है ना। और खुमार साहब तरन्नुम के इतने बड़े बादशाह
0: जी
4: है, मजरू साहब भी तरन्नुम सुनाते थे, तो ये हुआ। और फिर जो आपने कहा ना कि एंट्री आपकी कैसे हुई, तो मेरी एंट्री तो गीत से हो गई थी मंच पे, तो मंच का विश्वास जो आ गया था, ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करते हैं और ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया था गीत के। जयपुर में जो मेरा बड़ा मुशायरा हुआ, जिस मेरी एंट्री हुई और जिससे मुझे सब जगह जाने का एक तरह से वो पासपोर्ट मिला, वो था नेहरू सेंटर का मुशायरा और निदा साहब ने उसकी निजामत की थी। उन्होंने मुझे पहला मौका दिया नेहरू सेंटर के मुशायरे में, ये 87 की बात है, 86 में बॉम्बे आया, 87 में नेहरू सेंटर का बड़ा मुशायरा जिसमें निदा साहब ने संचालन किया और मैं उसके शुरुआती शायरों में से था। उस वक्त मंच पर सारे अली सरदार जाफरी, मजरू साहब, कैफी साहब, कुमार बाराबंकी, निदा साहब, बशीर बद्र, मुमताज राशिद, जफर गोरखपुरी, कोई बड़ा नाम लीजिए जो नेहरू सेंटर का मुशायरा ऐसा होता था, बड़ा मुशायरा
0: जी जी।
4: और सुनने वालों में आपको हैरानी होगी, सुनने वाले में होते थे और थे उस वक्त दिलीप कुमार,
0: वाह,
4: अजीत फिल्म एक्टर, तो ऐसे बड़े बड़े लोग, तो ऑडियंस खचाखच भरा हुआ नेहरू सेंटर, ये हर साल का उनका वो था। तो और मैं बिल्कुल बॉम्बे में, एक तरह से मेरी शुरुआत ही थी, निदा साहब ने मुझे सौभाग्य मेरा कि उन्होंने मौका दिया, वो पहली गजल पढ़ी और वो गजल मुझसे दो बार सुनी गई, मतलब बार बार मुझे प्यार मिला उस गजल ने, इतना प्यार दिया, इतनी पहचान दी और इतना आत्मविश्वास दिया, और उससे फिर वो एक पहचान बात से बात निकलती है और लोगों से लोगों तक पहुंचती है। और वो उसकी कैसेट वगैरह, जैसे दुबई के कैसेट आने लगे, इधर इधर के कैसेट दुबई जाते थे, तो एक बात पहुंच गई कि भाई ये शायर है जो अच्छा पढ़ता भी है, सब कुछ है, तो इस तरह से एक एंट्री हुई। तो मुझे नाटक करने की या अदाकारी करने की और उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया गया और अब तक किया हुआ है।
0: बिल्कुल सर, तो उसी गंभीरता से अब आपकी अगली गजल हम सुनना चाहेंगे। कौन सी वाली, जो नेहरू सेंटर में सुनाई थी?
4: नहीं, वो सुना चुका पहले, वो जाने कितनी
0: उड़ान बाकी है, वही थी, वो थी।
4: हाँ।
0: तो कोई और गजल सुनते हैं।
4: ये गजल भी मेरे लिए खास गजल है। हाँ, तो ये उर्दू में बहुत पुरानी परंपरा है, ये बहादुर शाह जफर के जमाने से मिलकर हो रही है कि बड़े बड़े उस्ताद भी जो हैं वो तरह ही गजल कहते हैं, यानी कि एक मीटर दिया जाता है और उसमें हर एक शायर अपनी अपनी गजल कह के लाता है। तो रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है रजा लाइब्रेरी, जिसमें रिसर्च का काम होता है, तो उन्होंने एक तरह मुशायरा कराया, तो एक मीटर देते हैं, एक पंक्ति देते हैं, लाइन देते हैं, उस पर आप

हर शायर अपनी अपनी गजल लेके आता है, तो हिंदुस्तान भर के शायर वहाँ पे अपने अपने क्षेत्रीय में जो प्रतिनिधि शायर थे। मुंबई से मैं गया था तो मैंने एक गजल कही और मेरा सौभाग्य की मेरी खुशकिस्मती की ये गजल वहाँ मुझसे बहुत प्यार से दो बार सुनी गई और सब दिग्गज मौजूद थे उर्दू दुनिया के वहाँ रामपुर में, तो उसने एक मुझे बहुत अलग तरह का आत्मविश्वास दिया। मैं पढ़ रहा हूँ अब।

0: ise kafa asman se hum.
1: Vah vah vah vah.
0: Şükriya. Ab kya bataye tu. Aur ye ghazal ka khas sher
1: irshad.
0: Ek lafz shabd hota hai sharab. Ek to sharab hai jo ki bahut log peete hain. Ek sharab yani jo mrigjal hota hai yani registar mein pani je hota nahi lekin pani jaisa dikhta hai. Miraj jise bolte hain mrigmarichi ka hai na jo kuch hai. Ha to ab ye sher dekhen. Ab kya bataye toote hain rishir. अब तो शराब ही से, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास।
1: अब तो शराब से ही बुझाने लगे हैं प्यास।
0: अब तो

0: यकीन का गुमा से हम अब क्या बताएं। और शेर, गजल का शेर, जीत जी
1: इरशाद
0: देखें खास, मिलते नहीं है अपनी, मिलते

0: क्या बात है।
1: शुक्रिया। अब क्या बताएं। और एक अलग सा शेर है, एक जमाना था कि टीवी पर अक्सर वो नार्को टेस्ट का बहुत जोर था, इसका नार्को टेस्ट, इसका नार्को, ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है,
0: जी
1: अपराधियों का ये अक्सर होता था। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि ऊपर वाले ने एक मशीन हर इंसान के बॉडी में फिट की हुई है जो ये बताती है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और ये शेर में ढल गया, देखें।
0: इरशाद।
1: अब क्या बताएं, टूटे कितने कहां से हम, लेकिन हमारी

0: वाह वाह वाह, क्या बात है,
1: अब
0: क्या बात
1: क्या
0: है।
1: बताएं टूट। और गजल का आखिरी शेर, अब क्या बताएं टूटे हैं गम, बिक रहे थे मेले में, गम
0: वाह
1: बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम
0: क्या बात है, क्या
1: पर,
0: बात है, गम बिक रहे थे।
1: गम बिक रहे

0: हर एक
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: दुकान
1: शानदार है।
0: अब क्या बताएं, टूटे हैं कितने कहां से हूं।
1: बहुत शानदार गजल आपने सुनाई, और आपकी इस पूरी यात्रा में आकाशवाणी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी जिंदगी में क्या महत्व आकाशवाणी का रहा है, और आकाशवाणी की इस 90

0: की यात्रा में ये जो पूरी यात्रा है इस पर आपकी क्या टिप्पणी है?
1: मैं आकाशवाणी परिवार का सदस्य हूं और रहूंगा। इसी ने मुझे एक सांस्कृतिक संस्था ने, जिसको मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उस संस्थान में एक मामूली से कार्यक्रम, पहले मैं कैजुअल युवाणी जब शुरू हुआ था जयपुर में, तो युवाणी का ऑडिशन देने गया था। एक युवाणी के आर्टिस्ट के तौर पर मैंने कार्यक्रम में भाग लेना शुरू किया, और वो सुख अलग ही था कि जब आप ऑडिशन में सेलेक्ट हो गए हैं और आपको ये लगे कि अब आप आकाशवाणी में कवि के रूप में और नाटक कलाकार के रूप में कि आपकी आवाज़ अब आकाशवाणी पे आएगी, वो एक अलग थ्रिल था, वो एक ज़माना ही अलग था। तो मेरा तो सफ़र ही, हालांकि मैं रंगमंच पत्रकारिता सब कुछ की मैंने, लेकिन मेरा क्रिएटिव सफ़र अब जो जिसमें संगीत भी है, जिसमें नाटक भी है, जिसमें लेखन भी है और कार्यक्रमों का अलग अलग संयोजन भी है, तो मेरा जो क्रिएटिव जो सफ़र है वो शुरू से ही, जो मैंने इतना साल 1980 से लेकर 2012 तक गुजारा, अलग अलग पदों पर, अलग अलग केंद्रों पर, और ख़ास तौर से विविध भारती, और मैं जयपुर को याद करूंगा कि जयपुर ने मेरी नींव रखी और विविध भारती ने मुझे एक वो आकाश दिया कि मैं सब जगह अपनी बात, अपनी परिकल्पना को साकार कर सकूं। तो विविध भारती के अलावा मैं आकाशवाणी के 90 साल की बात करूं, तो ये वो संस्थान है जो अगर दुनिया हिंदुस्तान के कोने कोने में कोई चीज़ पहुँचती है तो आकाशवाणी है। न अखबार पहुँचते हैं, टीवी तो बहुत बात की चीज है, और बाकी तो सोशल मीडिया तो खैर अभी अभी कल ही पैदा हुआ है सब कुछ। तो एक जमाना था कि पूरे हिंदुस्तान को जोड़े रखने वाली कोई चीज थी तो या तो फिल्म थी या आकाशवाणी, फिल्म में पहुंचती थी और या आकाशवाणी, लेकिन फिल्म देखने के लिए आपको पैसा देना पड़ता था, और आकाशवाणी के लिए आपको, जिसका सफर हिंदुस्तान को जोड़े रखने में, बनाए रखने में, और आज भी जितनी रीच हमारे इस माध्यम की है शायद किसी माध्यम की नहीं है, और इस माध्यम को जितना सम्मान दिया जाए, प्यार दिया जाए, सम्मान दिया जाए, और इसकी इज्जत की जाए और इसका एहसान माना जाए, 90 साल होने के बाद या होने पर इस आकाशवाणी के लिए अपना धन्यवाद भी देता हूँ, कृतार्थ भी उसका, और शुभकामनाएं भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत शानदार महफिल आपके साथ रही है, और यूं लगता है जैसे बातों का सिलसिला कभी खत्म ना हो, लेकिन वक्त की अपनी एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। चलते चलते आपसे एक गजल सुनना चाहेंगे, आपके मन की गजल।
1: रंग मौसम का हरा

बुलंदी को छुआ, बाद में मैंने बुलंदी को छुआ, बाद में मैंने बुलंदी को छुआ, अपनी नजरों से गिरा था पहले।

0: ले। और ये शेर हम अक्सर घर के बुजुर्गों से कहते हैं कि आप रहने दें, आपको ये मालूम नहीं, आपको ये नहीं आता, हाँ आप इस जम, ये और जमाना है, हाँ अब ये नहीं चलता। और अब ये शेर देखें,
1: जी
0: हम भूल जाते हैं कि कभी हम भी उसी मोड़ पे आएंगे।
1: जी
0: और ये शेर देखें आप, रंग मौसम का हरा था पहले, जो नया है वो पुराना होगा,
1: वाह, जो नया है वो पुराना होगा।
0: जो नया है वो पुराना होगा, जो पुराना है नया था
1: क्या प्यारी बात है,
0: पहले।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: शुक्रिया।

0: था पहले।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मसाला कब थी इबादत गाहे, दिल में इंसान के खुदा था पहले। रंग मौसम का हरा था पहले। और जुबल का आखिरी शेर,
1: इरशाद।
0: मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, आईना मुझ पे हंसा था।
1: हो, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है,
0: बहुत
1: क्या बात
0: शुक्रिया। मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, आईना मुझ पे हंसा था पहले। रंग मौसम का हरा था पहले। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: क्या
0: बहुत
1: बात
0: बहुत
1: है, क्या
0: शुक्रिया।
1: बात है। बहुत शुक्रिया कि आप इस महफिल में आए और आपने सृजन भारती की इस महफिल को रोशन किया सर।
2: और अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। दीप्ति मिश्र जी को हम आमंत्रित करेंगे आज की हमारी मुख्य अतिथि साहिबा। मैं बताना चाहूंगी, एक शानदार शायरा, जानदार अभिनेत्री और कवयित्री के रूप में लोकप्रिय हैं दीप्ति जी। आपकी 4 किताबें आ चुकी हैं, बर्फ में पलती हुई आग है तो है, और बात दिल की कह दें कह तो दें, ये उर्दू में है, और एक किताब और है, यहाँ वहाँ कहाँ,
3: और एक और आ गई है तुम्हारे लिए।
2: तुम्हारे लिए स्वागत है। और आपकी रचनाओं को गुलाम अली साहब, कविता कृष्णमूर्ति ने, हरिहरन जी ने, उदित नारायण जी ने, श्रेया घोषाल, सोमा घोष, कविता सेठ और मधुश्री जैसी बड़ी कलाकारों ने अपनी आवाज भी दी है। तो दीप्ति जी, आपका स्वागत है। इनकी चंद पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी लिखी हुई। जिससे तुमने खुद को देखा, हम वो एक नजरिया थे, हमसे ही अब कतरा हो तुम, हमसे ही तुम दरिया थे। सारा का सारा खारापन हमने तुमसे पाया है, तुमसे मिलने से पहले तो हम एक मीठा दरिया थे, हम एक मीठा दरिया थे। दीप्ति जी,
4: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या कहूँ, अभिभूत हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जहाँ पे राजेश रेड्डी साहब परफॉर्म कर रहे हैं उस कार्यक्रम में मैं मुख्य अतिथि हूँ। राजेश जी से मेरी पहली मुलाकात मेरे ख्याल से 2002 या 3 में एक रेलवेज का प्रोग्राम था जिसमें निदा साहब के साथ आप आए थे। वहाँ हम लोग की मुलाकात हुई, हम लोगों ने मुशायरा पढ़ा। उसके बाद बहुत एक लंबा सफ़र साथ में रहा, हम लोगों ने बहुत सारे मुशायरे साथ में पढ़े, यात्राएं की। राजेश जी का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में थोड़े समय कहना चाहूंगी कि ये बड़े संजीदा किस्म के इंसान हैं, और बहुत चुप रहना, बहुत कम बोलना, बहुत रिजर्व रहना, तो इनको जानना बड़ा मुश्किल होता है। आप बरसों बरसों साथ रहिए लेकिन इनको खोल पाना, इनको जान पाना पाना बड़ा मुश्किल होता है। और आज का ये कार्यक्रम वाकई बहुत अच्छा रहा, मैं बधाई देना चाहूंगी। इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहिए। मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो श्रोता है वो तो अच्छा सुनना चाहते हैं, लेकिन जो शायर है, जो कवि है, वो सहृदय श्रोता ढूंढता रहता है। वो चाहता है कि उसको ऐसे श्रोता मिले जहाँ पे वो अपना दिल खोल सके, उसको वो जगह नहीं मिलती, तो वो अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है और सिर्फ उतना खोलता है जितना सामने की पात्रता होती है। तो जब उसको ऐसा पात्र मिल जाता है तो उसका दिल खुल जाता है, और आज वही हुआ है। राजेश जी ने दिल खोल के जो है अपनी बात कही। यह है कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया, अब जमाने की नजर में यह हिमाकत है तो है। जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्म की, जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्म की, रात भर जलना जलाना उसका किस्मत है तो है। और ये सब दोस्तों के नाम, सारे दोस्त, जिसके भी दोस्त जहां भी हैं, कि दोस्त बनकर दुश्मनों से वो सताता है मुझे, दोस्त बनकर दुश्मनों से वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। और है कि कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। आखिरी शेर है, कुर्बत का मतलब होता है निकटता, समीपता, कनेक्शन, कि दूर थे और दूर हैं हरदम जमीन व आसमां, दूर थे और दूर हैं हरदम जमीन व आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म व रिवाजों से बगावत है तो है।
5: आप सुन रहे थे सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम के संपादित अंश, और इस कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी थी मंदाकिनी जी आपने
2: जी, और धन्यवाद ज्ञापित किया था आपने यानी जयंत साहब ने।
5: और इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार,
6: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह दोपहर के 12 बजने वाले हैं, हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को

0: प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान हुए महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार देश बनकर उभरा है।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फूक्वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। यह हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट के अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम एक या दो नहीं कई सारे कलाकारों को याद करने वाले हैं। तो यादों की महफिल में बहुत सारे कलाकारों की यादों के साथ हाजिर हूं मैं विधि जैन। नमस्कार। पहला गीत हम सुन रहे हैं अभिनेता प्राण जी, इन पर फिल्माया गया यह गीत हम सुनते हुए आज याद करते हैं अभिनेता प्राण को उनकी पुण्यतिथि विशेष दिवस पर।

हम सुन रहे थे उपकार फिल्म का यह गीत, जिसे गाया मन्ना डे ने, इंदीवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल में हम लेकर आए हैं हमारी कुछ यादें कुछ अलग अलग कलाकारों के साथ। तो आज के दिन बहुत सारे लोगों की, किसी की जन्मदिवस है, किसी का पुण्यतिथि है, तो हम उन सभी कलाकार को याद कर रहे हैं। और आज ये फिल्मकार विमल राय का जन्मदिवस है, तो आइए सुनते हैं उनके द्वारा सजाए गए, पिरोए गए इन गीतों को।

हम सुन रहे थे विमल रॉय कृत फिल्म बंदिनी से आशा भोसले की आवाज में, शैलेंद्र की बोल और सचिन देवर्मन के संगीत के साथ यह गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अगला गीत, जिस फिल्म को भी सजाया है विमल रॉय ने। फिल्म है सुजाता, एस डी वर्मन सचिन देवर्मन ने इसे गाया है और सचिन देवर्मन ने ही उसे संगीतबद्ध किया है। मजरूह सुल्तानपुरी के हैं बोल।

कार्यक्रम है यादों की महफिल, और आज हमने यादों की महफिल में सबसे पहले सुना अभिनीता प्राण पर फिल्माया गया यह गीत, और अब हम सुन रहे हैं फिल्मकार विमल राय पर के द्वारा सजाई गई फिल्मों के गीतों को। इसके बाद और भी कई किरदार हैं जिनको आज हम याद करने वाले हैं, तो आइए सुनते हैं विमल राय कृत फिल्म दो बीघा जमीन। इस फिल्म से लता मंगेशकर मनाडे और साथियों की आवाज में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी का है संगीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

आइए हम सुनते हैं एक और गीत जो कि है विमल रॉय कृत फिल्म परख से। लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र के हैं बोल और सलिल चौधरी का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। अभी तक हमने सुना अभिनेता प्राण पर फिल्माए गए गीतों को। हमने सुना विमल रॉय, एक बहुत खूबसूरत फिल्मकार के द्वारा फिल्माई गई फिल्मों के गीतों को। और अब हम चल रहे हैं, आज याद कर रहे हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार को। तो आइए सुनते हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार पर फिल्माए गए इन गीतों को।

0: हम सुन रहे हैं झुक गया आसमान फिल्म से, सुन रहे थे ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ सजा हुआ है यह गीत। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: अपने देश

0: में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में आज का पंछी फिल्म से लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। सुनते हैं ये गीत।

0: हम सुन रहे थे गोरा और काला, फिल्म से यह गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ यह गीत। आइए सुनते हैं संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, गांवों में
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। जैसा हमने आपसे कहा था कि आज हम बहुत सारे कलाकारों को याद करेंगे, तो आज हम याद करने जा रहे हैं कुछ गीतों के साथ गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित को। आज उनका जन्मदिवस है, आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये गीत।

हम सुन रहे थे अपनापन फिल्म से यह गीत सुलक्षणा पंडित किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ में।

0: हम सुन रहे थे उलझन फिल्म का यह गीत किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित की आवाज में, और आज का कार्यक्रम यादों की महफिल समाप्त होता है यहीं पर। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती FM बैंड 103.7 MHz पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय चर्चा की और साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया गए। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 3 देशों की यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर 10 से 11 जुलाई तक ऑकलैंड का दौरा किया। न्यूजीलैंड की ये यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में पहली यात्रा थी। आज से जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन से नियमित विमान सेवाओं का शुभारंभ हो गया है। नए टर्मिनल के संचालन के पहले दिन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहली उड़ान के यात्री को टिकट और स्वागत किट प्रदान कर शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। इससे पहले बेंगलुरु से जोधपुर आई पहली फ्लाइट के सभी यात्रियों का राजस्थानी

0: परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने यात्रियों के साथ केक काटकर उत्सव भी मनाया। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जोधपुर आने और यहां से जाने वाले प्रत्येक यात्री को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ शहर की समृद्ध संस्कृति और आत्मीयता का अनुभव होगा। ये टर्मिनल जोधपुर की नई पहचान और बढ़ती विकास यात्रा का मजबूत प्रतीक बनेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एकमुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। ये योजना उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगी जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रदेश में आज से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से ये परीक्षाएं 18 जुलाई तक दो दो पारियों में ली जाएंगी। आज पहले दिन पहली पारी में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा हुई। दूसरी पारी में परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक होगी। ये भर्ती परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। 27 जिलों में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उद्योग और वाणिज्य विभाग ने सेक्टर आधारित करीब 15 नई नीतियां लागू की हैं। राजस्थान टेक्सटाइल और अपेरल नीति 2025 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल का गठन किया गया है। साथ ही 11 जिलों के लिए जिला स्तरीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा चयनित 7 चैंपियन जिले अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और कोटा तथा 4 एस्पिरेशनल जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरू शामिल हैं। उद्योग और वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि ये सेल राज्य में टेक्सटाइल इकाइयों को प्रोत्साहित करने, नवीनतम तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बहुआयामी प्रयास करेगी। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। कल राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई, लेकिन अधिकांश इलाकों में मॉनसून की गतिविधियां कमजोर रहीं। मौसम विभाग ने आज करीब 15 जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। हालांकि किसी भी जिले के लिए बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बादलों के छंटने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में उमस और गर्मी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले वेद भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582401168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: हम सुन रहे थे मुकेश और साथियों की आवाज में यह गीत, जिसे हमने लिया फिल्म धर्म करम से, और इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, राहुल देव वर्मन का है संगीत। और हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, और बड़ा प्यारा सा प्रश्न था कि ये बताइए कि अगर आपके जीवन में, हम सबके जीवन में अगर अंक नहीं है तो हमारा जीवन कैसा होगा। हमारे श्रोता ने पहले ही हमें उत्तर दिया है, जिसे हमने सुरक्षित कर लिया और आप सबके साथ उसे हम साझा करने वाले हैं। पर कुछ बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हमारे श्रोताओं की आई हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, अंक नहीं होंगे तो हम समय, तारीख, उम्र, रुपयों का हिसाब नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बगैर अंक के मैसेज भेज पाना और पाना और भेजना असंभव होगा, और संचार व्यवस्था नहीं चलेगी, और विविध भारतीय राष्ट्र

सेवा की ओर से सुरीला सफर भी ठप हो जाएगा। नहीं, हम इसको कुछ और तरीके से कर लेंगे ना, लेकिन पता तो पिन कोड पर ही आता है ना, तो नंबर तो चाहिए, अंक तो चाहिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अंकहीन जीवन शून्य होता है, गणित में भी शून्य की जिससे गुना किया जाए, फलसफा फल फलाफल शून्य ही होता है, शून्यता की पूर्ति संख्या ही करती है और बस जोड़ घटाव करते रहते हैं, और त्वरित फल के लालच में गुणा ना करें, गुणा मत करें। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता कहते हैं कि अंक वह कल्पना ही नहीं कर सकते अंक के बिना। अंक है तो नदी की लंबाई, गहराई, पर्वतों की ऊंचाई, सागर की विशालता, फूलों की रचना, पत्तों की सजावट, हाथ की उंगलियों की, सभी तरफ अंक बैठे हैं बिना अंक के। सही बात है, दुनिया तितर बितर हो जाएगी। हमारे श्रोता कहते हैं कि हार जीत का निर्णय भी नहीं कर सकते। सही बात है। भगवान शिव ने तो द्वितीय चंद्र को मस्तक पर धारित किया है, और वह कहते हैं कि चंद्रमा की गति विधि भी अंक पर आधारित है। जी बिल्कुल, सब कुछ अंक पर ही आधारित है। हमारे श्रोता कहते हैं कि जीवन में अंक नहीं तो जीवन शून्य हो जाएगा और ज्योतिष विधा अपना अस्तित्व खो देगी। आप भी सही हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि अंक नहीं होंगे तो बिना अंकों के, रंगों के बिना, जैसे चित्रकारी संगीत के बिना किसी एक धुन की तरह होगा। अंक केवल गणित का हिस्सा नहीं है, वह हमारे जीवन, अस्तित्व, समय, भावनाओं सबके हिस्सा है। घड़ी की सुइयां, कैलेंडर, तारीखें सब अर्थहीन हो जाएंगी। हम सभी अपनी आयु का हिसाब नहीं रख पाएंगे, ना किसी खास पल का जश्न मना पाएंगे। बिना अंकों के पते, बैंक खाते, पहचान पत्र सब गायब हो जाएंगे। आर्थिक व्यवस्था बिखर जाएगी। प्यार, दूरी, भावनाओं को माप नहीं पाएंगे। अंक एक दूसरे को जोड़ते हैं, लय देते हैं। बिना उनके बिना दुनिया केवल एक अराजक और दिशाहीन कोहरा बनकर रह जाएगी। बहुत बढ़िया, हमारे एक श्रोता ने बढ़िया उत्तर दिया। उन्होंने लिखा है, अंक ना होते तो हमें मैथ्स से छुट्टी मिल जाती, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत वीक हूं। कितने स्वार्थी होते हैं ना लोग, गणित से छुट्टी पाने के लिए अंकों को ही खत्म करने की बात करते हैं। पर फिर भी वह बहुत अच्छा लिख रही हैं। वैसे तो अंकों का आइडिया मानव मन में प्राचीन काल से ही होगा, बस उसकी प्रणाली आर्यभट्ट और अन्य गणितज्ञों ने बनाया है। इसके बिना सब कुछ अधूरा रहता, उम्र का कुछ पता ही नहीं चलता, है ना। कितनी अच्छी बात है। और प्रश्न बड़ा दिलचस्प है, कहती है बहुत कुछ लिखा जा सकता है लेकिन पोस्ट बड़ा हो जाएगा। जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, आज का सुरीला सफर अंकों से जुड़ा है। अगर देखा जाए तो अंक गणित का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, इसकी शुरुआत प्राचीन काल मेसोपोटामिया, सुमेरियन मिश्र और भारत में लगभग 3000 वर्ष पूर्व पहले व्यापार और निर्माण की जरूरत करने के लिए पूरी की गई थी। इसे व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप देने के लिए ब्रह्मगुप्त ने 7वीं सदी में शून्य के उपयोग को स्पष्ट किया, ऋणात्मक संख्याओं के साथ अंकगणितीय नियमों को लिपिबद्ध किया। चलिए, आपने बहुत सही बात कही है। और उसके साथ अंक नहीं होगा तो क्या होगा, हम सब जो जुड़ रहे हैं जुड़ नहीं पाएंगे, ऐसा लिखा। दशमलव शून्य हमने दिया है तो चांद पर नहीं जा पाएंगे, ये भी हमारे श्रोता कह रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने कही हैं कि अंक नहीं होंगे, तो एक बड़ी सी इबारत भी लिखी है, लेकिन उस इबारत में से हम वही छोटी बात करते हैं कि वो कहते हैं कि संतुलन नहीं हो पाएगा, ब्रह्मांड नहीं चलेगा, अंकहीन होगा तो हम पाषाण युग में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, अक्षर हमें बोलना सिखाते हैं, अंक हमें जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं, और अंक ना हो तो जीवन शून्य हो जाएगा। बहुत सारी बातें आप सभी ने बताई, और इन सभी बातों के बाद में हम आप तक गीत पहुंचाना चाहते हैं, जो अगला गीत है। एक बात मन में आती है कि किसी श्रोता ने लिखा कि अंकों की गिनती 3000 वर्षों पहले हुई, पर उसके पहले भी भारत में सभ्यता थी, वो सभ्यता बिना अंकों के कैसे होती, जरा विचार कीजिएगा। सभ्यता बहुत पुरानी है, जब विश्व कुछ नहीं जानता था तब भारत में महाभारत हो रही थी, और उसके पहले भी हमारी सभ्यताएं हुई हैं, तो अंक जाने कब से हैं और जाने कब तक रहेंगे। और हमने कहा था, हमारे एक श्रोता ने पहले ही उत्तर दे दिया है, तो उनका उत्तर ऐसा है कि आज के कार्यक्रम में बातें अंकों में होंगी, और मुझे लगता है अधिकांश गाने भी अंकों में ही बजेंगे। जीवन से यदि अंक निकाल दिए जाए तो उम्र का आकलन नहीं होगा, न समय की गणना होगी, न रुपए पैसों की गिनती होगी, न दूरियों का अंदाजा लगा पाएंगे। बिना अंकों के आधुनिक टेक्नोलॉजी भी असफल हो जाएगी। आज मोबाइल, कंप्यूटर, एटीएम, सारी मशीनें अंकों पर आधारित हैं। आज का जो विकास है उस पर सर्वाधिक योगदान अंकों का है। फिल्मी गीतों में भी अंकों के पर आधारित बहुत गीत बने हैं, और उन्होंने कुछ गीतों का नाम लिखा है। ये गीत आपके और आपके देश के नाम, बस बता दीजिए इस गीत में अभिनेता कौन है। अभिनेता का नाम बताइए और सुनिए ये गीत, और विचार कीजिए अंकों के ऊपर। अगला प्रश्न आपके लिए यह देकर जा रही हूं कि आपके जीवन में कौन सा अंक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई एक अंक होता है, उसे कहीं भी लिखा हुआ देखकर, या घड़ी में देखकर, या चलते फिरते किसी गाड़ी में देखकर ऐसा लगता है, हाँ ये मेरा अंक है, ये मेरे पिता का जन्मदिन भी हो सकता है, ये मेरी
बहन का कोई दिन हो सकता है, ये मेरा अपना कोई दिन हो सकता है, मेरे अपने का कोई दिन हो सकता है। जरा विचार कीजिए वो कौन सा अंक है जो

हम सुन रहे थे ये गीत पूरब और पश्चिम फिल्म से महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा गीत। और हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहला बड़ा प्यारा सा प्रश्न था कि इस गीत के जो अभिनेता हैं उनका नाम बता दीजिए, तो आप सबने सही उत्तर दिया, मनोज कुमार जी। उन्हें हम प्रेम से भारत भी कहने लगे थे शायद, है ना। और हमने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा था कि आपका पसंदीदा नंबर या अंक कौन सा है, तो हमारे एक श्रोता जो हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग अपने अपने अंक बताए हैं। मैं सभी के अंक पढ़ सकूं या ना पढ़ सकूं, परंतु आपका जो अंक है जो आपको बहुत बार दिख रहा है, हो सकता है वो आपको इसलिए दिख रहा है कि शायद उससे आपको कई बार प्यार मिल रहा हो, है ना। तो हमारे श्रोता लिखते हैं, किसी को दो अंक अच्छा लगता है, दो के बिना संसार अधूरा है, सही बात है। दस अंक किसी को अच्छा लगता है। और एक और बात इन्होंने लिखी है कि जो कंप्यूटर का एजुकेशन है वो बाइनरी नंबर सिस्टम्स पर चलता है, जीरो एंड वन। और सोचिए कि कितनी भी बड़ी संख्या है, उस पूरी संख्या को या आपके नाम को या किसी भी चीज को, बड़ी से बड़ी इमारत को भी और बड़ी से बड़ी इमारत को भी, सब कुछ को वन एंड जीरो में कन्वर्ट किया जाता है, बिट्स और बाइट्स में कन्वर्ट करके उसके बाद स्टोर किया जाता है। ये बड़ी कहानी है, पर नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है उनको, उसके बाद ही आप कंप्यूटर पर बात कर सकते हैं। इस बात का जिक्र इन्होंने यहां पर किया है। हमारे गौर श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सात नंबर अच्छा लगता है क्योंकि सात का अद्भुत महत्व है, सात दिन है, सात स्वर हैं, इंद्रधनुष के सात रंग हैं, सात महाद्वीप हैं, सात समुद्र हैं, सप्तर्षि सात हैं और विवाह के फेरे भी साथ होते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, समय के साथ उसका पतन भी हुआ। अगर पतन नहीं होता तो शून्य से ही प्रारंभ करना नहीं पड़ता। जी पतन तो नहीं हुआ, हाँ, लेकिन बदलाव जरूर हुए, उस बात को हम मानते हैं। और अब हमारे श्रोता ने उत्तर, कई सारे उत्तर दिए हैं। किसी ने कहा कि नौ उन्हें पसंद है क्योंकि वो पूर्णता का नंबर है, कोई कहता है कि उन्हें सात नंबर पसंद है, किसी को आठ पसंद है, किसी को तीन पसंद है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा ये वो कहती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि त्रिनेत्र होते हैं, त्रिशूल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई शिव जी के बारे में कि उनके साथ होता है। कोई कहता है कि शून्य उन्हें बड़ा पसंद है क्योंकि किसी भी अंक के आगे कितने भी शून्य लगा दो वो उसको बड़ा करता ही जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई पंगा लेने के लिए आता है तो शून्य से गुणा कर दो तो शून्य हो जाता है। और किसी को छह पसंद है, किसी को कोई अंक पांच पच्चीस तीस उनतीस, कई सारे अंक पसंद है, किसी को बारह इक्कीस पसंद है, किसी को एक अंक पसंद है, सबको अलग अलग पसंद। कोई कहता है न्यूमरोलॉजी में अंकों का बड़ा महत्व है, लेकिन उसको वो ध्यान नहीं देते। कोई कहता है कि तेरह अंक लोग गलत मानते हैं और तेरह बहुत अच्छा अंक होता है, लेकिन भारतीय सभ्यता में तेरह अंक को गलत माना ही नहीं गया। शायद किसी को अठारह नंबर पसंद है और किसी को कोई और अंक पसंद है, सबके अलग अलग अंक पसंद है। और मैं सभी के अंकों का स्वागत करती हूं क्योंकि हर अंक अति विशिष्ट है। अब मैं चल रही हूं अगले प्रश्न की तरफ और अगले गीत की तरफ। अगला प्रश्न बहुत सिंपल है, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है और 100 करोड़ बराबर 1 बिलियन। ये तो हो गई अंग्रेजी संख्याएं। भारत की संख्याओं में आपको कहां तक की संख्या पता है? भारत की संख्याओं में करोड़ के बाद 100 करोड़ नहीं होता, कुछ और होता है, है ना। 10 लाख तो 10 लाख ही रहते हैं, वो मिलियन नहीं होते क्योंकि उसके बाद 11 लाख हो जाते हैं, है ना। तो आप बताइए, आपको भारत की सभ्यता की संख्याओं में कहां तक की संख्याएं पता है? जल्दी से हमारे साथ साझा कीजिए। और ये भी बता दीजिए कि अगले गीत के ये जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, यानी गायक जो है वो कौन से हैं, बताइएगा।

और हम सुन रहे थे महुआ फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, जो हमने आपसे पूछा कि गायक कलाकार कौन है, और आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया, और आपने तो गीतकार और संगीतकार का नाम भी बता दिया। आपने बताया कमर जलालाबादी इसके गीतकार हैं और सोने कोमी इसके संगीतकार, तो बिल्कुल सही बताया आपने, दोनों बातों को आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया। और हमने आपसे पूछा एक बड़ा साधारण सा प्रश्न कि हमारे भारत की संख्याएं जो हैं वो कितनी ज़्यादा हो सकती हैं, कहाँ तक हो सकती हैं, आप क्या सोचते हैं? तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं कि वो लिखते हैं कि एक कल्प आखिरी संख्या जब विष्णु भगवान की आँख खुलती है और युग परिवर्तित होता है। ठीक है, आपने धर्म के हिसाब से उत्तर दिया, ठीक है। इसके अलावा हमारे श्रोता लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब, खरब, दस खरब, नील, दस नील, पद्म, दस पद्म, शंख, महाशंख, और इसके बाद ये रुक जाते हैं। तो अंत्य और महाअंत्य दो संख्याएं भी सुनने में आती हैं, और सागरोपम आयु की बात भी आती है, सागर, छह सागर, दस सागर, पंद्रह सागर, तैतीस सागर, ये बात भी बड़ी आती है। हमारे श्रोता लिखते हैं मुझे दो खरब तक पता है, एक खरब, सौ अरब, उसके बाद उन्होंने एक के बाद बहुत सारे शून्य लगाए हैं, और वो लिखते हैं इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, आखिरी में इन्फिनिटी होता है। बहुत सही बात है, भारत की संख्या अनंत है, खत्म ही नहीं होती, ये भाव भी बड़ा अच्छा है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं अक्षौणी भी एक संख्या है, महाभारत के युद्ध में कौरव के पास 11 अक्षौणी सैनिक, तो पांडवों के पास 7 अक्षौणी सैनिक थे, और भी है जैसे कल्प महाकल्प समय गिनती के लिए भी गिने जाते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई हैं, और बहुत तकनीकी रूप से बहुत सही तरीके से आपने बताई हैं, और उनको पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं अरब खरब नील पद्म शंख और इसके बाद बुंदेलखंडी में अटैया बटैया भगवान की चुटैया जी, ऐसे कई सारे अंक होते हैं बड़े प्यार से और जिन्हें हम अपना लेते हैं। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं आज संडे की छुट्टी है, बेटी भी घर पर है, गवर्नमेंट बैंक में जॉब करती है, बैंक ऑफिसर है, तो वो लिख रहे हैं रेडियो की पर आपकी प्रस्तुति सुन रही है, और हंसते हुए कह रहे हैं कि अंक नहीं होंगे तो बैंक बंद हो जाएंगे, तो मेरी जॉब का क्या होगा ये भी बड़ी चिंता है, चिंता का विषय है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तो नहीं पता, करोड़ तक तो पता है, उसके बाद खरब का भी पता है, शंख महाशंख बिंदु कुछ सुने हैं, एग्जैक्ट यूनिट नहीं पता है। तो एक काम करते हैं ना कि आज जब हम ये सुन रहे हैं तो इसके बाद एक विचार कर लेते हैं कि भारतीय अंकों को जरा एक बार पढ़कर देखते हैं कि वो कहाँ तक जाते हैं और कैसे बनते हैं, क्योंकि हमारे घरों में हमको सुनाया जाता था कि बड़े प्यार से एक ताना भी होता था, फूटी कोणी में भी नहीं लेगा कोई ये सामान, कई सारी चीजों की बात आती थी, तो कहीं से शुरू होकर कहीं तक चला जाता था। और अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, और सौंपते सौंपते एक प्रश्न है आपसे, क्या आप किसी ऐसे ग्रंथ के बारे में जानते हैं जो केवल अंकों पर बना हो, अंकों से ही बना हो, ग्रंथ हो, किताब हो, कोई भी चीज हो, आपने कभी ऐसा कुछ काम किया है, पजल सॉल्व किए होंगे अंकों के, वर्ग पहेली भी एक आती है समाचार पत्र में, उसमें भी अंकों की आते हैं, तो आपने कभी ऐसा कुछ काम किया है या ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसी कोई किताब पढ़ी है जो केवल अंकों से बनी हो और केवल अंकों पर आधारित हो? अगर आपके पास कोई जानकारी है तो जरूर बताइएगा। और ये वाला गाना जो है ये एक पहेली है, इस पहेली का उत्तर भी दे दीजिए और बता भी दीजिए, और ये बता दीजिए कि इसके गीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे मेरा नाम जोकर फिल्म से यह गीत आशा भोसले, मुकेश और सिमी की आवाज में, शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आपसे हमने प्रश्न पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन है, तो आप सभी बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं। आप सभी ने बताया हसरत जयपुरी, तो बिल्कुल सही उत्तर है, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और ये गीत ऐसा लिखते हैं, मुझे तीतर की आवाज़ बहुत पसंद है, पूरी वादियाँ गूंजती हैं इस आवाज़ में। बिल्कुल सही बात है। हाँ, हमारे श्रोता लिख रहे हैं भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ लीलावती अंक पर आधारित है, और एक ग्रंथ है आर्यभट्ट आर्यभट्टीय, यह भी अंक पर आधारित है। बिल्कुल सही। विष्णु धर्मोत्तर पुराण यह एक प्रमुख पुराण है जिसे विश्वकोश माना जाता है। संख्या गणना, इसमें खगोल शास्त्र, गणित, काल समय विभाजन के अलावा ब्रह्मांड के माप का विस्तृत वर्णन भी है। इसके साथ न्यूमरोलॉजी सिर्फ अंकों पर ही आधारित होती है जी, हम इसे मान सकते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से जिक्र किया है, लीलावती ग्रंथ का फिर से बात आई है, और इन्हीं सभी ग्रंथों की बात फिर से आई है, और इस बात के लिए बहुत अलग अलग परंपराओं की बातें कही हैं, और उन ग्रंथों के बारे में भी बताया है कि सुंदरी विद्या जो थी वो अंक विद्या कही जाती है, जो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने अपनी पुत्री सुंदरी को 1 से 9 तक के अंकों को सिखा कर दी थी, ऐसा कहा जाता है। दशकुमार चरितम पंचतंत्र की कहानी पर आधारित, मगर शीर्षक संख्या पर है। क्या बात है, इतनी सारी जानकारी मुझे भी मिल रही है, कई चीजें तो मुझे भी नहीं पता थी। मैं एक शिक्षक हूं, मगर आज बच्चों को 1 2 3 तो आते हैं, पर हिंदी के अंक

अणु विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित विज्ञान शास्त्र, इतिहास, संस्कृति विवरण, वेद, भगवत गीता, सब कुछ समाहित है। और इसे लिखा था, पहले इस ग्रंथ को जो लिखा था वो कुमुदेंदु सूरी ने इसकी रचना की है, और इसके कई सारे अनुवाद किए गए हैं। और पहला कन्नड़ में, कन्नड़ लिपि में 2003 में अनुवाद किया गया था, और इसमें 6 लाख पदे हैं, और इस आकार के हिसाब से बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसके बारे में भी जानकारी मुझे मिली थी, तो ये सारी जानकारियां आप जो दे रहे हैं, मैं जो दे रही हूं, हम सभी इकट्ठी करते हैं और इन ग्रंथों के पढ़ने के लिए भी आगे बढ़ते हैं, ताकि हमें भी अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाए। और अब हमारे श्रोताओं ने कहा कि वो सुडोकू सॉल्व करते हैं, और मैं आपको बताऊं कि आप तो सॉल्व करते हैं, कई सारे बच्चे सॉल्व करते हैं। इस बात को देखा गया है कि जो सुडोकू सॉल्व करते हैं वो बच्चे बहुत होशियार होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। हमारे श्रोता ने लिखा, पहले जमाने में कोई इंसान को राजदंड के गुनाह में दंडित यानी दंड दिया जाता था, कौड़ी का दंड करते थे, तो हमारे यहाँ कहावत ये हो गई कि आदमी कौड़ी का भी नहीं है। जी, 5 सिद्धांतिका गणितीय पुस्तक है, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, वराह मिहिर के द्वारा रचित ये रचना है। जी बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम आपको अगले गीत की तरफ बनाते पहुंचाते हैं। और हमारे श्रोता ने बताया कि वो वर्ग पहेली सुलझाती हैं, बहुत अच्छी बात है, अंकों से वो दूर दूर तक नहीं जाती क्योंकि उन्हें कठिन लगती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आप अंकों के पास जाते हैं तो अंक आपके दोस्त बन जाते हैं, और ये अंक आपके जीवन में बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं। तो अंकों से दोस्ती कीजिए, और सुनते हैं हम अगला गाना, 5 रुपया 12 आना। ये इस गीत के गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए और सुनिए ये गीत।

तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। तो ये प्यारा सा गाना हम सुन रहे थे चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देववर्मन का संगीत, और गायक कलाकारों के नाम हमने आपसे पूछे थे तो आपने बड़े मजेदार तरीके से उत्तर दिए हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले। बिल्कुल सही। अब हम चल रहे हैं अगली कुछ बातों की तरफ और मैं आपके लिए दो प्रश्न देने वाली हूँ। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि भगवान स्वामीनारायण ने अपने ग्रंथ वचनामृत में भूगोल का वर्णन किया है। बिल्कुल सही है। बचपन में एक आना पांच पैसे का एक सिक्का और एक पैसे का तांबे का सिक्का मिलता था जी, छह पैसे का मिलता था जिसमें मलाई बर्फ पोकचा मिल जाता था जी। बिल्कुल सही बात है। 1978 में मैट्रिक इम्तहान में गणित कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों में 100 में से 100 नंबर आए थे और इनका पसंदीदा विषय त्रिकोणमिति था। चलिए जल्दी से बताइए अगला प्रश्न यही है कि आपको गणित में कितने आए थे। ऐसे ऐसे सबके सामने गणित के अंक नहीं पूछने चाहिए, इस बात को मैं भी समझती हूँ, तो क्षमा कीजिएगा। हमारे श्रोताओं ने बताया कि ये फिल्म उन्होंने कल रात ही देखी और आज रात ही मतलब यानी कल रात ही उन्होंने देखी और बहुत हंसी वो इस बात पे। हमारे श्रोता ने बताया कि 18 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत गीता में और 18 अध्याय को पढ़ना समझना बहुत बढ़िया बात है। आपने भी बहुत रोचक बात साझा की। हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वो संभा कितने आदमी थे सरदार दो, देखा गब्बर का फेमस डायलॉग भी अंकों पर आधारित जी। बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारे श्रोताओं ने लिखा है और हमारे श्रोताओं ने मैं जिस ग्रंथ की बात कर रही थी उस ग्रंथ के बारे में जिक्र भी किया था जिसके बारे में उन्होंने मुझे बताया। मैं आपके सामने अगला प्रश्न रख रही हूँ क्योंकि मैंने इतने सारे गीत आपको सुनाए हैं और तो एक दर्द देना तो बनता है, वो दर्द ये है कि बताइए रोमन अंकों में एक एक्स लिख दिया जाता है, एक्स अंग्रेजी अल्फाबेट का एक्स वाई जेड का एक्स है ना, तो एक्स का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए कि एक्स का मतलब क्या होता है। और ये दर्द मेरी तरफ से आपके लिए।

इस गीत के साथ ही हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि एक्स का अर्थ क्या होता है रोमन अंकों में, और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, 10 होता है। और इस 10 के साथ मैं एक अंतिम प्रश्न मैं आप तक पहुंचा रही हूं, और ये अंतिम प्रश्न ये है कि अंकों की दुनिया में एक कविता है अंकों की, गुलजार ने लिखी है, वो कविता का शीर्षक अगर आप मुझे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो अगला गीत है, इस गीत के गीतकार का नाम बता दीजिए, और सुनिए ये गीत जो आप सबको पसंद है।

0: इंतजार।
1: कौन है
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार?

हम सुन रहे थे तीजा फिल्म का यह गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाज में। हमने आपसे पूछा कि इसके गीतकार कौन हैं। गीतकार हैं जावेद अख्तर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ ये गीत। और हमने आपसे पूछा था गुलजार की वो कविता जिसे आप सुनते हैं और जिसमें अंकों की बात की गई है, तो एक शरीर में कितने, दो, 10 तोला, बोसाकी का पंचतंत्र, ऐसी कई सारी कविताएं हैं और केवल एक ने नहीं कई सारे लोगों ने लिखी हैं और हम उन सबको सुन रहे हैं। ऐसे ही गणित और अंक आपके जीवन में सदा साथ रहे। हमारी श्रोता ने बताया कि उनको गणित में कम नंबर आते थे लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो 100% अंक लगभग लेकर आने लगे हैं। और ये बात सच है कि बच्चे मेहनत करते हैं तो माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। आज के इस कार्यक्रम सुरीला सफर में बस इतना ही। गणित के साथ पले, बढ़े, खेले और आगे बढ़े, बस यही जीवन है। बहुत धन्यवाद।

नमस्कार। आज त्रिवेणी में उस तैयारी की बात जो भीड़ में भी अलग से पहचान बनाती है। ये तो सच है कि भीड़ में भी केंद्र बिंदु बन के ज्यादातर तैयारी पहली तैयारी पहनावे की होती है। ये सच है कि सुरुचिपूर्ण पहनावे और रखरखाव से व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है और पहले पहल ध्यान भी आकर्षित करता है। लेकिन असली प्रभाव का पता तब लगता है जब कोई सूटेड बूटेड व्यक्ति या सजी सवरी महिला मुंह खोलते हैं, यानी बात करते हैं। बात करने का सलीका सिर्फ समाज में ही नहीं, घर में भी कमाल का असर दिखाता है। क्रोध में आपाद मस्तक डूबा घर का कोई सदस्य भी प्यार मनुहार से मान जाता है। यही तो है संवाद कौशल, यानी बातचीत का ढंग। बात कहने की कला का मतलब ना तो बातें बनाना है और ना ही बातों में उलझाना है, बल्कि अपनी बात इस तरह रखना है कि सुनने वाले व्यक्ति पर उसका पूरा असर हो। ये तभी होगा जब विचार स्पष्ट, शब्द और टोन संयत हो और अपनी बात कहने के साथ ही दूसरे को भी कहने का मौका मिलेगा।

0: हो जाएगा।
1: पहले सोचो फिर बोलो, बचपन की ये सीख बड़े काम की है, क्योंकि इसी से समय, स्थान और परिस्थिति का ध्यान रखकर बोलने की आदत पड़ती है। सामने सामने बातें हो रही हो या मंच से अपनी बात कही जा रही हो, बोलते वक्त समय पर नजर रहे, साथी किस तरह बात करनी है इसका भी ध्यान रहे, तभी तो बातों में वजन आता है। बिना सोचे समझे बोलने के बजाय चुप रहकर सुनना कहीं अच्छा है। बहुत पुरानी या पहले की बातों पर ध्यान देना यूं तो जरूरी है। उदाहरण के लिए अतीत का जिक्र किया जा सकता है अगर कोई सलाह देनी हो, लेकिन बातचीत का संदर्भ वर्तमान से जुड़ा रहे तभी बातों का असर होता है।

बातचीत में टोन यानी लहजा भी बहुत खास भूमिका निभाता है। कैसे किसी को संबोधित किया जाता है, किसी बात पर कैसे असरदार ढंग से हामी भरी जाती है या बिना किसी को चोट पहुंचाए असहमति प्रकट की जाती है, ये जताने में टोन साथ देती है। बात संयत ढंग से मीठे लहजे में कही जाए तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी बात रखी जा सकती है। तुलसीदास जी ने कहा भी है, कोयल काको देत है कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो कर लेत।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
4: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
6: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। खतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था।

0: उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हनयू और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलादिनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं पहला नगमा देवदास फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, साहिर लुधियानवी के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत।

0: हम सुन रहे थे राजहट फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो है फिल्म झनक झनक पायल बाजे से। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और वसंत देसाई का है संगीत।

0: हम सुन रहे थे परिवार फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत बड़ा भाई फिल्म से। आशा भोसले और तलत महमूद ने इसे गाया, प्रेम सक्सेना ने इसे लिखा और नाशाद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का

0: बढ़ाना।
1: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा कार्यक्रम मनचाहे गीत।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।
1: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सभी पसंद करते हैं इस कार्यक्रम को, इंतजार करते हैं अपनी बारी के बारे में भी कि हमारी बारी कब आएगी और हमारा गीत कब आएगा। तो चलिए चलते हैं इस गीत की तरफ जो कि है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं, गुलजार के बोल हैं, खयाम का संगीत है। जानेंगे इस गीत के बाद कि पसंद किया है किसने।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे और हमने कहा था कि बाद में बताएंगे कि पसंद किसकी है, तो पसंद किया है कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने। ये कई बार हमारा मन होता है ना कि हमारा नाम रेडियो पर आ जाए, या कई बार मन होता है कि हमारा पसंदीदा गीत हमारे कानों में पड़ जाए, और शायद इन दोनों की पूर्ति करने का नाम ही है मनचाहे गीत। तो चलिए मनचाहे गीत में आपका मनचाहा गीत यानी आपकी पसंद में से किसी एक की पसंद का अगला गीत हम आपके को सुनाने वाले हैं। बड़ा प्यारा सा गीत है और इसे मांगा है चंडीगढ़ पंचकुला सेक्टर 9 से आशु अश्विनी गोविंद चुद परिवार ने और टोनी दीवान ने। ये बहुत सुंदर सा गीत है, आइए सुनते हैं इसे और आप अपनी फरमाइशें यानी अपनी पसंद हमारे पास यूं ही उसी डाकिया, उसी पोस्ट कार्ड, उसी लाल काले डब्बे के साथ भेज सकते हैं, ढेर सारी आशीर्वाद प्रेम और स्नेह के साथ भेजिएगा जरूर अपनी पसंद।

सौतन फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे थे। ये लता मंगेशकर ने गाया, सावन कुमार ने इसे लिखा और उषा खन्ना ने इसे संगीतबद्ध किया। इस गीत को मांगने वालों की बात, इनकी इस गीत को पसंद करने वालों के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब हम चल रहे हैं हमारे अगले गीत की तरफ। कई बार हमारे श्रोता हमें ही हैरत में डाल देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई गीत सुना दीजिए। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं ने हमसे हमारी पसंद के गीत मांगे हैं उनका नाम हम आपके सामने बता देते हैं और उसके बाद सुनवा देते हैं अपनी पसंद का एक गीत। हमारे श्रोताओं में गांव नागड़ावास तहसील मालिया या मियाना से कुछ हमारे श्रोता हैं। गुलाम रसूल राउमा, दिलावर राउमा, रियाज राउमा, इरसाद राउमा और शम्स राउमा, इन सभी ने हमारी पसंद का गीत सुनने को कहा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे मेरा साया फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ ये गीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और बड़ा प्यारा सा कार्यक्रम मनचाहे गीत, जो हम सभी पसंद करते हैं। और उसी मनचाहे गीत में एक और चिट्ठी हमारे पास आती है, और बड़ा अच्छा लगता है जब ये पोस्ट कार्ड हमारे हाथों में बहुत समय के बाद वापस आते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है। और हमारे श्रोता हैं बोरोले नगर चोपड़ा महाराष्ट्र से, उनका नाम है मच्छिंद्र पाटिल, कल्पना पाटिल। उन्होंने फरमाइश की है अगले गीत की, यानी अगला गीत मांगा है उन्होंने, तो आइए सुनते हैं वो अगला गीत उनकी पसंद का।

प्यार सहारा। हम सुन रहे थे वापस फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत हमारे अगले श्रोता की पसंद का, जो कि उन्होंने भेजा है उदयपुर से। ये खत हमारे पास आया है, एक पीला पोस्ट कार्ड जिस पर बहुत मोहब्बत से लिखा गया है कि ये गीत उन्होंने हमसे मांगा है। नाम है अशरफ खान, जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और मंजू निम्मी, इन सब ने मांगा है ये गीत नाग मंदिर फिल्म से। बहुत खूबसूरत सा गीत है, आइए सुनते हैं।

0: हम सुन रहे थे नाग मंदिर फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और कार्यक्रम मनचाही गीत यहीं पर समाप्त होता है। आगे भी आपकी इसी तरह के पोस्ट कार्ड और चिट्ठियों का इंतजार रहेगा हमें। आप अपनी चिट्ठियां भेजते जाइए और हमारे साथ जुड़ते जाइए मनचाही गीत कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: मनचाही गीत।
2: मन चाहे गीत।

सूखे पेड़ को धूप से बचाना चाहे तब उसे क्या करना चाहिए। इसी भावभूमि पर खड़ा है ये सूखा पेड़, यानी आज का हमारा नाटक। तो आइए सुनते हैं लेखक और प्रस्तुतकर्ता लोकेंद्र शर्मा का नाटक सूखा पेड़।

0: रिकॉर्ड प्लेयर? रिकॉर्ड बजाकर कहाँ चले गए सब?
1: सब नहीं गए, मैं हूँ।
0: ओहो जीजा जी, मगर आप ये अंधेरा करके क्यों बैठे हैं?
1: यूं ही बत्ती जलाने को मन नहीं किया, वैसे भी अंधेरे में संगीत अच्छा लगता है, नहीं?
0: अच्छा तो लगता है बाबा, मगर ये है गलत।
1: गलत क्यों? अरे ये बंद क्यों कर दिया?
0: गलत इसलिए श्रीमान जीजा जी, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, मैं घर आ चुकी हूँ। और बंद इसलिए किया क्योंकि आप शाम के समय सुबह का राग सुन रहे थे। देखिए देखिए खिड़की से बाहर।
1: भाई अब हम तुम्हारी तरह संगीत का हिसाब किताब तो जानते नहीं, बस कुछ सुनने को जी किया सो तुम्हारी अलमारी में से रिकॉर्ड निकाला और बजाने लगे। अब अकेले बैठे बैठे दीवार आखिर कब तक घूरे?
0: अकेले? मगर पल्लू कहाँ है?
1: कहकर तो गई थी कि क्लब जा रही है, मगर इस समय कहाँ है वो नहीं मालूम।
0: ओहो ये अच्छी छुट्टियां बिताने आए हैं आप दोनों मियां बीबी नैनीताल, एक पूरब को जाता है दूसरा पश्चिम को, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
1: समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आता मीनाक्षी, इसलिए मैंने तो समझने की कोशिश ही छोड़ दी है। पर एक बात बताओगी?
0: पूछिए।
1: कुछ चाय वाय पिलाने का प्रोग्राम हो सकता है क्या?
0: ओ श्योर श्योर, क्यों नहीं, जरा कपड़े बदल लूं, दिन भर के पहनी हुई साड़ी है ना।
1: अच्छी बात है, तुम साड़ी बदल कर आओ, तब तक मैं किचन में जाकर गैस पर पानी रखता हूँ।
0: क्यों आप क्यों, ये काम आपका नहीं है और आप तो वैसे भी मेहमान है मेरे।
1: मेहमान तो इस दुनिया में सभी हैं मीनाक्षी देवी।
0: बस बस रहने दीजिए, अब फिलॉसफी की क्लास मत शुरू कीजिए, वैसे ही दिन भर स्कूल में पढ़ा कर आ रही हूँ।
1: पढ़ा कर आ रही हो क्या, इसीलिए मुझे भी स्टूडेंट समझकर डांटोगी?
0: नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप चुपचाप बैठिए, चाय मैं बनाऊंगी।
1: चाय भले ही तुम बनाओ मीनाक्षी, पर चुपचाप बैठने के लिए मत कहो, सारा दिन बीत गया है बिना बोले।
0: पल्लू क्या सुबह ही चली गई थी?
1: गई तो तीसरे पहर थी, मगर दो पहर तक सोई, उसके बाद घंटे भर नहाई, फिर घंटे भर श्रृंगार किया, फिर चली गई।
0: दिल्ली में भी ऐसे ही चलता है क्या?
1: कभी खुद ही आकर देखो ना।
0: यानी अगर खुद आकर देखना मुमकिन नहीं हो तो आप बताएंगे नहीं?
1: बताने जैसा कुछ है ही क्या।
0: सच कह रहे हैं, कुछ नहीं है।
1: देखो अब तुम चाय बनाने की बात को गोल मत करो।
0: ओह सॉरी, मैं चेंज करके ये आई
1: और मैं किचन में ये गया।
0: जाइए मगर कीजिएगा कुछ नहीं।
1: नहीं करूंगा बाबा, मगर वहाँ बैठकर तुम्हें चाय बनाते हुए देख तो सकता हूँ।
0: ओहो मुझे देखने का प्रोग्राम है, तब तो जरा बन संवर कर आना पड़ेगा।
1: जैसे भी जाइए, अब आप जल्दी से जाइए और खटक से आइए।

0: अल्लू, क्या तुम सचमुच खाना नहीं खाओगी?
1: अरे कहा ना बाबा, मिसेस सिन्हा ने मुझे आज इतना इतना खिला दिया है कि लगता है कल तक भूख ही नहीं लगने वाली।
0: हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
1: अच्छा,
0: मालूम है आज जीजा जी ने अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए हैं।
1: ओहो, तो फिर अभी तक खाए क्यों नहीं?
0: तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ना।
1: लेकिन प्रभाकर को तो मालूम था कि आज मेरा डिनर मिसेस सिन्हा के साथ है।
0: ये मिसेस सिन्हा से बड़ी जल्दी दोस्ती कर ली तुमने। अभी 10 दिन ही तो हुए हैं तुम्हें नैनीताल आए हुए।
1: अरे 10 दिन तो बहुत है यार, दोस्ती तो 10 मिनट में हो सकती है।
0: कभी कभी तो 10 बरस में भी नहीं होती पल्लू।
1: हाँ, नहीं होनी हो तो 10 जन्म तक नहीं होती। पर तू जाना, जाके पराठे खा ले, मैं तो जरा देर रजाई में बैठूंगी। हाथ पांव तो सुन हुए जा रहे हैं। बाप रे बाप, तेरी नैनीताल की रातें तो बहुत ही ठंडी हैं यार।
0: कॉफी पियोगी क्या?
1: कॉफी तो ऐसा कर, पहले तुम लोग जाके खाना खा लो।
0: मेरी एक बात मानिए जीजा जी।
2: कौन सी?
0: आप एक पराठे की दुकान खोल लीजिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे। मजा आ गया।
2: अच्छे लगे तुम्हें?
0: कह तो रही हूँ, मैं आपकी दुकान की परमानेंट ग्राहक बनने को तैयार हूँ।
2: ना बाबा ना, तुम जैसी पेटू को ग्राहक बनाकर दिवाला नहीं निकालना मुझे अपनी दुकान का।
0: क्यों क्यों क्यों?
2: क्योंकि तुम खाओगी उधार और मेरा हो जाएगा बंटा ढार।
0: बंटा ढार तो लगता है आज अपना हो गया है। ओ, इतना खा लिया है कि अब उठा भी नहीं जा रहा।
2: तुम मत उठो ना, बैठी रहो, कुछ देर और बातें करते हैं।
0: यहाँ डाइनिंग टेबल पर? मालूम है क्या टाइम हो गया है? 9 बज चुके हैं रात के, और सर्दी के मारे कुल्फी जमी जा रही है। चलकर बिस्तर में सोइए, पल्लू आपका इंतजार कर रही है।
2: करने दो, मैं भी तो करता हूँ रोज रोज उसका इंतजार।
0: 10 दिन हुए हैं आपको नैनीताल आए हुए, और इन 10 दिनों में एक दिन भी आप दोनों को नॉर्मल नहीं देखा। इतने खींचे खींचे, आखिर बात क्या है?
2: बात क्या है यही तो मेरी समझ में नहीं आता मीनाक्षी, कि आखिर बात क्या है। कभी कभी जिंदगी में बात बस इतनी ही होती है कि कोई बात नहीं होती। नो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बना रहे तो बात भी बनी रहती है, लेकिन
0: क्या हुआ? कुछ कह रहे थे आप, लेकिन क्या?
2: इस लेकिन के आगे कुछ नहीं है मीनाक्षी। जिंदगी में आदमी बहुत कुछ चाहता है, पर उसके रास्ते में जगह जगह लेकिन खड़े होते हैं। सारी कामनाएं एक लेकिन तक आकर रुक जाती हैं। मैंने भी शादीशुदा जिंदगी के बहुत मीठे मीठे सपने देखे थे। सपनों में प्यार के बादलों पर उड़ा था, रोमांस की हवाओं में तैरा था, लेकिन सपना तो बंद आंखों से देखा जाता है ना, आंखें खोलने पर तो कमबख्त जिंदगी नजर आ जाती है।

0: जीजा जी, अरे कहाँ है?
1: मैं यहाँ हूँ मीनाक्षी, छत पर।
0: ओ ऊपर, मैं आपके लिए कॉफी लाई थी।
1: यहाँ ऊपर ही ले आओ, आज की धूप बहुत मजेदार लग रही है।
0: वो तो होगा ही, आज संडे जो है, संडे तो सूरज का दिन होता ही है।
1: संडे छुट्टी का दिन भी तो होता है, जिसकी बदौलत तुम दिन भर घर में ही होती हो।
0: लेकिन मैं दिन भर घर में हूँ, क्या इसलिए आप ऊपर छत पर आ गए?
1: वो बात नहीं है, एक तो धूप में अच्छा लग रहा था, दूसरे तुम्हारे घर की इस छोटी सी छत पर आकर लगता है जैसे यहां से सारी दुनिया दिखाई देती है। देखो ना, दूर दूर तक बिछी चांदी के माथे वाली पहाड़ियां, पहाड़ियों से गलबैया डालकर लेटे रास्ते, और ऊपर इस कोने से उस कोने तक तना हुआ नीला कच्चा आसमान। सच मीनाक्षी, इतना बड़ा आसमान मैंने कभी नहीं देखा। शहर के आसमान को तो इमारतों की ऊंचाइयां खा जाती हैं, लेकिन यहां बैठकर जी करता है कि इस ढेर सारे आसमान की ताजी हवा को तलछट तक पी जाऊं।
0: लेकिन श्रीमान जीजा जी, फिलहाल आपको ये कॉफी पीनी है।
1: कॉफी? हाँ हाँ हाँ, लाओ लाओ लाओ। भाई, इस कुनमुनी धूप में गुनगुनी कॉफी जानती हो कैसी लगती है?
0: जैसे रजाई ओढ़कर पानी के टब में बैठे हो। भाई हंसो मत, अपन तो पहले ही कहते हैं कि कविताबाजी में बात करना अपने बस का नहीं। आपकी तरह कोई कवि या फिलोसफर तो है नहीं हम, बस सीधे सादे म्यूजिक टीचर हैं। सरगम चाहे सीधी गवा लो चाहे उल्टी, वही सात सुर आते हैं अपन को तो।
1: सात सुर तो बहुत हो गए मीनाक्षी, जीवन को सुरीला बनाने के लिए तो एक सुर का आना ही काफी है।
0: सुर का आना नहीं, सुर का मिलना।
1: हाँ, शायद ठीक कहती हो, मेरी बेसुरी जिंदगी का शायद यही कारण है कि मेरा और पल्लवी का सुर कभी मिला ही नहीं।
0: वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं तार ढीला है, पर मैं पूछती हूं क्यों, आखिर इसका कारण क्या है?
1: कारण मेरे और

0: हमारे सुर के मिलने का कारण क्या है?
1: जीजा जी,
0: मन के तार सितार के तारों की तरह मुर्दा नहीं होते मीनाक्षी, उन्हें कसने के लिए किसी औजार की जरूरत नहीं पड़ती।
1: मैं नीचे जाती हूँ।
0: ठहरो मीनाक्षी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
1: कोई ऐसी बात मत कहिए जीजा जी जिसे सुनना मेरे लिए गलत हो।
0: तुम मुझे नाम लेकर क्यों नहीं बुलाती?
1: यही कहना था?
0: नहीं, कहना तो पता नहीं क्या था, लेकिन ये बताओ, अपने मेहमान को नैनीताल की सैर नहीं करवाओगे?
1: जी,
0: मेरा मतलब है आज तुम्हारी छुट्टी है, मौसम भी अच्छा है, कहीं घूमने नहीं चल सकते क्या?
1: एक शर्त पर, कि आप मुझसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेंगे।
0: इस शर्त पर नहीं करूंगा कि तुम मुझसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं पूछोगी।
1: जाने दीजिए, शर्तों का बंधन कोई अच्छी बात थोड़ी ही है।

0: ओहो, बोर कर दिया आपने तो।
1: क्यों भाई?
0: पिछले घंटे भर से बस यही पूछे जा रहे हैं, इस पेड़ का नाम क्या है, इस फूल को क्या कहते हैं, ये किस चिड़िया की आवाज है, ये रास्ता कहाँ जाता है। इसके अलावा जैसे करने को कोई बात ही नहीं है।
1: है क्यों नहीं? चलो तुम्हारी बात करते हैं।
0: मेरी? मेरी कौन सी बात?
1: यही कि जब तुम यूं तुनकती हो तो।
0: तुनकती मतलब?
1: हाँ मतलब जब तुम यूं किसी बात पर चिढ़कर नाक सिकोड़ती हो
0: तो
1: बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे तुम पहाड़न हो।
0: पहाड़न हूँ? ये क्या बात हुई, मैं तो हूँ ही पहाड़न। पहाड़ में पैदा हुई, पहाड़ में पली बढ़ी और पहाड़ में ही एक दिन देखना मरूंगी भी।
1: अरे भाई अब देखो ये मरने वरने की बात मत करो।
0: अच्छा बाबा नहीं करूंगी, तो भी रहूंगी तो पहाड़न ही, आपकी तरह पहाड़ थोड़े ही हो जाऊंगी।
1: पहाड़? मैं तुम्हें पहाड़ जैसा दिखता हूँ।
0: हाँ ज्वालामुखी पहाड़।
1: ज्वालामुखी पहाड़।
0: और नहीं तो क्या, जैसे ज्वालामुखी पहाड़ को ऊपर से देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके भीतर कितनी आग है। आपका भी वही हाल है, भला इस तरह आपको हंसता देखकर कौन कहेगा।
1: कहो ना, रुक क्यों गई?
0: कुछ नहीं ऐसे ही, पागल हूं मैं भी।
1: नहीं मीनाक्षी, पागल नहीं हो तुम, तुम एक बेहद सेंसिटिव लड़की हो। ये पानी की धारा देखती हो, बिल्कुल इस पानी जैसी हो तुम, एकदम स्वच्छ निर्मल। कुछ बोलोगी नहीं?
0: शाम होने वाली है।
1: हाँ वो नीचे अंधेरा धीरे धीरे सिर उठा रहा है।

0: बातें ही करें, ये क्या जरूरी है?
1: कतई नहीं, और खास तौर पर जब तुम साथ हो तब तो बिल्कुल नहीं।
0: तो फिर?
1: तुम्हें ने कहा था कि ज्वालामुखी पहाड़ हूं मैं क्या करूं, कभी कभी अनजाने में ही भीतर का लावा फूट पड़ता है।
0: अच्छा पहाड़ साहब, अब इधर से आइए।
1: इधर? मगर पहाड़ जी, ये रास्ता तो लगता है कि किसी भूतिया हवेली की तरफ जाता है।
0: जी नहीं, ये शॉर्टकट है मंदिर का।
1: मंदिर?
0: हाँ, देवी का मंदिर। आइए।

0: कितना अच्छा लगता है ना, यहाँ इस समय रोज इसी तरह पूजा होती है। ये मंत्रों का स्वर, लोबान का धुआं, मंदिर का आंगन, सब कितना अच्छा लगता है, नहीं?
1: मुझे नहीं लगता।
0: अरे क्यों?
1: देवी देवताओं पर मेरा कतई विश्वास नहीं है।
0: एकदम नास्तिक है।
1: टोटल। इन पत्थर की मूर्तों की जगह मैं इंसानों में ज्यादा विश्वास करता हूँ।
0: धीरे बोलो, अगर देवी ने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगी।
1: फिर क्या करेंगी नाराज होकर?
0: वो जब देवी बैठी है ना घर में, पल्लू देवी, उसे आपके खिलाफ भड़काकर चंडी देवी बना देंगी। क्यों हंसे क्यों?
1: भाई पल्लवी को तुमने पल्लू देवी अच्छा कहा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो?
0: कुछ नहीं, आप हंसते हैं तो अच्छा लगता है।
1: अरे हंस लेते हैं हम भी कभी कभी, जब तुम जैसा कोई साथ हो तो।
0: वो नीचे किसी की शादी हो रही है।
1: हाँ, घोड़े पर दुल्हन बैठी हुई है।
0: घोड़े पर नहीं, घोड़ी पर। और दुल्हन नहीं, दूल्हा। जिसे आप घूंघट समझ रहे हैं वो सेहरा है जनाब।
1: अच्छा भाई, वो इतनी दूर है ना, तो मैं समझा के। और क्या है कि अंधेरा है ना, तो पेट्रोमैक्स की रोशनी में कुछ ठीक से। वैसे एक सच्ची बात बताऊंगी तुम्हें, मुझे शादी ब्याह के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ये सेहरा और ये।
0: हद हो गई, आखिर आपने भी तो शादी की थी। घोड़ी पर बैठे थे या मोटर में?
1: कुछ और बात करूं मीनाक्षी।
0: सुबह से देख रही हूँ, जब भी आपकी और पल्लवी की शादी के बारे में कोई बात शुरू करती हूँ आप टाल जाते हैं। आखिर बात क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
1: इतने दिनों से देख तो रही हो, अब भी क्या कुछ कहने पर ही समझोगी?
0: समझना नहीं, जानना चाहती हूँ।
1: जानकर क्या करोगी, और उससे होगा भी क्या?
0: होगा भी क्या, शायद ठीक सोचते हैं आप, मेरे किए क्या हो सकता है। और शायद इसीलिए आपकी शादी के बारे में सवाल करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं।
1: नहीं नहीं, वो बात नहीं है, आखिर तुम बहन हो पल्लवी की।
0: हाँ बहन हूँ, मगर मौसेरी। पल्लवी मेरी मौसी की लड़की है।
1: तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें सगा मानता हूँ।
0: सगा? सगा मानते हैं, किस रिश्ते से?
1: रिश्तों के क्या नाम होना जरूरी है मीनाक्षी?
0: पता नहीं।
1: कहने को पल्लवी मेरी पत्नी है, पर पत्नी क्या ऐसी होती है? सच पूछो तो मेरी और पल्लवी की शादी दो परिवारों के बीच हुआ एक सामाजिक समझौता है। शादी के बावजूद पल्लवी ने अपनी जिंदगी में कुछ भी खोया नहीं, और मैंने शादी के बावजूद अपनी जिंदगी में कुछ भी पाया नहीं। इसे रिश्ता कौन कहेगा? तुम तो पल्लवी को शुरू से जानती हो ना मीनाक्षी।
0: नहीं तो, आपकी शादी से पहले शायद एक दो बार ही मुलाकात हुई थी। मैं तो बचपन से यहाँ नैनीताल में ही पली बढ़ी, और पल्लवी दिल्ली में रहती थी। बस कभी कभार मौसी के साथ यहाँ घूमने आती थी।
1: लेकिन पल्लवी तो कहती है कि उसकी और तुम्हारी खूब जमती थी।
0: जमती थी? पता नहीं।
1: देखो मीनाक्षी, तुमने पल्लवी के और मेरे बारे में पूछा है, तो एक बात मैं भी पूछूंगा।
0: पूछिए।
1: तुमने

0: तक शादी क्यों नहीं की?
1: जी
0: अपना सवाल दोहराऊं मैं?
1: बर्फ का पहाड़ बंजर होता है प्रभाकर बाबू, बर्फ में फूल नहीं खिलते।
0: अगर बर्फ पिघलकर धरती में जज्ब हो जाए तो?
1: रोज रोज कहां होता है ऐसा, बस एक बार हुआ था मेरे साथ भी, कई बरस हो गए उस बात को, अब तो लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है। तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, पल्लवी गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल आई हुई थी और उस बार वो अकेले

0: आती है साले तू। हाय सच्ची मीना, तेरा गाना सुनकर तो साले दिल का इना मीना डिका हो जाता है।
1: रहने दे रहने दे, झूठी तारीफ करने से जबान कट जाती है।
0: ले, ये झूठी तारीफ है? मुझे अगर थोड़ा सा भी गाना आता ना तो हाय हाय हाय आशिकों की लाइन लगा देती।
1: छी, कैसी बातें करती है।
0: अरे तू क्या जाने, हाय हाय हाय सच कहो मीनाक्षी, अगर तो ये चश्मा ना लगाती और तेरे चेहरे पर ये दो चार चेचक वाले दाग नहीं होते ना, तो अपनी सुरीली आवाज की रस्सी में 20 लड़के बांध सकती थी तू।
1: लगता है तूने कई बांध रखे।
0: अरे अपन को साला गाना आता ही कहाँ है मीनाक्षी।
1: नहीं आता तो सीख ले।
0: नॉट ए बैड आइडिया। अच्छा चल ठीक है, इधर ला अपना सितार।
1: सितार नहीं, तानपुरा।
0: अरे हाँ हाँ यार, वो एक ही बात है, सितार कहो या तानपुरा, पर वो किधर गई तेरी सरगम वाली वो कॉपी, पता नहीं कहाँ रख देती है। हाँ ये रही। अब बोल बोल ना यार, कौन सा राग गाऊं? अरे
1: नहीं,
0: बोल ना।
1: नहीं नहीं, ये कॉपी मुझे दे।
0: हाँ मेरा राग भी तो सुन लेना कॉपी में से। अरे छुपी रुस्तम, कॉपी में ये फोटो किसका है?
1: मैं कह रही हूँ दे दे ये फोटो मुझे।
0: तो ये बात है बच्चू, इस फोटो का जादू है। हाय हाय मैं भी तो कहूँ, गले में से ऐसे ऐसे मीठे सुर कैसे फूट रहे हैं।
1: मैं कहती हूँ पल्लू फोटो मुझे दे दे।
0: अरे देती हूँ बाबा, देती हूँ ना, देख लेते कोई अच्छी तरह से।
1: बस हो गया, अब दे दे।
0: हो गया, ये तो मैं समझ गई जाने मन, पर ये बता मेरी जान कब हुआ?
1: देख पल्लू तू
0: कब से चल रहा है तेरा ये मामला?
1: 3-4 महीने से।
0: अच्छा तो ये भी तो बता दे, कौन है ये तेरा बांका?
1: लड़का है।
0: अरे हाँ हाँ वो तो मैं भी देख रही हूँ, मगर इसका नाम क्या है?
1: शेखर।
0: शेखर तेरी क्लास में पढ़ता है?
1: सीनियर है।
0: ये भी गाना गाता है क्या?
1: नहीं, सुनने का शौकीन है।
0: हाय भाई है तो बहुत शानदार, पर असलियत में भी इतना खूबसूरत है कि सिर्फ फोटो में ही दिख रहा है?
1: देखकर बताना।
0: अरे यार यही तो मैं पूछ रही हूँ, कब मिलवाएगी?
1: शाम को।
0: अच्छा।

0: कल तुमने अपनी जिस बहन से मिलवाया था, क्या नाम है उसका?
1: पल्लवी।
0: हाँ, पल्लवी। कितना नया नाम है। नहीं
1: नहीं, नया काहे को, हिस्टोरिकल है, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने का। जरा एक मिनट ठहरो ना।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: देखो ना, यहाँ से नीचे झील कितनी सुंदर लग रही है, जैसे चांदी का फर्श हो।
0: मालूम है, अगर यहाँ से पांव फिसल गया तो इस चांदी के फर्श तक पहुँचते पहुँचते हड्डी पसली के कितने टुकड़े होंगे।
1: अगर तुम साथ रहो तो फिर हो जाए टुकड़े, किसे परवाह है।
0: जाने दो, आगे चलते हैं।
1: ओके।
0: अच्छा ये बताओ कि अब वो यहीं रहेगी?
1: कौन?
0: अरे वही तुम्हारी हिस्टोरिकल बहन पल्लवी।
1: यहाँ? यहाँ क्यों रहेगी, वो तो दिल्ली में पढ़ती है ना, यहाँ तो सिर्फ छुट्टियां बिताने आई है।
0: मतलब महीने भर रहेगी?
1: हाँ महीने भर तो जरूर रहेगी, मगर क्यों?
0: नहीं ऐसे ही, बहुत सुंदर है तुम्हारी बहन, बिल्कुल जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं से निकल कर आई हो।
1: सगी थोड़े ही है, मेरी मौसी की लड़की है।
0: आई नो, सगी होती तो तुम्हारी सूरतें इतनी अलग अलग थोड़ी ही होती। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये बालों के जूड़ी से क्या बना लेती हो, पल्लवी की तरफ पोनीटेल क्यों नहीं करती?
1: तुम्हें अच्छी लगती है तो अब किया करूंगी।
0: कल झील में बोटिंग के लिए चले?
1: कल बोटिंग? लेकिन पल्लवी आई हुई है ना।
0: तो क्या हुआ, उसे भी साथ ले लेंगे, एक से भले तो दो से भले तीन।
2: अरे मीनू की बच्ची, अभी तक किताबों में घुसे हुए, कब तक पढ़ती रहेगी? तुझे मालूम है ना कल मैं दिल्ली वापस जाने वाली हूँ।
1: वो तो ठीक है पल्लू, मगर इम्तिहान भी तो सर पर है।
2: इसीलिए आजकल किताबों का कीड़ा बनी हुई है, बाहर आना जाना सब बंद।
1: तेरे पास भी तो फुर्सत नहीं है मेरे से बात करने की।
2: अरे यार मैं तो आई ही मस्ती मारने हूँ। और फिर अपना तो ये है कि मौज कर लो जितने कर सकते हो, ये दिन कोई साले लौट कर तो आने वाले हैं नहीं।
1: अपना अपना नजरिया है, मैं तो समझती हूँ आने वाले कल को खुशनुमा बनाना हो तो आज थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है।
2: अरे रहने दे यार अपनी ये फिलोसफी, हानि तो भूख आज लगी है और तू कहती है रोटी कल खाएंगे।
1: तुझे क्या पता, एक दिन उपवास रखो तो अगले दिन खाना खाने में ज्यादा मजा आता है।
2: अब छोड़ना छोड़ना यार ये बुढ़ियों वाली व्रत उपवास की बातें, आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग। इन्हीं बातों ने ना तुझे मरगिल्ली बना रखा है। देख देख देख, मेरे जैसे जिंदा दिल होती ना तो किताबों में आंखें गढ़ा कर चश्मे का नंबर बढ़ाने के बजाय रोज शाम को किसी बॉयफ्रेंड के साथ डिस्को में डांस करती हुई नजर आती।
1: ना बाबा ना, ये सब ना मुझे अच्छा लगता है और ना ही शेखर को।
2: शेखर को? तो क्या तू अभी तक शेखर के नाम की माला जप रही है?

0: वो हंसी आज भी जैसे मेरे कानों में गूंजती है प्रभाकर बाबू, जैसे वो हंसी पल्लवी की नहीं मेरी तकदीर की थी, जो किसी श्राप की तरह मेरी जिंदगी पर छा गई। कितनी मूर्ख थी मैं, जो आईने में अपनी सूरत देखकर भी किस्मत पर शक नहीं हुआ मुझे। इतना भी ख्याल नहीं आया कि रेगिस्तान में सैर करने कोई नहीं आता, सब सब अजंता एलोरा जाना चाहते हैं।
1: सब नहीं मीनाक्षी, सिर्फ वही जो शेखर होते हैं, और शेखर हर कोई नहीं होता।
0: क्या पता कौन कैसा है, ये परखने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में एक अजीब सा डर था जिसे सीने में दबाए जिंदगी की डगर चुपचाप चलते चलते 35 बरस पार कर गई हूं, मगर पल्लवी की वो हंसी जैसे आज भी किसी प्रेत की तरह दोनों हाथों से मेरी गर्दन दबाए हुए है।
1: मेरी तरफ देखो मीनाक्षी, मेरी आंखों में देखो, क्या इन आंखों में तुम्हें कहीं झूठ की छाया दिखाई देती है?
0: कहना क्या चाहते हो?
1: दिल की पूरी सच्चाई से मैं ये कहना चाहता हूं मीनाक्षी कि तुम बहुत सुंदर हो।
0: प्रभाकर,
1: एक दिन पल्लवी ने तुमसे शेखर को छीना था, क्योंकि शेखर की नजरों में पल्लवी ज्यादा सुंदर थी, और आज उसी पल्लवी का पति तुम्हारी सुंदरता के आगे बिकने को तैयार है मीनाक्षी।
0: सूखे पेड़ से तो किसी को छांव भी नहीं मिलती प्रभाकर बाबू।
1: मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूं मीनाक्षी, मैं तो चाहता हूं कि अपमान के उस प्रेत से तुम्हें मुक्त कर दूं जिसने तुम्हारी गर्दन दबाई हुई है।
0: नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अपमान के जिस शहर ने मुझे जीवन भर तड़पाया है, उसे मैं पल्लवी के गले में कैसे उड़ेल दूं? पल्लवी आखिर मेरी बहन है, इस शहर को तो मैं किसी पेड़ की जड़ों में भी नहीं डाल सकती।

कभी नहीं, कभी नहीं। ठूठ होकर जीने का दर्द मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा, कौन जाने?

0: सूखा पेड़। अभी आपने ये नाटक सुना। लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे लोकेंद्र शर्मा।
1: ये है विविध भारती।
2: उजाले

श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार

0: जिंदगी में थे कैसे, उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर, उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी।
1: पूरे एक दौर की हम बात कर रहे हैं, सदाशिव अमरापुरकर जी की पूरी यात्रा, जहां पर वो एकदम विलेन के रोल से कॉमेडी रोल्स की तरफ चले आते हैं और फिर वो मराठी सिनेमा में अपनी पसंद का अलग अलग तरह का काम कर रहे होते हैं। इतने बरस हो गए थे सिनेमा में काम करते हुए और कई बार एक एक जैसा काम भी हो रहा था। क्या ये वो दौर था 90s का जब उनके भीतर एक तरह का असंतोष आना शुरू हुआ था?
2: डेफिनेटली, क्योंकि ये किसी भी कलाकार के लिए एक ही तरह का काम करना ये एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। मराठी में शिक्षा कहते हैं, उसका मतलब है पनिशमेंट,
1: सजा।
2: सजा किसी भी संवेदनशील कलाकार के लिए ये एक सजा होती है। और रेस्टलेसनेस तो डेफिनेटली उनमें आ ही रहा था, पर जैसा मैंने कहा कि उन्होंने ये मान लिया था कि मुझे मेरा घर, मेरे परिवार के लिए अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे ये करना है। ये उन्होंने एक पॉइंट पे मान लिया था और उन्होंने वो निभाया। लेकिन जैसे हमने बात की कि आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्में करते वक्त वो वास्तु पुरुष दोगी जैसी फिल्में कर रहे थे, वैसे ही आउट एंड आउट कमर्शियल काम करते वक्त, विलनी का काम करते वक्त भी वो सामाजिक कामों में खुद को बहुत बिजी रखते थे। तो उनकी लाइफ में हमेशा ही दो ट्रैक चलते थे, हालांकि तीन ट्रैक भी कह सकते हो फैमिली का अगर ट्रैक पकड़ा जाए तो, वरना करियर वाइज अगर देखा जाए तो दो ट्रैक्स उनके चलते थे। एक तो जो कमर्शियल काम वो करते थे वो, और दूसरा जो सामाजिक काम करते थे वो। उन्होंने कभी सामाजिक काम की तरफ करियर के तौर पर नहीं देखा, उन्होंने हमेशा उसे एक जिम्मेदारी, एक कलाकार, और अगर मैं आज कुछ हूँ, अगर मैं जो कहता हूँ मेरे कहने को अगर कुछ वजन है तो उसका उपयोग मैं किस लिए करता हूँ, इसका उन्हें हमेशा ख्याल रहता था और वो करते थे। इसलिए वो सामाजिक कृतज्ञता निधि की हमने बात की, वो उनका चल रहा था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में भी वो कार्यरत थे। मुक्तांगन डी एडिक्शन सेंटर जो है पूना में, जो पहला डी एडिक्शन सेंटर महाराष्ट्र में बना, उसमें भी वो इन्वॉल्व थे, बिकॉज डॉक्टर अनिल अवचट और सुनंदा अवचट उनके साथ उन्होंने वो किया था। डॉक्टर आनंद नाडकर्णी के साथ इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ, सो मेंटल हेल्थ में भी वो काम कर रहे थे। फिर अहमदनगर में रेड लाइट एरिया में स्नेहालय करके एक संस्था है, आज भी है और बहुत अच्छा काम कर रही है, कि जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स है उनके बच्चों के लिए वो संस्था ने काम करने से शुरुआत की, और आज के दौर में लगभग 1,000-1,500 बच्चों का, जिनका शोषण अलग अलग तरीके से होता है, जो वायलेंस को फेस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी वो संस्था काम करती है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो अहमदनगर के एक युवक ने जब ये डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, एक ब्राह्मण युवक ने, ये कहना बहुत जरूरी है बिकॉज ये अगेन 90s का दौर है जब जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी, और जैसा मैंने कहा कि अहमदनगर एक बहुत ही पैट्रियार्कल सिटी है, आज भी है। तो उस वक्त एक ब्राह्मण लड़के ने ऐसी बस्ती में जाना और वहां की औरतों के साथ काम करना या उनसे बातचीत करना, ये बहुत ही खराब नजरिए से देखा जाता था। पर जब गिरीश वो काम कर रहे थे और पापा जब ही नगर जाते थे तो ये जो सारे काम करने वाले लड़के लड़कियां थे ये पापा को मिलने आते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब गिरीश आया मिलने, तब गिरीश ने बताया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, और गिरीश पापा के कॉलेज प्रोफेसर के बेटे थे, तो इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तब पापा ने ये स्टेटमेंट दी हुई थी अहमदनगर के लोकल न्यूज़पेपर्स में कि देखो ये जो औरतें हैं ये भी हमारे समाज का ही एक घटक है, इसलिए इनके लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है। और फिर अहमदनगर में लोगों का नजरिया धीरे धीरे धीरे धीरे बदलने लगा। फिर पापा स्नेहालय के ट्रस्टी भी बने। फिर कुछ दिनों के बाद वो वहां से निकल गए क्योंकि उन्होंने कहा कि अब संस्था अगर खुद से चल रही है तो मेरे होने की जरूरत नहीं है। पर वहां पर आमिर खान को ले जाना हो, सत्यमेव जयते में बिल्कुल पहले एपिसोड में स्नेहालय की केस स्टडी है,
1: बिल्कुल,
2: तो आमिर खान को ले जाना हो या श्याम बाबू को ले जाना हो, ऐसे बड़े बड़े लोगों को उस वक्त वो अहमदनगर लेके जाते थे, ये देखो ये ऐसे काम कर रहे हैं बच्चे, इनको ऐसे हम लोगों ने मदद करनी चाहिए, इस तरह से उनका काम चलता था।

0: तो हालांकि कलाकार के तौर पर थोड़े से अनसेटल्ड वो हो रहे थे, क्योंकि उनकी जो रेंज थी, जिस तरह काम करने की उनकी क्षमता थी, उतना काम उन्हें उस वक्त नहीं मिल रहा था, उतनी रेंज का काम नहीं मिल रहा था, तो वो था। लेकिन वो इन कामों में खुद को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे थे, तो इसलिए वो जो एक डिससैटिस्फैक्शन था वो सैटिस्फैक्शन में इस काम की वजह से वो बदल पा रहे थे।
1: बिल्कुल, इंपॉर्टेंट बातें हुई इस पूरे सेक्शन में, और मुझे लगता है कि अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, तो कौन सा गाना होगा?
0: पापा का एक बहुत ही पसंदीदा गाना था, इतनी शक्ति हमें देना दाता।
1: वाह, अंकुश फिल्म का ये गाना। और यहाँ मैं दो क्रेडिट जरूरी तौर पर याद करना चाहूंगा, इसे अभिलाष जी ने लिखा था और कुलदीप सिंह का संगीत।
0: यस,
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत मजेदार बातें हुई हैं और चूंकि मेरा काम इन बातों को एक दिशा देना है, मुझे पीछे का एक सूत्र याद है जो हम छोड़ के चले आए थे कि इसकी बात आगे करेंगे, डॉक्टर श्रीराम लागू और सदाशिव अमरापुरकर के रिश्ते की बात।
1: हाँ जी, डॉक्टर लागू अब कैसे बताऊं मैं, जैसा मैंने मेरे शो में भी कहा हुआ है, उन्होंने कन्यादान प्ले जो था वो एक साथ किया,
0: तेंदुलकर वाला,
1: और उसमें डॉक्टर लागू को निर्देशित किया था पापा ने।
0: ये बहुत बड़ी बात बहुत मानी बड़ी जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लागू एक दर्जे के कलाकार थे।
1: करेक्ट।
0: और उनको डायरेक्ट करना कोई आसान
1: काम
0: नहीं,
1: और उन्होंने मानना कि ये युवक है और ये मुझे डायरेक्ट करेगा
0: जी।
1: ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर लागू ऑलरेडी सामाजिक कामों में काफी बिजी थे और काफी इन्वॉल्व थे, तो ये जो बात है ना जो पापा के अंदर थी, पर उस बात को हवा देना, उस चिंगारी को हवा देने का काम डॉक्टर लागू और निरू भाऊ ने किया कि हम कलाकार हैं और हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हमें निभानी है। तो इस तरह से पूरी तरह से उन्हें सामाजिक विचारधारा में और सामाजिक कामों में खींचने का काम डॉक्टर लागू ने किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर लागू अगर नहीं होते तो शायद हमारा परिवार फिर से अहमदनगर, मतलब अहिल्यानगर हम जैसे कहते हैं, फिर से अहिल्यानगर जा चुका होता। क्यों? क्योंकि जब हमें वो किराए का घर छोड़ना पड़ा और पापा ने सीएम के पास जाकर तेंदुलकर साहब ने उन्हें चिट्ठी दी थी, तो म्हाड़ा का घर भी अगर लेना हो तो आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है, और उस समय इतना पैसा नहीं था पापा के पास कि हम घर ले पाए या डिपॉजिट भर पाए। तब पापा ने जाकर डॉक्टर लागू को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 2 मिनट के अंदर लाके उन्हें वो पैसे दे दिए थे और वो फिर वो डिपॉजिट भर पाए और हमारा घर हो पाया। ये एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन डॉक्टर लागू की हमारे परिवार के जीवन में रही है। और दूसरी एक जो बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो डॉक्टर लागू की वजह से पापा करने लगे और कर पाए, वो बात ये थी कि जो भी तुम कहना चाहते हो वो ठीक ठीक कहो। अभी ये हुआ है कि हम लोग काफी डिप्लोमेटिक हो गए हैं। एक समय था जब कलाकार पॉलिटिशियंस सब लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाया करते थे, आज वो दौर नहीं रहा। तो वो समय था जब डॉक्टर लागू ने पापा को बताया था कि तुम कलाकार हो, तुम नेशनल लेवल पर काम कर रहे हो, तुम काम बहुत करोगे, अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको सबको खुश रखना होता है, पर ये कभी मत भूलना कि तुम्हें ये जो शोहरत मिली है, तुम ये जो मशहूर हुए हो, ये एक इट्स अ वेपन, इसका इस्तेमाल तुम्हें किस चीज के लिए करना है ये तुम डिसाइड करोगे। तो इसलिए कभी भी जब भी मौका मिले और सच की और तुम्हें खड़ा रहने का चांस मिले तो डेफिनेटली खड़े रहना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख जो डॉक्टर लागू ने खुद के बर्ताव से भी हमेशा सामने लाई हुई है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वो डॉक्टर लागू से सीखे पापा, ये बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो सीखे पापा को मिली वो उन तक सीमित नहीं रही, वो उन्होंने अपने बर्ताव से, अपने जीवन से और अपनी बातों से हम तक भी वो पहुंचाई। मुझे याद है जब पापा गुजर गए थे और निखिल वागड़े जी आए थे कि श्रद्धा सभा में, और तब उन्होंने कहा था कि अब हम मराठी न्यूज चैनल्स अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा बड़ा नाम बचा ही नहीं है जो हमें रिएक्शन देगा,
0: विरोध करेगा,
1: जो विरोध करेगा या सामान्य आदमी को, नागरिक को क्या लग रहा है इसके बारे में बात करेगा, ऐसी आवाज ही नहीं बची है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो पापा ने बखूबी निभाई। जब अण्णा हजारे जी का अनशन उन्होंने किया था दिल्ली में, तब भी महाराष्ट्र में वो हवा बनाए रखने में पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उस वक्त।
0: घर की एक बात मुझे याद आई कि बाद के दिनों में ऐसा हुआ था कि किसी ने उनको सुझाव दिया था कि सरकार कलाकार कोटे से बड़े घर या बंगलो देती है, और उन्होंने रिफ्यूज किया था कि मैं वो नहीं कर सकता।
1: करेक्ट। पापा एक ऐसे कलाकार है, आई थिंक एक अकेले ऐसे कलाकार है जिन्हें म्हाड़ा के 2% में से घर मिला था, और जब उन्होंने खुद का घर खरीदा बाद में, तब उन्होंने वो माड़ा को वापस कर दिया।
0: गजब।
1: हालांकि उन्होंने उसके लिए पैसे भी भरे थे, सब कुछ था, पर उनका कहना था कि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे ये मिला था, तो आज किसी और को अगर ये जरूरत है तो ये जरूरत पूरी होना ज्यादा जरूरी है।
0: वो आराम से बेच सकते थे पैसे,
1: वो
0: ले सकते थे।
1: बेचकर वो ले सकते थे, बिकॉज हम वहां पर 7-8 साल रहे थे, तो जो 4 साल का लॉक इन पीरियड होता है वो भी निकल चुका था, तो वो बेच सकते थे, पर उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने वो वापस कर दिया।
0: गजब।
1: और इसी तरह उस समय अंधेरी में, जो अभी बहुत ही बड़ा एरिया है लोखंडवाला का, उस वक्त माड़ा के छोटे छोटे छोटे छोटे बंगले हुआ करते थे, जिनके काफी स्टूडियोज बन चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों ने वहां पर वो छोटे छोटे माड़ा के घर लेकर बहुत सस्ते में, क्योंकि मिल रहे थे,
0: आज भी मौजूद है,
1: आज भी मौजूद है, और वहां पर बंगले में स्टूडियोज और ये सब बनाए। तो उस समय जो पापा के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा सदाजी हम भी ले लेते हैं, एक स्टूडियो बना देते हैं उधर, डबिंग स्टूडियो रहेगा, एडिटिंग स्टूडियो रहेगा, एक इनकम शुरू हो जाएगा। तो पापा ने कहा क्यों मैं करूं ये सब, अगर मैं ये करता हूं तो कोई और जो व्यवसाय के तौर पर करना चाहता है उसका मैं रोजगार छीन रहा हूं, जो मुझे नहीं करना है। तो आपके बच्चों के लिए ये, वो मेरे बच्चों को मैं सिखा रहा हूं, वो बड़े होंगे, उनको जितना कमाना है कमाएंगे, नहीं कमाना है नहीं कमाएंगे, दे डोंट नीड टू डू दिस, मैं उनके लिए जागीरें बना के नहीं रखूंगा, ये उनका एक कहना होता था। तो हाँ, उनको हर बार इलेक्शन जब भी होता था तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से उनको बुलावा आता था कि आप हमारी ओर से खड़े रहिए, आप हमारी ओर से। पापा ने कभी नहीं किया, या कोई भी सामाजिक संस्था में भी उन्होंने कोई भी डेजिग्नेशन नहीं लिया। तो वो कहते थे जो काम करना है ना वो मुझे बताओ, मैं करता हूं, मुझे ये डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, आपने मुझे चेयरमैन बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज उसके साथ जो जिम्मेदारी आती है, लीगल हैसल्स आते हैं, वो कौन करेगा? बिकॉज जैसा मैंने कहा वो कलाकार थे,
0: बिल्कुल,
1: उन्हें उनकी कला में रस था और जो अच्छा काम करना है उसमें रस था।
0: क्या बात है।
1: पापा का ये हमेशा कहना होता था कि मेरे बच्चों को जो भी कमाना है वो खुद के बलबूते पर वो कमा लेंगे, मैं उनके लिए जागीरें नहीं रखूंगा। और ये मेरे ख्याल से ये हमारी फैमिली का ही
0: ट्रेडिशन
1: है, बिकॉज मेरे दादाजी का भी यही कहना था कि मैं तो धर्मादाय कर दूंगा सब कुछ, तुम्हें देखो जो करना है, जैसे खुद का घर चलाना है तुम चलाओ, ऐसे ही पापा का भी था। तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक काम भी दादाजी करते थे, वही हमारे घर में चलता आया है, और ये भी वैल्यूज आई थिंक वहीं से आई हुई है।
0: बिल्कुल। रीमा जी, अब हम अपनी बातचीत के लगभग आखिरी मकाम पर आ पहुंचे, जहां एक कठिन बात करनी है, और वो है कि जब सदाशिव जी बीमार पड़े और वो जो पूरा आखिरी दौर है, जाहिर है वो सब आपने देखा है, उन दिनों को थोड़ा याद करें।
1: उन दिनों को याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि पापा की आवाज उनकी ताकत थी, और जब वो बीमार हुए और उनको इंटरस्टेशियल लंग डिसीज करके एक डिसीज होता है, जिसमें अपने जो फेफड़े होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप में दमसांस नहीं है तो आप आवाज भी नहीं निकाल पाते। तो इसलिए उनकी आवाज धीरे धीरे धीरे धीरे कमजोर होती गई, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ट्रेजिक था। और उस समय उनकी उम्र ही क्या थी, ही वॉज 63, 63 साल के थे वो, आगे और बहुत 10-15 साल तो कम से कम वो काम कर पाते अगर
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: उन्होंने डिसाइड किया होता तो। लेकिन वो डिसीज हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, इसलिए वो बात नहीं कर पाते थे, और वो इतने ऑनेस्ट थे कि उनके पास प्रोड्यूसर्स तब भी आते थे कि सदाजी ये छोटा रोल है आप ये कर दीजिए। कई कलाकारों को हम भी जानते हैं जो बीमार होते हुए भी काम करते रहते हैं, पर पापा उनको बोल देते थे कि देखो अगर तुम्हें लगता है मैं उसी तरह से बोलूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये मेरी आवाज की हालत है, इस तरह से वो बहुत ओपनली और क्लियरली बात बताते थे। वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट हम सबके लिए था, बिकॉज आप सोचिए कि एक पहाड़ जैसा आदमी, जिसको आपने बचपन से इतना स्ट्रांग, इतना क्या कहते हैं,
0: जुझारू
1: एक्चुअली, और रियल लाइफ में भी सिर्फ पर्दे पर नहीं देखा हुआ है, वो जब आपके सामने धीरे धीरे धीरे धीरे वीक होता जाता है तो ये आप सहन नहीं कर पाते, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही तकलीफ वाला दौर था, पूरे 6 महीने जब वो बीमार थे तब। और मैं क्या कहूं, तब लोगों ने, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब आप मशहूर होते हो तो जैसे प्यार भी करते हैं लोग, तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है और उसकी भी एक निजी जिंदगी है। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी उस वक्त, लोग ये चाहते थे, जैसे अभी धर्म जी के बारे में भी हुआ कि उनका आईसीयू में उनका वीडियो निकाला गया, तो वैसे लोग चाहते थे, मुझे चैनल से फोन आते थे कि रीमा उनका एक आईसीयू में एक फोटो निकाल के आप भेजो, ओके। या लोग मिलने आते थे, तो उस समय मोबाइल फोन्स कैमरा फोन्स आ गए थे, 2014 की बात कर रही हूं मैं, तो हम ये देखते थे कि जो भी अंदर जा रहा है पापा से मिलने उसके साथ कोई ना कोई हो, बिकॉज हम ये नहीं चाहते थे कि कोई फोन निकाले, वीडियो निकाले, फोटो निकाले और सर्कुलेट करे, बिकॉज वो एक कलाकार थे,
0: ये होना ही नहीं चाहिए।
1: हाँ,
0: कोई भी रीजन हो, नहीं
1: और नहीं, और लोग उन्हें जिस तरह से याद लोगों ने रखना चाहिए, वो उनकी बुलंद आवाज, वो उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग, उनकी दहशत जो पर्दे पे वो पैदा करते थे, वो याद रखे। ये क्यों याद रखना है?
0: बिल्कुल,
1: जैसे इवन धर्म जी के बारे में जब हुआ तो इतना बुरा लगा कि ही मैन, ही इज द ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री,
0: राइट,
1: और उनको इतना वीक दिखाकर आप क्या हासिल कर रहे हैं?
0: देखिए, समय और उम्र किसी को नहीं बख्शते हैं,
1: exactly.
0: तो इसलिए उसका लिहाज कर लेना चाहिए,
1: बहुत,
0: और
1: बहुत
0: लोगों को अपनी प्राइवेसी में छोड़ देना चाहिए ऐसे समय,
1: बिकॉज पापा अहमदनगर को अपने दिल में रखे हुए थे, तो ये बात तो पक्की थी कि उनका जो भी अंतिम संस्कार है वो अहमदनगर में होगा। तो जब हम अहमदनगर गए और हमारी जो हवेली है उसके आंगन में ही पापा को रखा हुआ था दर्शन के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 2-3 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी, और वो लाइन रुकी नहीं रही थी। अल्टीमेटली एक 4-5 घंटे के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि अभी बस, अभी जाना जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी मुंबई से हम वहां गए थे, काफी समय बीत चुका था। तो उस समय लगभग 50-60 हजार लोग पापा के अंत्य यात्रा में थे, और वो सिर्फ अहमदनगर से थे ऐसा नहीं,
0: दूर दूर से आए थे,
1: दूर दूर से आए थे। और बाद के जो 15-20 दिन है, पूरा महीना जो हम लोग रखते हैं, पूरे महीने तक हमारी हवेली में लोग आ ही रहे थे, माथा टेक ही रहे थे और जा रहे थे। राजस्थान से लोग आए, पश्चिम बंगाल से आए, कहां कहां से आए, कुछ नहीं, सिर्फ उनके दर्शन करने, बस उनकी हवेली देख ली, उनके बच्चों को देख लिया, उनके भाई को देख लिया, बस। ये जो लोगों की दुआ मिली है उस वक्त, और ये जो प्यार हमें दिखाया है, क्योंकि पापा बाहर जाकर किस किस के लिए क्या क्या करते थे ये कभी घर आकर हमें बताते नहीं थे, पर उसके बाद आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि पापा की याद किसी ने ना निकाली हो, कोई ना कोई वो याद निकालता ही है। और हर एक 2-3 महीने में ऐसा कुछ किस्सा पता चलता है कि अरे पापा ने ये भी किया था, पापा ने ऐसा भी किया था, ये भी मदद की थी, ये कब किया था उन्होंने।
0: गजब।
1: तो ये जो बात है कि जब इंसान, हम उसके बच्चे होते हैं, हम एक तरीके से उसको देखते हैं, वो मेरे लिए मेरे पिताजी थे, वो एक हीरो थे, बहुत महान कलाकार थे, अग्रीड, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरे पापा थे। तो मेरी कुछ पर्सनल शिकायतें, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज वो उनके साथ थे ही, मैं ना नहीं कहूंगी, लेकिन अब लगभग 11 साल हुए हैं, और अभी 11 साल के बाद भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उनका कोई रेफरेंस ना निकलता हो। तब आपको पता चलता है कि जो इंसान आप अपने पिताजी समझते थे वो सिर्फ आपके पिताजी नहीं थे,
0: वो पूरे संसार के लिए क्या थे।
1: एग्जैक्टली। और सिर्फ एक कलाकार भी नहीं थे वो, ही वॉज सो मच मोर। तो एक थोड़ी सी समझ आ जाती है कि फिर आप इंसान को एक ही दायरे में ना देखे, उसके कई मायने हैं, और उन सारे मायनों में आपने देखना चाहिए इंसान को। तो ये आज भी मैं सीख रही हूँ उनसे, आज भी सिखा रहे हैं वो मुझे।
0: क्या बात है।
1: जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं तो मुझे लगा नहीं था मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन जब एक एक एक एक एक एक आप पूछते गए, तो ऐसी भी काफी सारी चीजें मैंने कही जो आज तक मैंने कहीं पर नहीं कही थी।
0: बिल्कुल।
1: अर्थात आकाशवाणी घर ही है हमारा। अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि हमने रुकना चाहिए।
0: गाना बजाते हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे।

0: रीमा जी, उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम यादों के उजाले बिखेरते हैं। आपकी यादों में पिताजी किस तरह से सामने आए, ये सुनते हुए और आपसे बातें करते हुए लगातार मुझे सदाशिव जी की बातें याद आ रही थी जो विविध भारती में उनके आने पर उन्होंने बताई थी, और बहुत दिलचस्प बातें थी। तो अब तक आपने पिताजी के बारे में बताया, अब संग्रहालय से पिताजी की आवाज निकालते हैं और हम सब मिलकर सुनते हैं सदाशिव अमरापुरकर की बातें। और हाँ, ये बातचीत हमारी साथी कांचन प्रकाश संगीत ने सदाशिव जी से की थी बरसों पहले, तो संग्रहालय से ये आया ऑडियो।
1: अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
2: अच्छा।
1: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
2: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
1: तो आप अपने बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
2: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर, ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50 टका हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़।

0: धूप करते थे।
1: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
0: सब कुछ होता था सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया। और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे, तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द गिर्द जाते रहे हैं?
0: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांदबीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदबीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी? इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें?
0: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
0: और उसके बोल है, मेरे दिल में है।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला, हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं। नाटक करता रहा, धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी।
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
1: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
0: जी।
1: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
0: तो वो पलट के नहीं देखती थी?
1: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया, हमारे अंदर, हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
0: तो आ तो गई। गीत सुन लेते हैं।

0: गलिया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना, थिएटर की जो बात है वो वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई, और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
2: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मैं मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूं तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले, एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए। और थिएटर करने लगा, तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
2: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
2: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने, क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसा लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
2: नहीं नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
2: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी, नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता है हेलो फरमाइश।
2: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाए किसी होटल में, चाय पीने जाए, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो।
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
2: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
2: बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगा?
2: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
2: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
2: जी जी,
1: जी।

0: ये सदाशिव जी की आवाज। देखिए ना, इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं, और विविध भारती में तो ऐसा होता है कि आवाजें रह जाती हैं, और कितनी ही आवाजों के उजाले हमारे स्टूडियो को और हमारे संग्रहालय को रोशन करते हैं। रीमा जी, बहुत सारी बातें हुई हैं, और अब वो वक्त है जहां आपको एक बहुत जरूरी काम करना है, और वो ये काम करना है कि एक बेटी होने के नाते कहना है कि इतने वर्ष बाद भी क्या हैं आपके पिता आपके लिए। हो सकता है कि ये एक ऐसी बात हो जो आप उनसे कभी ना कह पाई हो, अपने घर आकाशवाणी में आप कह पाएंगे।
1: एक बेटी होने के नाते मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं बहुत बहुत बहुत नसीबों वाली हूँ कि पापा जैसे पिताजी मुझे मिले। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत बड़े कलाकार थे, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने कभी भी हमें शब्दों में सिखाया नहीं। उन्होंने जो भी किया उसमें से वो चाहते थे और वो हमें खुला छोड़ देते थे कि तुम्हें जो सीखना है इसमें से सीखो। इसी वजह से आज भी, अभी उन्हें गुजरे हुए 11 साल हो गए, आज भी जब कोई घटना याद आती है, कुछ किस्सा याद आता है, तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें से जो मैं सीखती हूँ वो मैच्योर होता जाता है, वो नया नया मुझे सीखने को मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि मैं लकी इसलिए भी हूँ कि ये आज़ादी उन्होंने मुझे दी, हम सब बहनों को इनफैक्ट दी, कि आपको जो करना है वो आप करो, सिर्फ सही करो, कभी भी कुछ गलत मत करो जिससे किसी इंसान को दुख पहुंचे या कुछ गलत हो। उनका सिर्फ एक ही कहना होता था कि आप जो करते हो वो करने के बाद रात में जब आप घर पे आते हो और बिस्तर पर लेटते हो तो एक भी मिनट आपका ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि यार ये मैंने क्या किया। बिस्तर पर लेटते ही आपकी आंखें बंद हो जाए और आपको नींद आ जाए शांति से, ऐसा आपका बर्ताव पूरे दिन में हो, फिर वो आपके काम में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, कहीं पर भी हो। तो ये जो सीख है ये जो पापा ने दी है, और ये उन्होंने जैसा मैंने कहा कि शब्दों में नहीं, उनके खुद के बर्ताव से उन्होंने हमें सिखाई है। और साथ ही मैं ये कहूंगी कि उन्होंने जो लॉयल्टी उनके अंदर थी वो उनकी बीवी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, उनके पिताजी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, हम बच्चों के प्रति उनकी लॉयल्टी थी,

0: वैसी ही लॉयल्टी उनके काम के प्रति भी उनकी थी। जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना उतना मैं ये समझ पा रही हूँ कि उनके जीने के और उनकी पर्सनालिटी के काफ़ी सारे ऐसे पहलू थे जो जब वो थे तब मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैं पापा से ये कहना चाहूँगी कि पापा आपने जो भी करके रखा है एज एन आर्टिस्ट एज अ फादर वो शायद समझते समझते पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन आज भी रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा याद आता है, कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है आपके कोई मीम हो या कोई रील हो कि एक ऊर्जा मिलती है आगे जाने की, और ये ऊर्जा हमारे साथ इतने प्रकार से है आपके होने से, ये नसीब वालों को ही मिलता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि आप मेरे पापा थे। मैंने बहुत झगड़ा किया हुआ है पापा के साथ, काफ़ी बार हम काफ़ी झगड़ते थे, लेकिन वो भी एक फ्रीडम उन्होंने हमें दिया था, उनसे झगड़ा करने का फ्रीडम। बुरा लगता है कि मेरी बेटी उन्हें मिल नहीं पाई, खैर वो अलग अलग तरीके से उसे मिलते रहते हैं।
1: क्या बात है रीमा जी। पिताजी इतने मशहूर कलाकार थे और उनका कामयाबी का झंडा बहुत बुलंद था, जब आपके सामने करियर का सवाल आया तो उनके सामने जाके क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं भी इंडस्ट्री में?
0: हाँ, एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है पूना से, कोखले इंस्टीट्यूट से, तो पापा एकदम सेट थे कि अभी सबसे छोटी बेटी है वो इकोनॉमिक्स कर रही है, वो शायद उसमें पीएचडी करेगी, हो गया, एवरीथिंग इज सेट। पर मैं जब पूना में जॉब कर रही थी तब पूना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ, और तब जाके मैंने राशोमान देखी अकीरा कुरोसावा की, और सिनेमा की ताकत जो है वो सडनली मुझे ऐसे लगा कि यार ये करना चाहिए। मैंने अगर पीएचडी किया तो मैं रिसर्च पेपर लिखूंगी, वो किसी मैगजीन में छप के आएगा, खत्म, ऐसा कुछ करना चाहिए। और मैंने जाकर पापा से ये कहा तो सबसे पहले तो पापा की रिएक्शन थी, पर तुझे तो इकोनॉमिक्स करना था। मैंने कहा हाँ करना था, लेकिन अभी मुझे ये करना है। तो फिर वो कहते थे फिर तू एक्टिंग कर ले। सर मुझे एक्टिंग नहीं करनी। क्यों एक्टिंग क्यों नहीं करनी? बिकॉज वो एकदम ऑफेंड हो गए कि एक्टिंग क्यों नहीं करनी तुझे। तब मैंने उन्हें वो औरंगाबाद वाला किस्सा याद दिलाया कि आपको याद है आप अजंठा नहीं देख पाए थे, तो मुझे कैमरा के सामने नहीं जाना है, मैं कैमरा के पीछे रह के जो भी करना है करूंगी। ओके
1: राइट।
0: तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है फिर आपको अगर करना ही है ये तो उसमें पहले आपको सीखना जरूरी है। फिर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में मैं जाकर सीख कर आई, फिर मैंने असिस्टेंटशिप की, और फिर मेरा करियर जैसे बनना था वैसे बना। पर अगेन जैसे पापा का सामाजिक एक ये रहता था वैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझमें भी है, तो मैं एनजीओज के साथ ज्यादा काम करती हूँ, कमर्शियली मैं थोड़ा कम काम करती हूँ।
1: बहुत सारी बातें पिताजी के बारे में हुई और कई ऐसे पहलू सामने आए जिनके बारे में शायद कभी किसी ने नहीं जाना था, तो इसीलिए सार्थक होता है ये कार्यक्रम जिसका नाम उजाले उनकी यादों के है। तो आपके जरिए यानी रीमा की यादों के जरिए पिताजी सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले आपने सजाए, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे ये लंबी बातचीत करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच। ऐसे होता है ना कभी कभी डर लगता है कि हम बहुत ज्यादा उनकी बातें करेंगे तो रो देंगे, इसलिए कई बार हम खुद से भी दूर भागते हैं और बातें नहीं करते हैं, पर यहाँ बुलाकर वो पुराने दिन किस्से घटनाएं और पापा उनको याद दिलाया, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन आपने जिस तरह से मुझसे बातचीत की है वो बहुत ही मुझे इट हैज बीन एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस।
1: थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: उजाले।

FM 103.7 MHz पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 5 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं युवा साथियों का पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी।

0: फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। चुप रहने से रिश्ते भी उदास हो जाते हैं, इसलिए कुछ हमारी सुनिए और कुछ अपनी सुनाते रहिए। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं ज़िंदगी उन्हीं के आगे सिर झुकाती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट डिंपल सिखवाल। स्वागत करती हूँ आप सभी का ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवा दिलों की धड़कन युववाणी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सामाजिक बुराई की जिसने न जाने कितने परिवारों की खुशियां छीन ली। एक ऐसी कुप्रथा जो आधुनिक शिक्षा तकनीक और विकास के इस दौर में भी समाज के कई हिस्सों में भी मौजूद है और वो है दहेज। फ्रेंड्स, शादी दो व्यक्तियों का ही नहीं बल्कि दो परिवारों का भी पवित्र बंधन माना जाता है। ये रिश्ता प्रेम, विश्वास, सम्मान और समानता की नींव पर टिका होता है। लेकिन जब इस रिश्ते में दहेज जैसी सोच शामिल हो जाती है तो यही पवित्र बंधन कई बार बोझ, तनाव और दुख का कारण बन जाता है। फ्रेंड्स, दहेज का मतलब होता है विवाह के समय लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को कुछ उपहार भेंट करना, जैसे कि लोग आजकल जो उपहार भेंट करते हैं वो है धन, गाड़ी, मकान, आभूषण और अन्य कीमती वस्तुएं देना। यदि ये सब स्वेच्छा से उपहार के रूप में दिया जाए तो अलग बात है, लेकिन जब इसकी मांग की जाए या इसके लिए कोई दबाव बनाया जाए तो ये अपराध और सामाजिक बुराई बन जाती है। और आज भी कई परिवार अपनी बेटियों की शादी के लिए वर्षों तक कर्ज लेते हैं, अपनी जमीन बेच देते हैं या जीवन भर की जमा पूंजी खर्च कर देते हैं। और कई बार दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर बेटियों को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। और ये केवल एक परिवार की ही समस्या नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बेटी और बेटा दोनों समान हैं, दोनों पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, तो फिर किसी बेटी के सम्मान की कीमत दहेज क्यों तय किया जाए, है ना। और आज की युवा पीढ़ी शिक्षित है, आत्मनिर्भर है और समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखती है। यदि युवा स्वयं ये संकल्प ले कि वो ना तो दहेज लेंगे और न ही देंगे तो इस कुप्रथा को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। हमारे देश में दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बनाया गया है और इस कानून के अनुसार दहेज लेना या फिर देना या फिर उसकी मांग करना दंडनीय अपराध है। लेकिन केवल कानून से बदलाव नहीं आएगा, बदलाव तब आएगा जब हमारी सोच बदलेगी। और समाज में कई ऐसे प्रेरणादायक उदाहरण भी है जहां युवाओं ने बिना दहेज के सादगीपूर्ण विवाह करके ये संदेश दिया है कि रिश्तों की नींव धन नहीं बल्कि संस्कार और सम्मान होते हैं। तो श्रोताओं, बेटियों को बोझ नहीं बल्कि अवसर समझिए, उन्हें अच्छी शिक्षा, आत्मविश्वास और समान अधिकार दीजिए, क्योंकि जब बेटियां सक्षम होंगी और समाज की सोच बदलेगी तब दहेज जैसी कुरीतियां खुद ब खुद समाप्त होने लगेगी। तो आप सभी ये संकल्प लें कि न तो आप दहेज लेंगे और न ही देंगे, सम्मान और समानता के साथ आप विवाह करेंगे, क्योंकि यही संकल्प एक बेहतर, सुरक्षित और संवेदनशील समाज की नींव बनेगा। तो दोस्तों युवाणी का सफर यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।

0: बेटा, जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो श्रोताओं, अब आपको ले चलते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट करियर गाइडेंस की ओर, जिसमें आपको सुनवाते हैं संघर्ष से सफलता तक की कहानी के अंतर्गत कोमल दवे और हिमांशी जोशी से संजय दत्त की बातचीत।
5: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक हमारा सेगमेंट होता है करियर गाइडेंस। इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हमने हमारे स्टूडियोज में आमंत्रित किया है दो युवा साथियों को, और जिनका हाल ही में सरकारी सेवा में चयन हुआ है। हम आपको बता दें, हमारे साथ हैं कोमल दवे और हिमांशी जोशी। आप दोनों ही नागौर जिले से आती हैं, और हाल ही में जो राजस्थान सरकार की फोर्थ ग्रेड एग्जाम हुई थी, उसमें आपने अपनी सफलता का परचम लहराया है। तो सबसे पहले तो आप दोनों का आकाशवाणी की स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार।
6: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
7: धन्यवाद सर।
5: तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, और सबसे पहले मैं कोमल जी आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपका ये जो परीक्षा परिणाम है आया, तो वो फीलिंग कैसी थी? और साथ में ये जानना भी चाहूंगा कि क्या आपकी प्रेरणा रही कि आपने, और किस तरीके से ये रास्ता अर्जित किया?
6: तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि जब ये रिजल्ट आया तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये रिजल्ट बिफोर टाइम आया था एक तो, और ये मतलब पूरी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी वाला माहौल था, क्योंकि पहली गवर्नमेंट जॉब है, मतलब एज इफ मेरी फैमिली में मेरी पहली गवर्नमेंट जॉब है। तो उस अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा था माहौल तो, और सबको बहुत खुशी हुई इससे। और बस प्रेरणा तो यही है कि हम अपने पेरेंट्स को देख के ही सीखते हैं, कि मतलब उनके कहे अनुसार ही इच्छा थी कि कोई एक गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए ही चाहिए, तो बस उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की।
5: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। जैसे कि कहते हैं कि सफलता कोई छोटी बड़ी नहीं होती, मायने ये रखता है कि आप सफलता अर्जित करते हो। तो हिमांशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो जो क्षण था सरकारी सेवा में, अब आप चूंकि कदम रखने वाले हो, तो आपने ये रास्ता जो चुना, तो मतलब इसके लिए आपकी पीछे प्रेरणा क्या रही थी?
8: जी सर, तो मतलब जब से ग्रेजुएशन की, उसके बाद से ऐसे था कि सरकारी सेवा के लिए तैयारी तो करनी है, क्योंकि अब हम देखते भी हैं कि मतलब ये थोड़ी प्रतिष्ठा तो होती है, मतलब हमारे समाज में सरकारी सेवा के लिए एक अलग ही वो होता है। तो यही था कि एक मतलब एग्जाम तो सारे देते हैं, तो अब वही है, हर एग्जाम में मतलब किसी नंबर से रह जाते हैं। आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज्यादा है कि फाइनल सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है, तो इसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ तो बहुत सही लगा है।
5: अच्छा, एक बिथक और है कि मतलब जो राजस्थान में अभी जो ये भर्ती हुई है, तो इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने फॉर्म आवेदन किए, और बड़े बड़े योग्यताधारी जो जिन्होंने पीएचडी तक की हुई है, उन्होंने भी तो मतलब कैसा एक मतलब माहौल आप देखते कि सरकारी सेवा, और क्या आप नहीं मानते कि आप कोई स्किल डेवलप करके, कौशल विकास करके भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं? समाज का क्या एक दृष्टिकोण है इस बारे में?
6: अगर समाज के दृष्टिकोण की बात की जाए तो देखो, गवर्नमेंट जॉब में ही स्टेबिलिटी है, क्योंकि अपन स्किल डेवलपमेंट से भी आगे बढ़ेंगे तो वो स्टेबिलिटी नहीं है। समाज यही मानता है कि अगर किसी भी युवा की सरकारी नौकरी है तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और हमेशा मतलब स्टेबल रहेगा। उस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब की सब प्रायोरिटाइज इसी को करते हैं।
5: बिल्कुल। अच्छा हिमांशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नागौर में जो है, मतलब महिलाओं को, खासतौर पर लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, चाहे वो परिवार की तरफ से हो, समाज की तरफ से हो। रूढ़िवादी सोच अभी भी मतलब हमारे समाज में व्याप्त है, फिर भी आपने इन सब रूढ़िवादिताओं को तोड़ते हुए और ये सफलता अर्जित की है, तो आपकी रणनीति क्या थी?
8: ये तो बात सही है कि नागौर में अभी इतना नहीं है एजुकेशन का, लड़कियां भी नहीं, मतलब लड़के भी इतना अवेयर नहीं है मतलब सरकारी सेवाओं में इतना। लेकिन एक होता है अपने परिवार का होता है सपोर्ट, तो मेरे परिवार ने हमेशा मतलब फैमिली ने ये सपोर्ट किया कि मतलब जैसे होता है कि जल्दी शादी करना, इसके लिए फोर्स करना, वो सब कभी नहीं था। यही था कि एक बार इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि लड़कियों को कम से कम पढ़ने का मौका तो दें वो।
5: तो मतलब आपको आपके परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला है इसको लेकर?
8: हाँ, मतलब मेरे पापा खुद

0: टीचर हैं तो उन्होंने मतलब सबको ही सपोर्ट किया है घर में।
1: कोमल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जब तैयारी करते हैं तो कुछ समय कुछ क्षण ऐसे आते हैं कि जब मतलब आपका मनोबल टूटने लगता है, आप मतलब हताश होने लग जाते हो, तो उन स्थितियों को कैसे नियंत्रित किया आपने?
0: मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मेरे को शुरू में मतलब इतना नहीं लगा था कि मैं कर पाऊंगी, मतलब गवर्नमेंट जॉब ले पाऊंगी। तो लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स कुछ ठीक आ रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि एकदम डाउन हो गए थे मेरे मार्क्स। उस टाइम मनोबल टूटा था, तो मेरे मतलब इस मोटिवेशन में मेरा पूरा सपोर्ट मेरे पापा का जाता है। वो मेरे को कंटिन्यू मोटिवेट करते हैं, और फैमिली का माहौल ऐसा रहता है कि आपको ना चाहते हुए भी एजुकेशन में रहना ही है, तो वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। तो मैंने बस उनसे मोटिवेट होकर ही ऐसे जितनी बार भी मैं हारी हूँ उतनी बार मैंने वापस ट्राई किया है हर बार, और स्टिल चल रहा है।
1: बहुत अच्छी सोच है आपकी। हिमांशी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल युवा जो तैयारी करते हैं प्रतियोगिता की तैयारी में, जो लोग अभी लगे हुए हैं, चूंकि आप एक सफल अभ्यर्थी हैं और हाल ही में आपने सफलता अर्जित की है, तो युवाओं में देखा जाता है कि डिप्रेशन, तनाव और अवसाद में आ जाते हैं, ठीक है, और इस स्थिति में वो कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो आप जो युवा अभी तैयारियों में लगे हुए हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: जैसे मैं खुद अपना बताऊं तो मुझे भी 4-5 साल हुए हैं मैं कंटिन्यू इसकी तैयारी कर रही हूँ। तो बीच में बहुत टाइम ऐसा होता है कि किसी एग्ज़ाम में अपना नहीं हो पाता तो सोचते हैं कि अब तो कोई लाइफ नहीं है, वो नहीं है। लेकिन एक तरह से मोटिवेट रह सकते हैं इससे कि अपन एक डेली का अपना टारगेट डिसाइड करें। और जैसे मैं हूँ तो मैं एक अपना जैसे योगा मेडिटेशन सुबह करना, और फ़ोन को थोड़ा साइड रखना, और शाम को जैसे मंदिर थोड़ा, तो उससे थोड़ा रह सकते हैं। और बाकी ये तो सबकी लाइफ में होता है कि एक टाइम ऐसा लगता है कि अब नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन एक फैमिली का सपोर्ट होता है, कुछ अपने फ्रेंड्स होते हैं साथ में जो अपने को मोटिवेट करते हैं कि नहीं कर लेंगे। तो यही मैं बोलना चाहूँगी कि इसमें टाइम तो लगता है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने एग्ज़ाम दिया और आपका हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है इसलिए।
1: जी, हम देखते हैं कि बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा व्याप्त है, तो इसको लेकर के मतलब सरकार की तरफ से क्या प्रयास होने चाहिए? आपका क्या दृष्टिकोण है? कोमल जी, आपसे जानना चाहूँगा।
0: अगर बेरोजगारी को दूर करने के लिए कहा जाए तो वैकेंसीज एक तो टाइम पे होनी चाहिए, और उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए वैकेंसीज में, ताकि बच्चों को समझ में आए कि सिलेबस क्या है और कैसे उनको करना है कवर। क्योंकि अभी क्या है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चंस आउट ऑफ भी चले जाते हैं, तो बच्चों का मनोबल वैसे ही टूट जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब सरकार को पारदर्शिता रखनी चाहिए इन वैकेंसीज में, और प्राइवेटली भी जैसे स्वरोजगार योजना वगैरह तो चलती ही है, उस अकॉर्डिंग भी रोजगार प्राप्त किया जा सकता है।
1: अच्छा, आपको नहीं लगता कि सभी लोगों को तो सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि सरकारी नौकरी की संख्या भी बहुत सीमित है? तो हिमांशी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप मतलब क्या सोचती हैं इस बारे में कि सभी को तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, तो हमें कुछ और ऑल्टरनेट पे भी सोचना चाहिए?
0: हाँ मतलब इसके लिए सरकार खुद भी बोलती है कि आप मतलब जॉब, आजकल तो सरकार का ध्येय वाक्य यही है कि आप जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बनो। तो सरकार इसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे प्रयास कर रही है कि स्किल डेवलपमेंट के, जैसे लखपति दीदी वगैरह, मतलब गाँव में बहुत सारे चल रहे हैं ऐसे जिसमें महिलाओं को भी मतलब बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पे सरकार कर रही है, तो इस मतलब इसमें कर सकते हैं।
1: अच्छा कोमल जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे हम कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी क्या काफ़ी लंबी भी चल जाती है कई बार, क्योंकि परीक्षाएं कई बार ये भी स्थितियाँ होती हैं कि निर्धारित समय पर नहीं हो रही है, कई बार साल साल भर खिंच जाती है, तो ऐसी स्थितियों में क्या है कि आर्थिक ज़रूरतें भी स्टूडेंट के सामने होती हैं, कईयों के परिवार इतने मजबूत नहीं होते कि वो आर्थिक रूप से वो वहन कर पाए, मतलब आपने इन आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तालमेल कैसे बिठाया?
0: तो मैंने जब ग्रेजुएशन की थी उसके बाद मुझे ऐसा चाहिए था कि मैं खुद अर्न करूँ और अपनी एजुकेशन पे लगाऊँ, तो मैंने पार्ट टाइम ऐसे ना ट्यूशन्स लेनी स्टार्ट की थी, मतलब मैथमेटिक्स की, ताकि मेरी स्किल डेवलपमेंट भी हो जाए और अर्निंग्स भी हो जाए थोड़ी। तो युवा ये कर सकते हैं कि मतलब अपनी जो जिसमें तैयारी करनी है उनको उसी में कुछ ट्यूटिंग या फिर ऐसा कर सकते हैं जिससे उनकी अर्निंग भी हो जाएगी और वो आगे तैयारी भी कंटिन्यू कर पाएंगे।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा हिमांशी जी, मैं आपसे जानना चाहूँ कि आज का जो युवा है एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहा है, और तमाम सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स हमारे चारों ओर हैं, आप देखते भी होंगे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो उससे निकल पाना मुझे लगता है आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। तो आप दोनों ने क्या कैसे इन सबको हैंडल किया? सबसे पहले मैं हिमांशी जी आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब कैसे आपने टाइम को मैनेज किया?

0: जी सर, क्योंकि इस टाइम में ऐसा है कि आप पढ़ाई के लिए भी आपको यूज़ करना ही पड़ता है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, तो अब आप उसके बिना रह ही नहीं सकते हो। लेकिन ये है कि अपन उसको लिमिटेड कर सकते हैं कि इस टाइम में हमें पढ़ना है तो उसी वक्त उसे यूज़ कर रहे हैं। अगर लाइब्रेरी जा रहे हैं तो फ़ोन घर रख के जा रहे हैं, और या फिर उसे स्विच ऑफ करके फिर पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। बाकी जैसे मैं खुद का बताऊं तो बीच बीच में ऐसा होता है कि पढ़ाई करने बैठे 10-15 मिनट उससे पढ़े, और उसके बाद में फिर अपन रील देखने लगते हैं, YouTube देखने लगते हैं, तो वो 10 मिनट पढ़ के और 1 घंटा अपन रील्स देखते हैं। तो मतलब मैंने
1: जी
0: खुद ये चीज़ें फेस
1: हाँ
0: करी है, लेकिन उससे फिर अपन को ऐसा है कि 1-2 दिन हुआ तो फिर खुद को संभलना होता है कि नहीं, ये मतलब इसको बंद करना है ऐसा।
1: अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा कोमल जी कि परीक्षाओं की तैयारी के दौरान धैर्य मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपको धैर्य रखना पड़ता है। तो कई युवा ऐसे होते हैं कि जो उनको तुरंत नतीजे चाहिए कि बहुत जल्दी मतलब मैं ये सफलता अर्जित कर लूं, तो आप ये क्या विचार है इस बारे में?
0: मेरे अकॉर्डिंग तो धैर्य के बिना आज सरकारी नौकरी लगना बहुत मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल ही समझो, क्योंकि वैकेंसी आएगी और उसके बाद सेलेक्ट होंगे, उससे लेकर कम से कम 2 साल तो लगते हैं। उसमें धैर्य बहुत ज़रूरी है। इसमें अपन ये कर सकते हैं कि जैसे अपन ने एक कोई प्रिपरेशन की, उसका एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद तुरंत आप दूसरी वैकेंसी के लिए लग जाइए, उसके बारे में एक बार सोचना ही बंद कर दीजिए। जब वो रिजल्ट आएगा तो आपको अपने आप मेहनत की है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, वरना आप जो इसके प्रिपरेशन कर रहे हो वो काम तो आ ही जाएगी। तो बस अपने को रुकना नहीं है, मतलब इंतजार करने के चक्कर में क्या है कि अपन समय बर्बाद कर देते हैं अपना, तो
1: जी
0: समय बर्बाद ना करते हुए अपन आगे की तैयारी शुरू रखें।
1: अच्छा, एक चीज हिमांशी जी आपसे जानना चाहूँ मैं कि तैयारी करते हैं तो जरूरी नहीं कि सफलता मिल जाए, ठीक है। कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मतलब उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाए। क्या आपको लगता है कि हमारे पास एक ऐसा बैकअप प्लान भी होना चाहिए कि जिसको रखना चाहिए ताकि अगर हम सफल नहीं हो पाए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जो असफल हो गए हैं उनके लिए?
0: जी सर, जैसे बैकअप तो मैं मानती हूँ कि होना ही चाहिए, मतलब लेकिन अपन जब एक बार तैयारी शुरू करते हैं तो उस वक्त ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब वो नया नया सा लगता है कि एक बार में हो जाएगा, लेकिन ये परीक्षा ऐसी होती है कि एक बार में नहीं हुआ तो अपन को अगली में लगना ही पड़ता है। तो फिर ऐसा लगता है कि एक बैकअप होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जैसा आपने पहले बोला कि सीट्स तो बहुत सीमित है सरकारी नौकरी में, तो ऐसा नहीं है कि सबकी लग जाएगी। तो जैसे मैंने एमएससी किया है इसीलिए कि मेरा ऐसा था कि अगर नहीं होता है तो टीचिंग करेंगे या पीएचडी करेंगे या रिसर्च में जाएंगे, ऐसा था। इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि जब एमएससी क्यों किया, जब ये करना था, तो यही है कि बैकअप प्लान तो सबके पास होना चाहिए।
1: अच्छा, आपसे एक अंतिम प्रश्न मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो हमारे युवा हैं जो छोटे ग्रामीण इलाके में आप हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं नहीं है, उनके परिवार भी आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है और उनके पास वो सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है जो आप लोगों को प्राप्त हुई होंगी शायद, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, वो किस तरीके से तैयारी करें?
0: अब आजकल जैसा डिजिटल जमाना है, इसमें तैयारी करना इतना मुश्किल नहीं है अपने लिए,
1: जी
0: क्योंकि एक तो सरकारी योजनाएं काफ़ी चल रही है जिसमें सरकारी स्कूलों में फ्री अपने को पुस्तकें मिलती हैं, और जैसे आगे अपन को सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो उसके लिए यूट्यूब पर फ्री में क्लासेस अवेलेबल हो जाती है, मतलब मोस्टली क्लासेस आपको फ्री में मिल जाएगी, और कुछ कम रेट में बुक्स भी मिलती है। अगर युवा चाहे तो अपनी संयम रख के और तैयारी कर सकता है, फ्री में कंटेंट्स भी अवेलेबल है आजकल, तो उस अकॉर्डिंग किया जा सकता है।
1: बहुत अच्छी जानकारी आप दोनों ने हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी युवा श्रोताओं तक पहुंचाई जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो श्रोताओं, आज हमारे बीच थी कोमल दवे और हिमांशी जोशी, और इन्होंने हाल ही में जो 4th ग्रेड की परीक्षा हुई थी उसमें अपनी सफलता अर्जित की है, और आज आपने अपना अमूल्य समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, अभी आप करियर गाइडेंस सेगमेंट के तहत सुन रहे थे संघर्ष से सफलता की कहानी में कोमल दवे और हिमांशी जोशी से संजय दत्त की बातचीत। युवाणी का सफर यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुक जाते हैं छोटे से अंतराल के लिए।
3: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब हम आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया की ओर और सुनवा देते हैं ये बेहतरीन गीत।

तो दोस्तों, अब घड़ी की टिक टिक करती हुई सुइयां इशारा कर रही है कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। हम फिर मिलेंगे कुछ नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, दहेज जैसी सामाजिक बुराई को मिटा दीजिए। अब अपनी दोस्त डिंपल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बालवाड़ी।

बालवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को मेरा जय हिंद। और सुनाइए बच्चों, कैसे हैं आप? भाई अब तो स्कूलें खुल गई है तो थोड़े से व्यस्त से हो गए होंगे, है ना? क्योंकि काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद जो है स्कूल हमारी खुली है। अभी तो आप अपने नए नए दोस्त भी बना रहे होंगे, है ना? और पढ़ाई भी स्कूल में शुरू हो गई होगी अब तो। तो बच्चों मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जब स्कूलें खुल जाती है ना तो यूँ कहें कि बहुत सारी मम्मियों को भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे स्कूल गए, आराम से पीछे से अपना वो काम कर लेती हैं। और हमें भी अच्छा लगता है कि हम हमारे दोस्तों से मिलते हैं काफ़ी लंबे समय के बाद और नए नए दोस्त भी बनाते हैं, है ना? बिल्कुल सही है बच्चों। तो हम ये बस यही उम्मीद करते हैं कि हम बहुत खुश हैं, तो आप भी बहुत ही खुश और मस्त होंगे, है ना? बच्चों आज आपको पता है आज क्या कुछ विशेष दिवस है? कुछ जानकारी है आपको? चलो आज मैं बताती हूँ आपको इसी बारे में कि आज है 12 जुलाई, यानी 12 जुलाई को प्रतिवर्ष सादगी दिवस मनाया जाता है। बच्चों ये प्रसिद्ध दार्शनिक व कवि हेनरी डेविड थोरो को समर्पित है, जो कि सादा जीवन उच्च विचार के प्रबल समर्थक थे। भाई ये बात तो सही है बच्चों कि सादा जीवन उच्च विचार, व्यक्ति को जितना हो सकता है उतना अपने जीवन में सादगी को अपनाना चाहिए और विचार उच्च रखने चाहिए, तभी जाकर वो एक हम कहें ना भाई ये बहुत ही आदर्श है ना? तो आदर्श था, ऐसा नहीं कि आप अपना व्यवहार कुछ दिखावे के लिए अलग कर रहे हो या आप खुद कुछ अलग हो, है ना? और या दिखावे के लिए पता नहीं आप क्या क्या कर रहे हो, ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। विचार अच्छे रखें लेकिन अपने जीने का जो तरीका है वो साधारण सा रखें। साफ धुले सुथरे से कपड़े पहने, अदब से रहें, तभी जाकर हम कह पाएंगे उनको कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसके विचार बहुत उच्च है, इसमें बहुत जानकारियां हैं, बहुत ज्ञान है, लेकिन बहुत सिंपल है ये व्यक्ति, है ना? और तभी तो कहते हैं कि सिंप्लिसिटी का जो है हमारे यूं कहें कि जीवन में बहुत महत्व होता है। बच्चों इनका जो उद्देश्य था, कवि हेनरी डेविड थे ना, इनका उद्देश्य सिर्फ यही था कि लोगों को अपने जीवन में तनाव और भौतिकवादी चीजों को कम करके एक शांत और सरल और अर्थपूर्ण जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करें और उन्हें सिखाएं। बच्चों फालतू का दिखावा हमें नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार ही वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए और प्रयोग करना चाहिए। बहुत सी बार ऐसा होता है बच्चों कि हम जो है ये भी खरीद लेते हैं, वो भी खरीद लेते हैं, तरह तरह के कपड़े खरीद लेते हैं, अलमारी भर जाती है हमारी, फिर भी हम कहते हैं कि हमारे पास भाई अभी तो फैशन ये चल रही है, हमें ये कपड़े चाहिए, है ना? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी ने ये बात कही थी बच्चों। और

और महात्मा बुद्ध ने भी ये बात कही थी कि जितनी हमारी आवश्यकता है उतनी ही चीज़ों का हमें संग्रह करना चाहिए और चीज़ों को प्रयोग में लेना चाहिए, है ना। चाहे बात किसी की भी हो, चाहे रोटी, कपड़ा, मकान, धन संपदा या और भी कोई वस्तुओं की हो, जितनी हमारी प्राथमिक आवश्यकता पूर्ण कर सके उन्हीं चीज़ों का हमें जो कहें कि प्रयोग करना चाहिए और उन्हीं चीज़ों को हमें संग्रह करना चाहिए उनका। संग्रह से तात्पर्य बच्चों बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करते हैं तो उन्हें संग्रह बोलते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं ना हम कि भाई ये हमारी आवश्यकता की आवश्यकता भी हर जगह अलग अलग होती है। आज के समय को हम देखते हैं ना बच्चों तो आवश्यकता बहुत सारी बढ़ गई है, कोई लिमिटेशन ही नहीं है उनका, वो सीमित नहीं है। तो हमें चाहिए कि जितनी हमारी काम चल रहा है हमारा उतनी चीज़ों का ही हमें यूँ कहें कि इकट्ठा करना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करें भाई, हमें ये तो पता है कि भाई हमें सीमित चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए या हमें यूँ कहें कि ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें छोटे छोटे जो यूँ कहें कि स्टेप है ना बच्चों या छोटे छोटे कदम है वो हमें इसके लिए, देखिए आप जैसे अनावश्यक खरीदारी से बचें, वास्तविक आवश्यकता वाली चीज़ें ही खरीदें, स्क्रीन टाइम कम करें और प्रकृति के समीप ही ज़्यादा से ज़्यादा रहें बच्चों। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे पास समय होता है और हम लोग बैठ जाते हैं फ़ोन लेके और बस उसको स्क्रॉल करते रहते हैं, उसको चलाते रहते हैं उस पर उंगली, और जब समय देखते हैं तो 1-2 घंटे हमारे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इससे बढ़िया बच्चों जब भी खाली समय मिले हम कहीं प्रकृति के या आसपास कहीं पार्क है वहाँ जाके बैठें, है ना। तो इससे हमें शुद्ध हवा भी मिलेगी और मन को भी थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी, या यूँ कहूँ कि मन को थोड़ी सी शांति सी मिलेगी। इसके अलावा लक्ष्यों को सीमित रखें, एक समय में एक ही काम पर फोकस करें ताकि तनाव कम हो और कार्य क्षमता बढ़े। बहुत सी बार ऐसा होता है बच्चों हमने 4-5 काम एक साथ ले लिए, है ना, हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी, मतलब कहीं तो हम तैराकी सीख रहे हैं या म्यूज़िक सीख रहे हैं या ये सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं, ऐसा काम हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक काम करें, उसको तन मन होकर लय से लगन से उस काम में अपना पूरा दें, बेस्ट दें ताकि उस कार्य में हम कुशलता हासिल कर सकें, उसके बाद में हम कोई दूसरा काम सीखें। यानी लक्ष्य को फोकस में रखें, अपने आसपास की चीज़ों को सरल बनाएं, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें बच्चों और कम चीज़ों में आनंद ढूंढें, है ना। तो ये हुई बच्चों हमारे यूँ कहें कि सादगी। सादगी जीवन का बहुत महत्व होता है बच्चों, हमारे जीवन में जितनी सादगी होगी ना उतने ही हम खुश रहकर तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे। अब इसके लाभ देखिए बच्चों, इस भाई सादगी को अगर जीवन में अपनाएंगे ना तो इसके बहुत सारे फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो कहीं है ही नहीं। मानसिक शांति मिलेगी, मानसिक संतुष्टि मिलेगी, सचेत उपभोक्ता को प्रोत्साहित करता है और टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल आदतों को बढ़ावा देता है और व्यक्ति को व्यक्तिगत विकास और रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करता है। और हमें धीमी गति से चलने, अनावश्यक चीज़ों को व्यवस्थित करने और आवश्यक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है, जिससे जीवन में स्पष्टता, शांति और संतुष्टि मिलती है। और सबसे जो मोटा मोटी बात आती है बच्चों वो यही आती है कि तनाव में कमी होती है, इससे बेहतरीन से बेहतरीन शारीरिक स्वास्थ्य रहता है, स्वयं की देखभाल के लिए भी अधिक समय हम निकाल पाते हैं, बेहतर रिश्ते निपटते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और कार्यशैली में संतुलन बना रहता है। तभी तो कहा जाता है सादा जीवन उच्च विचार। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है तनाव में कमी और आर्थिक स्थिति में सुधार। बच्चों आर्थिक स्थिति की बात करते हैं ना तो ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें खरीद लें, हमारी जितनी यूँ कहें कि भाई हम तो यही करेंगे ना, जितनी पॉकेट मनी मिली है उसी में हम काम चलाएंगे, तब तो ठीक है। और अगर ज़्यादा चीज़ें खरीद ली या अनावश्यक चीज़ें खरीद ली तो बस वही है, तंगी हो जाएगी पैसों की, है ना। भाई हमारी जितनी पॉकेट मनी है उससे ही आप काम चलाइए, और अगर अपने माता पिता से हमें कुछ लेना पड़ रहा है तो हमें चाहिए कि जितनी आवश्यकता है वो चीज़ें ही आप खरीदें बच्चों। तो ये तो हुई बच्चों बातचीत, और बातचीत के साथ ही हम आगे चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

और बच्चों इसके साथ ही हम आते हैं हमारी बातचीत पर, है ना बच्चों। देखिए ये तो बात सही है कि बचपन की जो मौज मस्ती होती है ना वो कुछ और ही होती है, उस समय कुछ भी भान नहीं होता है ना। बचपन एक ऐसा यूँ कहें कि शुद्ध जीवन होता है, उसमें कोई ना लोभ मोह या यूँ कहें कि कुछ झूठ बोलना या लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सुबह लड़ते हैं दोस्तों के साथ में, शाम को वापस एक जैसे हो जाते हैं, है ना। तो बस बचपन के तो कुछ आनंद ही हो रहे बच्चों। इसके साथ ही हम बात करते हैं कुछ इस तरह से कि भाई अभी जो हमारे देश ने विकास किया है ना उसके तो कहने ही क्या है, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो तो सबसे यूँ कहें कि जल्दी और बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। तो इसी विकास के बारे में हम बात करते हैं। भाई आज हम स्कूल जाते हैं, इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं या और भी कोई चीज़ें पढ़ते हैं या पत्र लिखते हैं, तो हमें हमारे दिमाग में ये बात आती है बच्चों कि ये जो लेखन है ना, ये शायरी से जो लिखा जा रहा है ये कौन सी मशीन से छपा होगा या कितनी

बच्चों, जो स्याही लगी सतह पर दबाव डालकर कागज या कपड़े जैसी सामग्रियों पर स्याही का स्थानांतरण करती है ना, यानी स्याही को वहाँ पर जमाती है, वहाँ पर ट्रांसफर करती है। इससे पहले की विधियों पर एक प्रगति की है, यह विकास प्रारंभिक आधुनिक काल के प्रभावशाली विकासों में से एक है। लगभग बच्चों 1440 में जो जॉन्स बुटनगर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस के लिए चलित टाइप के बड़े पैमाने पर उत्पादन की एक विधि का आविष्कार किया था, जिससे यूरोप में मुद्रण क्रांति की शुरुआत हुई थी। छपाई के प्रसार ने बच्चों जनसंचार के एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसने यूरोपीय समाज को नया रूप दे दिया, और सूचना के मुक्त प्रचार प्रसार ने सीमाओं को पार कर दिया। वैज्ञानिक क्रांति के पीछे विचारों के आदान प्रदान को बढ़ाया व साक्षरता में वृद्धि ने शिक्षा की पहुंच को एक अभिजात वर्ग से आगे बढ़ाया। पहले शिक्षा बच्चों लिमिटेड वर्ग को ही मिल पाती थी अच्छे से, और जो बाकी तबके के जो लोग होते थे उन्हें शिक्षा की सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती थी। तो ये प्रिंटिंग प्रेस की वजह से शिक्षा हर व्यक्ति तक ये पहुंच पाई है ना। उसके बाद तो कई यूँ कहें कि और भी विकास हुए जिससे जो है ये चीज़ें हो पाई। और इसके अलावा हम देखते हैं बच्चों कि धीरे धीरे धीरे धीरे इनका विकास होता गया, और काफ़ी चीज़ें जो है इसमें अपने यूँ कहें कि मानव समाज में आती गई। फिर तो देखिए आप, प्रिंटिंग प्रेस भी हुई, इसके अलावा और भी कई तरह की मशीनें आई जिससे छापे का जो है वो विकास होता चला गया। बच्चों ये हुई बातचीत, और इसके साथ ही आगे चलते हैं, सुनते हैं कि प्यारा सा गीत।

और भाई बच्चों, हमें तो बस ये कोयले वाली आदत सीखनी है। कोयला अंदर से भी काला होता है, बाहर से भी काला होता है, और चट्टानों से इतनी मेहनत के बाद वो निकलता है, लेकिन कितना स्ट्रोंग होता है वो। उसमें कोई दिखावापन सा नहीं होता है। उस हम देखते हैं, बाकी बहुत सी बार हम देखते हैं कि बहुत सी वस्तु, चलो बात करते हैं वस्तु की, तो अंदर से उसका रंग कुछ और होता है, बाहर से कुछ रंग और होता है। वही आजकल मानव जीवन में देखने को मिल रहा है। मुंह पे कुछ और बोलेगा, अंदर कुछ और बोलेगा, है ना? तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। कोयले का जैसा स्वभाव हमें हमारे जीवन में लाना है ना? हमें इतना कठोर, क्योंकि लोग हैं, लोगों का काम ही है बोलना। लोगों की, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका, कहते हैं ना, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। तो हमें इन चीज़ों को इग्नोर करनी है और आगे कोयले की जैसे चट्टान सा मजबूत बन के जीवन में आगे की ओर बढ़ना है ना बच्चों? जिस तरह से, पता है आपको, आज मैं बताती हूँ आपको नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा भी बहुत ही, यूँ कहें कि सख्त और चट्टान की तरह मजबूत थे, है ना? ये इन्होंने अपना जो, इनके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले बताती हूँ बच्चों इनका बचपन। हम बात करते हैं कि इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 में हरियाणा के एक पानीपत के पास एक छोटा सा गांव है खंडरा, वहां इनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत फिटनेस के लिए की थी। वो जिम जाते थे, फिटनेस पर अपना बहुत ध्यान देते, वो खाना पीना या एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, जो भी है, फिटनेस की तरफ उन्होंने, अपने स्वास्थ्य की तरफ बहुत ध्यान दिया था। लेकिन धीरे धीरे बाद में उनकी जो रुचि है वो भाला फेंक में होने लगी। उन्होंने इस खेल को अपनाया अपने जीवन में और कम उम्र में ही इस खेल में स्वाभाविक प्रतिभा दिखाने वाले नीरज ने जूनियर स्तर पर विश्व रिकॉर्ड बनाया और कई ऐतिहासिक पदक भी उन्होंने हासिल किए अपने इस कैरियर में, है ना? देखो उनके, उसकी बात करते हैं ना बच्चों कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, क्या क्या पदक मिले उन्हें। तो टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था ना, उनमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीते, और जीतने वाले ये पहले भारतीय थे। स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक हुआ था बच्चों 2024 में, उनमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो कि बूडापेस्ट में हुई थी, वहां इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर भारत के पहले विश्व चैंपियन बने थे। एशियाई खेल 2018 और 2023 दोनों संस्करणों में शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और डायमंड लीग 2022 में, ये डायमंड लीग हुई थी, इस लीग में डायमंड ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। इसके अलावा इन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं बच्चों, जैसे अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया है ना बच्चों? तो हमें भी चाहिए कि हमारे जीवन में, चाहे हम यूँ कहें कि कुछ भी करें, लेकिन एक ही लक्ष्य की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, है ना? तभी जाकर हम उसमें यूँ कहें कि कुशलता हासिल कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और अपना एक, यूँ कहें कि अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा सकेंगे, है ना बच्चों? है ना, बहुत अच्छी सी बात, बिल्कुल सही। और बच्चों इसके साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको, हम जाएंगे मनोरंजन की दुनिया की ओर, लेकिन एक पहले सुनाती हूँ आपको एक छोटी सी कहानी। सुनेंगे बच्चों आप कहानी? बिल्कुल बच्चों, एक मुकेश नाम का एक बालक था और वो एक गरीब परिवार से था। उसने शुरू से ही जूतियाँ बनाने का काम सीखा था और वो एक, जब वयस्क हुआ तो अपनी एक छोटी सी दुकान उसने लगा ली जूतियों की। वो रोज़ अपनी जूतियाँ बनाता, अच्छे से अच्छी जूतियाँ बनाने में अच्छी मेहनत करता और नई नई तरीके की जूतियाँ बनाता। एक बार उसने देखा कि उसकी दुकान के सामने ही बिजली का पोल लगा हुआ है, खंभा लगा हुआ है, वहाँ पर जब भी कोई खराबी हो जाती है तो बिजली घर से व्यक्ति आता है और ऊपर चढ़ के उस

को ठीक करता है, खराबी को। एक बार उसने देखा बच्चों कि वहाँ से लाइन जो बिजली ठीक करने आया था वो धड़ाम से नीचे गिरा, और गिरा तो उसके यूँ कहे कि वो बेहोशी हालत में हो गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसने सब कुछ देखा लेकिन मुकेश के दिमाग में ये बार बार विचार आ रहा था कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ ताकि इनको कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। ऐसे विचार करते करते रोनते रोनते उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक योजना आई उसे कि क्यों ना मैं इस तरह के जूते बनाऊँ जिसमें जिसको पहनकर ये बिजली घर में जो काम करते हैं, ये जो खंभे पे चढ़ते हैं, वो उनको कोई किसी तरह की परेशानी ना आए। और उन्होंने एक ऐसा जूता बनाया जिसके नीचे जो है उन्होंने ऐसी चुंबक या कहो कि मैग्नेट चिपकाया तो वो पोल को पकड़ ले, यानी उसके चिपक जाए। इस तरह का उन्होंने एक ये आविष्कार किया और बिजली वालों को ये जूता पहनने से काफ़ी सुविधाएं हुई। और जो दुर्घटना होती थी कि कभी पोल से उसका पांव फिसल जाए तो उनमें उनको बहुत ही यूँ कहें कि सहयोग मिला। ऐसा करते करते उन्होंने काफ़ी मात्रा में ये बिजली वाले लोगों को ये दिया, जूते बना बना के दिए। और ऐसे में एक जर्नलिस्ट का वहाँ पे कहें कि उसकी ओर ध्यान जाता है, मुकेश की ओर, और उन्हें एक बड़ी कंपनी में यूँ कहें कि जॉब भी मिलता है और उन्हें एक अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है, इनोवेशन अवार्ड। तो देखिए आप, लाई ना मेहनत रंग। तो बच्चों मैं यही कहना चाहूँगी कि धीरे धीरे हमें मेहनत करके आगे की ओर बढ़ना चाहिए। चाहे हम साधारण सी बात हमारी पढ़ाई की कर लें, अगर हम किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, इंग्लिश में हैं, साइंस में हैं, मैथ्स में हैं, तो हमें धीरे धीरे धीरे धीरे अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि उसमें हम यूँ कहें कि अच्छी तरह से उस सब्जेक्ट को कवर कर सकें, सीख सकें। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, है ना। तो हमें धीरे धीरे धीरे धीरे प्रयासरत रहना चाहिए। ये हुई बच्चों बातचीत, और बातचीत के साथ ही हम बढ़ते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

इसी के साथ बच्चों, जब घड़ी की तरफ देखते हैं तो घड़ी हमारे इस बालवाड़ी कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की ओर इशारा कर रही है। तो समय का महत्व समझते हुए हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं और करते हैं बच्चों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बालवाड़ी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल है, एफएम पिंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बज रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि यह अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वो इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रखा है। मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमान ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 250 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल्स में चीन की गुआ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मेल्डोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील के लुइसा स्टेफिनी से जारी है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज इटली के यानिक

0: सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म शोर का ये गाना, जिसमें आवाजें हैं मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों की।

फिल्म संगीत का अगला गीत आपके लिए इम्तिहान फिल्म से, आवाज़ें किशोर कुमार और साथियों की है, और इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म इम्तिहान से ये गीत। इसी गीत के साथ हमारा आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल को। शाम के 6:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर। इसमें हमारे आज के कलाकार हैं ममता सोनी।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: अभी आप सुन रहे थे ममता सोनी को माटी के स्वर कार्यक्रम में। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 MHz पर। शाम के 6:28 हुए हैं। थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद होगी जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। इन समाचारों को आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ठीक है, आता हूँ। ये लो, लो दो।
2: हाँ, जरा ठीक से डालो।
1: हाँ, लो लो लो।
2: इधर इधर इधर।
1: हाँ, ये ले।
2: लो, तुम मुन्ने को संभाल लो, मैं बहू को जाकर भेजती हूँ।
1: अरे लेकिन सुनो तो सही, पहले अच्छी तरह से साबुन से हाथ तो धो लो।
2: क्यों, क्या हुआ? मुन्ने की ही तो कोठी है और मुन्ना तो सिर्फ दूध पीता है, ये कौन सा नाच खाता है?
1: अरे बावली, वैसे बीमारी के कीटाणु तो मल चाहे बच्चे का हो या बड़े का, दोनों में ही होते हैं। इसलिए पोटी साफ करने के बाद भी अच्छी तरह साबुन से हाथ धोने चाहिए।
2: ये मेरे राम जी, मैं तो समझती थी कि दूध पीते बच्चे के मल में तो गंदगी के कीटाणु हो ही नहीं सकते। अच्छा हुआ जी जो आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोकर आती हूँ और बहू को भी समझाऊंगी कि हमेशा बच्चे की पोटी धोने के बाद साबुन से हाथ धोकर ही काम करे।
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
5: बन गया बजट?
4: हाँ,
5: 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले।
5: ना,
4: पिछले महीने तो ली थी।
5: एक और
4: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
5: बढ़िया,
4: जाओ भाई।
6: RBI कहता है,
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जनसेवा में समर्पित कार्मिकों को सुशासन का मूल आधार बताया, कहा सरकार ने कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा सरकार देश की न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने एथेनॉल मिले पेट्रोल से ईंधन टैंक में समस्या से जुड़ी खबर को फर्जी बताते हुए खंडन किया है। और प्रदेश में मॉनसून के धीमे पड़ने से उमस भरी गर्मी का असर, पश्चिमी और सरहदी क्षेत्रों में दिन का तापमान बढ़ा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जनसेवा में समर्पित अधिकारी और कर्मचारी सुशासन का मूल आधार है। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ धरातल पर उतारने से ही सुशासन स्थापित होता है। मुख्यमंत्री आज जयपुर में सचिवालय कर्मचारियों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। श्री शर्मा ने कहा कि शासन सचिवालय प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आशाओं और अपेक्षाओं का केंद्र है और प्रत्येक कर्मचारी गुड गवर्नेंस की धुरी और विकसित राजस्थान 2047 के महत्वपूर्ण सारथी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और कर्मचारी हित में प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से आज नियमित हवाई सेवा शुरू हुई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने यात्रियों को टिकट और स्वागत किट प्रदान कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान बेंगलुरु से पहली फ्लाइट के यात्रियों का भी पारंपरिक राजस्थानी लोक संस्कृति के साथ स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि नए टर्मिनल के शुरू होने से पिछले 12 साल से चला आ रहा इंतजार आज समाप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यहां से नियमित विमान सेवाओं का संचालन होना समूचे मारवाड़ के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है।
2: जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ने ग्रो किया, आज वो यात्रियों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई और जोधपुर एयरपोर्ट पर कुल परिचालन होने वाली हवाई जहाजों की संख्या भी जो एक सप्ताह में जिसके आधार पर कैलकुलेट करता हूं वो भी लगभग 10 गुना बढ़ गया। आज जोधपुर देश के हर लगभग बड़े शहर से केंद्र से कनेक्टेड है। जोधपुर विंटर सीजन में जोधपुर सभी महानगरों से कनेक्टेड है और आने वाले समय में जिस तरह से हवाई जहाजों की संख्या देश में बढ़ रही है, आने वाले समय में जोधपुर की कनेक्टिविटी और भी अधिक बेहतर होगी।
1: गौरतलब है कि जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को लोकार्पण किया था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार देश की न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी, तकनीक सक्षम और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज गुरुग्राम में नए न्यायालय परिसर टावर ऑफ जस्टिस के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की संवैधानिक जिम्मेदारियों से ही न्याय की मूल भावना साकार होती है और राष्ट्र प्रगति पथ पर आगे बढ़ता है।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। केवल नए भवन का उद्घाटन का अवसर नहीं है बल्कि न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ, सशक्त और नागरिक केंद्रित बनाने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। ये नवीन न्यायिक परिसर उस संकल्प का साकार रूप है जिसके केंद्र में प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण, प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
1: समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हरियाणा तथा पंजाब न्यायालयों के न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन गंभीर चेतावनी का संकेत है। इस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल की है। आज नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि पूरी दुनिया

0: जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। श्री चौहान ने एक पेड़ मां के नाम अभियान और मिशन लाइफ जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है।
1: 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हर साल 4% की कमी आने की संभावना है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा और इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ता है। उनकी आजीविका, उनका स्वास्थ्य, उनका जीवन स्तर इस पर पड़ रहा है और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज कोटा में रखे गए वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने पौधा लगाकर आमजन से भी हरित राजस्थान के लिए सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस फर्जी तस्वीर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। पीआईबी ने पेट्रोलियम मंत्रालय के हवाले से यह भी आश्वासन दिया कि भारत में आपूर्ति किया जाने वाला एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन करता है और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाने से पहले इसका गहन परीक्षण किया जाता है। पीआईबी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 350 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने पर 5,00,000 रुपए का ऋण मंजूर होने का दावा करने वाले एक फर्जी पत्र का भी खंडन किया है। ब्यूरो ने लोगों से ऐसे फर्जी संदेशों से सतर्क रहने, किसी भी प्रकार का पैसा स्थानांतरित नहीं करने और अपनी व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी साझा नहीं करने की अपील की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। 18 जुलाई तक चलने वाली ये भर्ती परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। इसके लिए प्रदेश के 27 जिलों में 1200 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हमारी अजमेर संवाददाता ने बताया कि आज पहले दिन सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षाएं ली गई।
2: पहले दिन दो पारियों में परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। यह परीक्षा 18 जुलाई तक प्रदेश के 27 जिलों में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा में 12,31,973 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों से किसी भी दलाल या बिचौलियों के बहकावे में नहीं आने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना आयोग के कंट्रोल रूम पर तत्काल देने की अपील की है। नलमा धादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: डूंगरपुर में एक एनिकट में डूबने से आज 3 सगे भाई बहनों सहित 4 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे का शिकार ये बच्चे जिले के धम्बोला क्षेत्र के बड़ी गांव के रहने वाले थे और एनिकट में सुबह नहाने गए थे। इस दौरान अधिक गहराई में जाने से ये हादसा हुआ। घटना के दौरान 2 बच्चों को आसपास के लोगों ने समय रहते बचा लिया। हादसा स्थल के पास मंदिर होने के कारण बारिश के मौसम में बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के चलते दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पाली जिले में वस्त्रों के पैकिंग बैग की कई यूनिट इन दिनों स्थापित हुई है। इनमें अधिकतर ने कुटीर उद्योग के तौर पर पहचान बनाई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले भर में 20,000 से अधिक महिलाएं घरों पर ही पैकिंग बैग तैयार कर वस्त्र निर्माता इकाइयों को भेज रही है और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
3: विभिन्न वस्त्रों के पैकिंग में उपयोग होने वाले बैग स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। इससे उद्योगों को सूरत, अहमदाबाद और अन्य महानगरों पर निर्भरता कम हुई है एवं

0: स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। बैग निर्माण के लिए कटिंग का कार्य यूनिट में किया जाता है, बाद में इसकी सामग्री महिलाओं के घरों तक पहुंचाई जा रही है। महिलाएं घर पर सिलाई कर पैकिंग बैग तैयार कर रही है। घर बैठे लगभग 20,000 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ उनका आर्थिक विकास हो रहा है और पाली के उद्योगों को नई गति मिल रही है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
1: सरहदी जिले श्रीगंगानगर में महिलाओं को कार्यस्थल पर समानता देने और भेदभाव तथा उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आज सेमिनार आयोजित की गई। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल और जिला न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने इसमें शिरकत की। इस दौरान कई न्यायकर्मी मौजूद रहे। सेमिनार में न्यायिक कार्यों के दौरान और फैसलों में महिला सम्मान भाषा के उपयोग और कार्यस्थलों पर महिलाओं के अधिकारों पर जानकारी दी गई। प्रदेश में मॉनसून के धीमे पड़ने से उमस भरी गर्मी का असर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। सरहदी और पश्चिमी जिलों में दिन के समय तापमान बढ़ने लगा है। श्रीगंगानगर में बीती 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं फलौदी और जैसलमेर में भी दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हुआ। अधिकांश जिलों में बरसात की गतिविधियां थमने से किसानों के चेहरों पर मायूसी देखी जा रही है। वहीं जैसलमेर में आज आंधी चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान के ऊपर मानसूनी बादल फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन बरसात की गतिविधियों में कमी बने रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसेवा में समर्पित कार्मिकों को सुशासन का मूल आधार बताया। कहा, सरकार ने कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, सरकार देश की न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने एथेनॉल मिले पेट्रोल से ईंधन टैंक में समस्या से जुड़ी खबर को फर्जी बताते हुए खंडन किया है। और प्रदेश में मॉनसून के धीमे पड़ने से उमस भरी गर्मी का असर, पश्चिमी और सरहदी क्षेत्रों में दिन का तापमान बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आशीष मेहता ने तैयार किया है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT कोटा का 5वां दीक्षांत समारोह हाल ही में आयोजित हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस दौरान PhD के 2 शोधार्थियों सहित 203 विद्यार्थियों को विभिन्न डिग्रियां प्रदान की गईं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे उभरते क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, ताकि यहां से निकलने वाले विद्यार्थी केवल रोजगार प्राप्त करने वाले नहीं बल्कि भविष्य की तकनीकों का नेतृत्व करने वाले बने। पिछले दिनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय RTU परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयोजित सघन पौधरोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस अवसर पर वन विभाग ने ड्रोन के माध्यम से सीड बॉल्स गिराने की अभिनव पहल की शुरुआत की। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और विधायक संदीप शर्मा भी उपस्थित रहे। अपने कोटा प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यू मेडिकल कॉलेज परिसर में 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले कॉटेज वार्ड का भूमि पूजन किया और करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से निर्मित PG हॉस्टल्स का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बीते दिनों कोटा दौरे पर रहे। उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोटा के गोपालपुरा मंडाना में आम सभा को संबोधित किया। श्री गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेस वे केवल आवागमन का माध्यम नहीं बल्कि क्षेत्र के चहुमुखी विकास का हाईवे है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस वे में लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए की लागत से 75% से 80% काम पूरा हो गया है, शेष काम भी तेजी से प्रगति पर है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विकसित की जा रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और भारत माला जैसी महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाएं राजस्थान के विकास को नई गति प्रदान करेंगी। विश्व जनसंख्या दिवस पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कोटा को तृतीय पुरस्कार से सम्मान

0: भूमिका पर विशेष बल दिया। उन्होंने कार्यस्थलों पर महिलाओं की गरिमा के अधिकार को सुनिश्चित करने और उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने को भी कहा। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 यूसीसी के प्रारूप पर सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला परिषद सभागार कोटा में संभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न धर्मों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विधिवेत्ताओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों ने भाग लेकर अपने सुझाव दिए। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न प्रतिभागियों ने संविधान की मूल भावना के अनुरूप सभी नागरिकों के लिए समानता, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता तथा विधिक स्पष्टता जैसे विषय पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ जिला स्तरीय रोजगार उत्सव सियाम ऑडिटोरियम में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, JVVNL और अन्य विभागों में चयनित 1207 नए चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र और बधाई संदेश प्रदान किए। इसी के साथ कोटा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेरू पेश है सिंचा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जन सेवा में समर्पित कार्मिका ने सुशासन रो मूल आधार बताया। कयो सरकार कर्मचारी कल्याण का ने महत्व कदम उठाया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो सरकार देश री कानून व्यवस्था ने बत्ती सरल, साफ गोई और नागरिक केंद्रित बनावण का ने बरोबर काम कर रही है। सरकार एथेनॉल मिलिया पेट्रोलों ईंधन टैंक में समस्याओं जुड़ी खबर ने फर्जी बतावता खंडन करियो है और प्रदेश में मानसून रहे धीमो पड़नों उमस भरी गर्मी रो असर आथूणी और सरदी हल्का माए दिन रो तापमान बध्यो। समाचार रे साथ है मैं शंभु सिंह और अबे समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि जनसेवा में समर्पित अहलकार और कार्मिक सुशासन रो मूल आधार है। वना कहो कि जन कल्याणकारी योजनावा और नीतियां ने संवेदनशीलता, साफ गोई और भगत सर धरातल माथे उतारण हुए सुशासन स्थापित हुए है। मुख्यमंत्री आज जयपुर में सचिवालय कर्मचारियों का न्यू व्यास सम्मान जलसा में बोल रहा है। श्री शर्मा कहो कि शासन सचिवालय प्रदेश री 8 करोड़ जनता री आशावा और अपेक्षावा रो केंद्र है और हर कार्मिक गुड गवर्नेंस री धुरी और विकसित राजस्थान 2047 रो महत्व सारथी है। मुख्यमंत्री कहो कि हमारी सरकार कर्मचारी कल्याण का नी ऐतिहासिक कदम उठाया है और कर्मचारियों रा हित में प्रतिबद्धता रे साथ काम करिया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो है कि केंद्र सरकार देश रा न्याय बंदोबस्त ने बत्ती सरल, साफ गोई, तकनीक पूर्ण और नागरिक केंद्रित बनावन सारू बरोबर काम कर रही है। आज गुरुग्राम में नुआ अदालत परिसर टावर ऑफ जस्टिस रा उद्घाटन मौके वना कहो कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिकारी संवैधानिक जिम्मेदारियों हुई न्याय री मूल भावना साकार हुए है और राष्ट्र प्रगति रा पथ माथे आगे बढ़े है।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, केवल नए भवन का उद्घाटन का अवसर नहीं है बल्कि न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ, सशक्त और नागरिक केंद्रित बनाने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। यह नवीन न्यायिक परिसर उस संकल्प का साकार रूप है जिसके केंद्र में प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण, प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
1: जलसा में सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हरियाणा और पंजाब री अदालतां रा न्यायाधीश और न्यायिक अहलकार मौजूद रिया। जोधपुर हवाई अड्डा नुआ टर्मिनल आज बरोबर हवाई सेवा शुरू हुई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत यात्रियों ने टिकट और स्वागत किट देर वारो स्वागत करियो। इस दौरान बेंगलुरु पहली फ्लाइट रा यात्रियों रो रीत मुजब राजस्थानी लोक संस्कृति रे साथ स्वागत करीजियो। मीडिया साथ है बतलमाए श्री शेखावत कहो कि नुआ टर्मिनल रे शुरू होवणु लाड़ला 12 साल चादरिया इंतजार आज पूरा भी हो।

0: वणा कयो के अठियों नियमित विमान सेवावां रो संचालन वेणो आखा मारवाड़ सारू ऐतिहासिक कामयाबी है।
1: जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ने ग्रो किया, आज वो यात्रियों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई और जोधपुर एयरपोर्ट पर कुल परिचालन होने वाली हवाई जहाजों की संख्या भी जो एक सप्ताह में जिसके आधार पर कैलकुलेट करता हूँ वो भी लगभग 10 गुना बढ़ गया। आज जोधपुर देश के हर लगभग बड़े शहर से केंद्र से कनेक्टेड है। जोधपुर विंटर सीजन में जोधपुर सभी महानगरों से कनेक्टेड है और आने वाले समय में जिस तरह से हवाई जहाजों की संख्या देश में बढ़ रही है, आने वाले समय में जोधपुर की कनेक्टिविटी और भी अधिक बेहतर होगी।
0: ध्यान जोगे के जोधपुर हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल रो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई ने करियो हो। 480 करोड़ रुपया री लागत हो 37 एकड़ में बनया ई टर्मिनल भवन में 8 प्रवेश दरूजा है और यात्रियों ने सीधा हवाई जहाज ताई पुगावन सारू कई आधुनिक सुविधा विकसित करी जी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो है कि जलवायु बदलाव घनी चिंता रो संकेत है। इस संकट निपटन सारू केंद्र सरकार कई पहल करी है। आज नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में बोलता श्री चौहान कहो कि आखी दुनिया जलवायु बदलाव और धरती रो तापमान बढ़ने ने लेर चिंता में है। वना कहो कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा बूता में महत्व बढ़वार भी है। श्री चौहान एक पेड़ माँ के नाम अभियान और मिशन लाइफ सरी की पहला रो जिक्रो करता कहो कि भारत साल 2070 ताई शून्य कार्बन उत्सर्जन रो लगस तय करियो है।
2: 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हर साल 4% की कमी आने की संभावना है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा और इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ता है। उनकी आजीविका, उनका स्वास्थ्य, उनका जीवन स्तर इस पर पड़ रहा है और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: मानसून रे आवण रे साथ ही प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम और हरियाणा राजस्थान रे तहत कई जागरूकता कार्यक्रम रखा जावे। एक कड़ी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कोटा में वृक्षारोपण कार्यक्रम में करी। ई मौके वना लगार लोगों हरित राजस्थान सारू सक्रिय भागीदारी निभावण री अर्ज करी। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। सरकार सोशल मीडिया माथे चाली उन फर्जी तत्व खंडन करियो दावो करी जो है कि इथेनॉल मिला पेट्रोल वाहन रा ईंधन टैंक में समस्या वह सके है। पीआईबी री तथ्य जांच इकाई ई दावा ने झूठो बतावता कहो है। तेल विपणन कंपनियां कानियों सप्लाई किया जाने वाला पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो मानका मुजब है। पीआईबी पेट्रोलियम मंत्रालय रा हवालाओं भरोसा दियो है कि भारत में सप्लाई किया जाने वाला इथेनॉल मिलिया पेट्रोल में ऊंची गुणवत्ता मानक पालन करी जो है और उपभोक्ताओं ने मुहैया कराया जाने पहला इनरो गहराई रे साथ परीक्षण करियो जावे है। पीआईबी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे 350 रुपया प्रोसेस फीस जमा करण 5 लाख रुपया रो कर्ज मंजूर होने रो दावो करण वालो एक फर्जी कागज बतायो है। पीआईबी लोगों इन फर्जी संदेशों सावचेत नहीं भेजन और आप री खुद री बैंक री जानकारी साझा नहीं करण री अर्ज करी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कानियों आज वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। 18 जुलाई तक चालन वाली आ भर्ती परीक्षा 9651 औदा सारू वह रही है। इस सारू प्रदेश रा 27 जिला में 1232 परीक्षा केंद्र बनाई गया है। आज पहले दिन सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान री परीक्षा मान ली जी।
3: पहले दिन तो परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। परीक्षा 18 जुलाई तक प्रदेश के
0: सारू प्रदेश रा 27 जिला में 1232 परीक्षा केंद्र बनाई गया है। आज पहले दिन सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान री परीक्षा मान ली जी।
3: पहले दिन दो पारियों में परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। यह परीक्षा 18 जुलाई तक प्रदेश के 27 जिलों में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा में 12

0: 1,31,973 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों से किसी भी दलाल या बिचौलियों के बहकावे में नहीं आने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना आयोग के कंट्रोल रूम पर तत्काल देने की अपील की है। नलमा धादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
1: डूंगरपुर में एक एनिकट में डूब जावणु आज 3 सगा भाई बहना समेत 4 टाबना री मौत वेगी। पुलिस बतायो के हासारा शिकार ए टाबर जिलारा धम्बोला हलकारा बड़ी गांवरा रहवासी हा और एनिकट माए सवारा नावण गया हा। ई दौरान घनी गहराई माए जावणु ओ हादसो भी हो। हादसारे दौरान 2 टाबरा ने आरे सारे रा लोगा भगत रहता बचा लिया। पाली जिला माए कपड़ारा पैकिंग बैगरी के यूनिट आदिना थापित भी है। इनमें घणकरा कुटीर उद्योग रा तौर माते पिछाण बनाई है। मारा खबर न्यूज बतायो के जिला में 20,032 महिला मा घरा माते पैकिंग बैग तैयार करने कपड़ा बनावन वाली इकाया ने भेज रही है और आत्मनिर्भरता कानी आगे बढ़ रही है।
2: विभिन्न वस्त्रों की पैकिंग में उपयोग होने वाले बैग स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। इससे उद्योगों को सूरत, अहमदाबाद और अन्य महानगरों पर निर्भरता कम हुई है एवं स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। बैग निर्माण के लिए कटिंग का कार्य यूनिट में किया जाता है। बाद में इसकी सामग्री महिलाओं के घरों तक पहुंचाई जा रही है। महिलाएं घर पर सिलाई कर पैकिंग बैग तैयार कर रही है। घर बैठे लगभग 20,000 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ उनका आर्थिक विकास हो रहा है और पाली के उद्योगों को नई गति मिल रही है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
1: प्रदेश में मानसून रे धीमो पड़नो गर्मी रो असर एक कर फेरू दिखण लाग्यो है। सरदी और आथोणी जिला में दिन रो तापमान बढ़न लाग्यो है। श्री गंगानगर में लारला 24 घंटा रे दौरान बत्ती रो तापमान 41 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज करीजो। वठे फलोदी और जैसलमेर में दिन रो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रे आर एस आर रिकॉर्ड भी हो। घणकरा जिला में बिरखारी गतिविधियां थम जावणु कास्तकारा चेहरा माथे उदासी देखी जावे। जैसलमेर में आज धूल भरी आंधी चालणु जिंदगी माथे असर पड़ियो। ई बीचे मौसम महकमो कयो है कि सेटेलाइट इमेज में राजस्थान रे ऊपर मानसूनी बादल अजय नजर नहीं आ रिया है। महकमा मुजब आवता 3-4 दिन बिरखारी गतिविधियां में कमी बनी रहण री आस है। सरहदी जिलारा श्री गंगानगर माए महिलावां ने काम री ठोड़ बरोबरी देवण और भेदभाव उत्पीड़न माथे रोकथाम सारू आज सेमिनार भी हो। राजस्थान हाईकोर्ट रा न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल और जिला न्यायाधीश रविन्द्र कुमार कार्यक्रम में शिरकत करी। ई दौरान कई न्यायिक कर्मी मौजूद रिया। सेमिनार माए न्यायिक कामारे दौरान और फैसला माए महिला सम्मान भाषा काम माए लेवण और काम री ठोड़ महिलावां रा हक री जानकारी दीरी जी। हनुमानगढ़ जिलो आज आपरो 32 थापना दिवस मनावे। 3 दिन रा उत्सव रा आखिरी दिन आज भटने दुर्ग माए पूजा अर्चना रन फॉर हनुमानगढ़ भी हो। ई मौके न्यारी न्यारी होडा भी और एक पेड़ माँ के नाम अभियान रहते पौधाई रोपी जिया। ने अबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फिर सुन दे रहो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसेवा में समर्पित कार्मिका ने सुशासन रो मूल आधार बताया। कयो सरकार कर्मचारी कल्याण कानी महत्व कदम उठाया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो सरकार देश री न्याय व्यवस्था ने बत्ती सरल साफगोई और नागरिक केंद्रित बनावन कानी बरोबर काम कर रही है। सरकार एथेनॉल मिलिया पेट्रोलू ईंधन टैंक में समस्याओं जुड़ी खबर ने फर्जी बतावता खंडन करियो है। और प्रदेश माए मानसून रे धीमो पड़नो उमस भरी गर्मी रो असर आथोणी और सरदी हल्का माए दिन रो तापमान बढ़ियो। ने इन साथे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 7 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनानिया हैं किसान भैया ने आपरे मांगीलाल भैरा घना है तो और कोडू राम राम। किसान भैया देखो कि जद भी चौपाल दिन आवा हैंग पहली राम राम और राम राम रे पछे आपरे वास्ते कई भांतरी जानकारियां हतायां बातचीता और गीत भजन लेपरार हाजिर वेया करा। अब देखो कि आज एड़ी बात एक निंग आ रही है हमारे आपसु करण खातर के कई भैया रे कपास री फसल है जी को बायोड़िया है। कपास री फसल रे मायने निराई गुड़ाई संबंधी या पछे जिगा रस चूसने वाला कीट है बैंक को नुकसान और बैंक की जिगी है उपचार बीरे बारे में अपन बातचीत कराला। बुआई रे 5-6 बार बाद में आप है जी को सिंचाई करा उर्वरक देवनरी बात आवे तो उर्वरक देवनरी बाद में आप फूल आवती टाइम सिंचाई अवश्य रूपों करा। दो फसली क्षेत्र जिका 15 अक्टूबर रे बाद में सिंचाई करे बिंग मायने सिंचाई नहीं करे अंकुरण रे बाद मायने पहली सिंचाई अपना 30 लेर 35 दिनार मायने करा। इसु कहीं हुए कि पौधारी जड़ा है जी को ज़्यादा गहराई तई बढ़े और इनसु पौधारी है जी को बढ़वार भी चौकी हुए। अब कपास रे मायने जी की बात आप करें खरपतवार नियंत्रण री खरपतवार नियंत्रण कपास री फसल रे मायने बहुत जरूरी है। नहीं जना पैदावार काफ़ी कम हो जाया करे इन वास्ते आप 1 महीना बाद मायने एक चौकी निराई गुड़ाई अवश्य कर दा और यदि खरपतवार दोबारा आ जावे तो आप दूसरी बार भी है जी को बीरी निराई गुड़ाई कर सका ताकि अपनी फसल है जी को चौकी बढ़ोतरी हुए और पैदावार चौकी देवे। अब आप बात करें कि जहाँ रस चूसने वाला कीट है जिकांग मायने कई प्रकार लटारो प्रकोप हुआ करे रस चूसन वाला कीड़ा के मायने हरो तेलो है सफ़ेद मक्खी है थ्रिप्स माइट वे मिली बग रो प्रकोप ज़्यादा रिया करे। हरो तेलो और सफ़ेद मक्की रो रे साथ साथ है निम्स और वयस्क पौधा री पत्तियाँ है जिकान चूसे बिरो रस चूसे एड़ी पत्तियाँ रा किनारा है जिको पीड़ा पड़ जावे और नीचे री तरफ मुड़ जाया करे। हरा तेला रे कारणु पत्तियाँ सुपरी नीचे गिर जावे सफ़ेद मक्खी पत्तियाँ रे निचली सतह रे मायने रस चूस बोरे शहद जेड़ो चिपचिपो पदार्थ है जिको छोड़े और पत्तियाँ राख और तेलिया दिखण लाग जावे। रस चूसन वाला कीड़ा रे नियंत्रण वास्ते आप आर्थिक स्तर रे आधार अनुसार निम्न जिको रसायन छिड़काव कर सका बिंग मायने इमेडोक्लोप्रिड है 17.8% SL 3 मिलीलीटर 1 लीटर पानी मायने घोल पर और आप जी को छिड़काव कर सकें। साथ साथ है जी को थायोमेथोग्जाम 25 WG आया करे 0.5 ग्राम बिने 1 लीटर मायने डाल पर आप छिड़काव कर सकें। एसिटामी प्रिड एक दवाई आया करे 20 SP बिने 0.4 ग्राम 1 लीटर मायने ले पर आप छिड़काव कर सकें। तंबाकूरी लटरी जज किसान भैया बात करा तो तंबाकूरी लट स्पोडो पटेरा बिरो नाम हुआ करे बीटी कपास रे मायने बिरी शंकर किस्मा रे मायने तंबाकूरी लट रो नियंत्रण वास्ते प्रभावी आपा उपचार कर सका। आ लट है जिको सर्वभक्षी कीट है कीट रा लार्वा अवस्था रे मायने अगस्त तो लेर अक्टूबर तई नुकसान पहुँचाया करे। छोटी अवस्था रे मायने लार्वो कालो सलेटी भूरो रंग रो बाला सहित हुए बड़ी उम्र रे बाद मायने गहरा हरा रंग रे मायने बदल जाया करे। शरीर पर तिकोणा आकार रा धब्बा बन जावे कीट री तितली है जिको पत्तियां रे निचली सतह रे माते समूह रे मायने अंडा देवे और अंडा रो समूह है जिको बाला सु ढक्योड़ो रिया करे। बीटी कपास रे मायने तंबाकू नियंत्रण रो तंबाकू री लट रो जिको प्रभावी नियंत्रण है बीर वास्ते आप सस्य और यांत्रिक नियंत्रण दोनों कर सका। पहली बात तो आप कही है कि बीटी नरमारी जिका सिफारिश हुए बी अनुसार ही आप किस्मा ने उगावा। बीटी नरमारी बुआई है जिको अप्रैल मई रे अंदर करा वो एक ध्यान रखना नहीं जाना कहीं वे कि लट रो प्रकोप ज्यादा रिया करे टेम उबाई देना तो लट रो प्रकोप थोड़ो कम रहे। ई कपास रे मायने खेतरे पास अरंड है मूंग है ढेंचो है भिंडी है ए अपन नी लगावा क्योंकि तंबाकूरी लट रो जिको पोषण हुए ना वो एंक के द्वारा ज़्यादा हुआ करे। तो किसान भैया देखो कह तो बातें चीता ही अपने कपास री निराई गुड़ाई और बैंकी बीमारियों संबंधित। अब देखा हाँ संतुलित पशु आहार रे बारे में आप बातचीत करा लेकिन पहली आपने एक छोटी सी बातचीत जी की, गांव खेण में गयो और खेणरा जी का उन्नत कृषक बलदेव राम जी मिलिया वेणसु जी की बातचीत करी, वह आपने करा पूगती।
1: किसान भैया गांव गांव तेरे जमा हा और जापरार बठारा जी का उन्नत कृषक हुए बैंकों बातचीत भरपरी लिया और आप ते करा हा पूगती। आज हूं देखो कि नागौर हूं दिखना दे टूलो और अने इन्नाना ते आप रो इन्नाना थोड़ो धक्या और मैंने बढ़ियो हूँ अट गांव खेण मायने आयो और खेणरे मायने अट खेत्र मायने देखो चौमासा वालो टेम चले है और कृषि हाथ में लियोड़ा एक मने महानुभाव नींग आया है ए कहू करा बंतल राम राम शाह
2: राम राम शाह राम राम शाह
1: काई सा शुभ नाम
2: बलदेव जी।
1: बलदेव जी या है के आज आप रेडियो वास्ते थोड़ी बातचीत भरा तो रेडियो सुनो होते
2: हाँ सुना
1: बिल्कुल सब बहुत ही फूट रही बात तो आप कहीं काम धंधा करिया करो
2: खेती वालो
1: खेती वाले काम करो तो बलदेव जी कत्ता बीघा खेत बहो
2: 40 बीघा
1: 40 बीघा खेत बहो तो खेत है जी को हगड़ो एक टू है या पे दो तीन ठोड़े
2: तीन ठोड़े
1: अलग अलग तो हम काले चौमा सार मायन कहीं बिरका का वेगी
2: वेगी
1: बिरका होगी जन कहीं भाया
2: मूंग और गुमार
1: मूंग और गुमार भयो तो बलदेव जी पे मूंग और गुमार भया बाजरी को भाई नहीं कहीं जिमन आई
2: देखो बाजरी है कौन भाई साग बाजरी थोड़ो कहीं शोल्डा को कटोरे उजाड़े
1: अच्छा
2: तो इन वास्ते मूंग और गुमार जन आत्वाद की फसल कट जाए आत्वाद लाटो निकल जाए और आत्वाद रोक जी भी आ जाए
1: जी उतारो बहुत ही फूट रही बात देखो के जल्दी तैयार होने वाली जी की है जी को कहीं है के 50-60 दिन मायने तैयार हो जावे
2: 60 दिन
1: है ना जी की फसल आप भाई हो तो आप बताओ देखो मूंग भयो है गुमार भयो है तो आप खेतरी तैयारी करो ना शुरू मायने जी मतलब देख लो कि भाई अभी मानसून आए बरसात गई फिर पहली खेतरी तैयारी करो जना खेतरी की कर तैयारी करो कहीं करो
2: देखो सब पहले तो कड़वा थई
1: अच्छा
2: तैयार कड़ार पछे करवा देवा बा गोबर खाद घर को जगो बोई थोड़ा थोड़ा और जान मूंग अबगड़ा मूंग भाया तो अगले साल गुमार और अबगड़ गुमार से कम अगले साल मूंग
1: बहुत ही भूड रही बात देखो कि आप खेतरे मायने फसल चक्र भी अपना रहे हो फोर फोर फसला ने बहु
2: गोबर खाद ना का और पलटा ने दान तो गोबर खाद जो तो वो फसल बढ़िया हुआ
1: बिल्कुल। अब आर देखो आप बात ही बात मायने की हो गया डीएपी भी राणा कहता ना मायने तो डीएपी तो रासायनिक खाद रे मायने आ जावे तो आप एजी गोबर से हगड़िया गोबर पोटाली अपनी कंपोस्ट खाद या जी देसी खाद हुआ आर कुन रलो कहीं पे की डीएपी रलो
2: देसी खाद काई थोड़ी घणी कम हुई नी जरा बी शाम जान एक फट्टो एक बीघे कमाई
1: अच्छा
2: और डीएपी भी जा सके 4 बीघा में एक फट्टो
1: अच्छा
2: जान खाद ने एडजस्ट तो 4 बीघा में एक फट्टो जाए जा जरा वकार करे
1: अच्छा बात है साहब पछ देखो कि आप गुआर है मूंग है इनको बीज है जी को कोई घर ही लियो या पछ बाजारो मोल ले
2: बी में भाई करा साहब जान एक साल लिए या कोत लिया पछ 2 साल और बाय जा
1: 2 साल और बाय
2: जा चौथी साल पछ कोत ली नई लियो नई लेना पछ वो बीज खाई एक जान बीज आवो उजे या करे बिया
1: बलदेव जी बाजारो बीज लो ना जिका का मायने देखो के न्यारी न्यारी किस्मा को बीज आवे जन आपने पछे कहीं आनवा ने पूछ परीठा करो या कोई कृषि पर्यवेक्षक ने पूछो
2: कृषि पर्यवेक्षक ने पूछा और यहाँ थोड़ी अनमे रहे भाई आपने 20 साल वो बीज भाई वो बढ़िया रहे इस साल आपके ओ बहुत ओ बढ़िया रहे
1: ओ बढ़िया रहे बिल्कुल भी हिसाब हूं आप लेओ
2: भी हिसाब
1: और पछे दुकानदार कनो छोको है जको थोक बाजार लो
2: हां
1: के भाई दीज छोको या
2: नहीं बढ़िया रहनो भाई पैसा की बात को नहीं बीज बढ़िया नो दोबारा गोतो नहीं पड़नो
1: यहाँ है के भाई दियो पांच साल मत बात की ब्री है जी को जे फोन निवड़ जावे मान लो 20
2: तो 2 साल मत साल मत नहीं सर 2 साल मत क्यों और साल जवार वो साल का दावे बीमार था
1: तो आप जो देखो बीज जी को घरे क्यों ना के 2 साल तहीं आगे थेलियां लो पाछो घर रोज काम में ले बोरा तो घराला बीज ने की कर कहीं रखो जाप तो जतन की कर रख
2: बी में कहीं जान जरूरत हुए नहीं बिना बोरी में गलाई फरो और बी में जान है पाउडर आया करे कट बहुत आया करे जान भाई वो लागे कोनी और का नाम राम है गुण जो पाउडर नाग दिया करा पाउडर नाग नो 12 महीना से 6

0: टेम चले चारू मेर सुना भी हाँ अपने राजस्थान सरकार भी हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम चलावे तो बिंग मायने आप हर साल है जी को कोई नुआ पौधा क्षेत्र मायने या आसे पासे मेड़ माते कटी लगो हो गई।
1: देखो शाह अभी यहाँ साधन है ना जका कहे तो लगा कहीं कोई वो दे या कोई डिगी बने उठी सब टेबल लगा हुआ और नई साधन है जगह पे लगा कोई नहीं कौन जाए कौन कहीं करी की हड़ा कर जाओ बाकी लगन जरूरी है। देखो चौफेर पौधे लगाए थे भाई बोल्ड लगा हुआ बढ़िया और जगह और पौधा लगा हुआ बढ़िया ध्यान फ्रूट वाला वे भी बढ़िया है लगा हुआ थोड़ा अड़ला करे जी अपना एरिया कट गई की कई गेट लगे हुए जान बोल्ड लगाई है कई नींबू लगाया है कई जान भाई आपने कई की
0: पर्यावरण ने संतुलित राखण खातर नीमड़ा है खेड़िया है पिंपलिया है ना टालिया है तो एड़ा वृक्ष भी कहीं है के गांव में या पे घर आसे पास लगो
1: कहीं है जी माँ के खेड़ी तो ना आप कांकड़ के मई और नीमड़ो भी ना आप वो नीमड़ा की कूड़ दी आगे पड़े नहीं वो हलिक जी जब तोरा के माँ तेर खेत में या नीमड़ो और खेड़ी हरियाली माँ की कांकड़ की बढ़िया है
0: बहुत ही बढ़िया तो खेड़ी है जी की मत ही लाग जावे बिंकी की साग संभाल करनी पड़े
1: बिंकी वो मत ही लागे साग संभाल तो लाश फेंक दियो जाने कछुआ गड़ा लगा ये पनपा कोई की लागी कोनी और ए मते साल की नहीं जेकी साल की बढ़िया एकदम लूंग भी हुई एर सांगरी हुई एर हरियाली हुए अब देखो लूंग कांटो खिरे ना वो खेत के महीने खेल ली गेटे सब टोप को दान हुए क्यों वे बुखात बने भी
0: हाँ सही है
1: भी खाद बनने का
0: बिल्कुल अब तो क्या करे ऐसे खेल ली की जट बनवाई बड़े बड़े नेटे जी को खाद भी जोरदार मिले और फसल भी बढ़िया हुए
1: फसल मिले
0: तो बल्दे जी देखो कि आप दन देनो ही रखो कहीं रखो
1: बेंशा है पहले कहीं रख था बेंशा रखने लगा कहीं है कि अब केल जी आवे कट छोड़ना कहीं करा कौन संभाल भी आओगे जी अब बेंली रखा था बेंशा को आप देनो हो जाए आप खाए बोरे की बेच दिए बिना पंटो आ जाओ यार
0: तुझे मार
1: हाँ तुझे
0: अच्छा चलो दोनों ही बात है ऐसा थोड़ा घणो तो घर पर तू रख लो और बाकी है जी को किंडेरी मत ले जा
1: दे जा
0: बंटाला दे दो
1: हाँ
0: बहुत ही बढ़िया। अब देखो चलता चलता बलदेव जी एक बात आपको पूछूंगा आप तो देखो के खासा बढ़िया बढ़िया लागो और यहाँ उम्र में भी हो तो लाल टेम रे मायने अपना बडेरा जी की पारंपरिक खेती करता ना दी खेती में रमार जी की खेती चाली है नुआ नुआ तरीका नुई नुई दवाया रवाया रहे और पाछो जी को एक आको भी हुए के अपन जैविक खेती पावनी है तो किकर कहीं मानो थे जी को जैविक खेती की तरफ अपन लौटना पड़ी पाछो।
1: देखो अपन जैविक खेती वास्ते लौटना पड़ी क्यों एक तो जान अब बढ़िया फसल हुआ पुराने टाइम पे मैं बड़े रंग एक ही बीज हो वो बांतार उड़तार बेड़तार कर वो उड़तार कसन कम हो क्यों अड़को कसन हो अब ट्रैक्टर हो और खाद भी है और भी देखो बीज बढ़िया बढ़िया बीज उन्होंने आग लो देखो खत्म हो पहले देखो बीघे कुंटल बाज उतर थे आज बढ़िया मेहनत कर रखे तीन कुंटल तो उतरे उतरे चार तो उतरे बढ़िया सब तीन कुंटल और मूंग तो दो कुंटल कई तीन कुंटल जान गुहार तो दो कुंटल तीन कुंटल आगे जान पशुओं के वास्ते बंटा वास्ते गुहार बनता फिर नींद वास्ते बनता झुमार खराब हो जाता खराब वापस कोई मतलब को नहीं फसल को मतलब गड़बड़ तो ऊंतो नफो को नहीं हो।
0: अच्छा दिनो दिन है जी को लोग कहीं है कि मान लो थे ध्यान रखो बाकी रासायनिक उर्वरक और स्प्रे माते घणो जोर देवे तो बीउ काई है जी को माटी रे फसलार अपन स्वास्थ्य सगळो खराब ही
1: खराब है खराब है जति भी ज्यादा जी की दुई आ बीमारी फैली है ना आपने समझो देखिए आ दुईया कारण फिर क्यों भी मैं तो बी को कष्ट बैठे कष्ट बैठे आप खाओ खा तो बी कष्ट तो मैं रही ना शरीर में तो ये कारण वा कमजोरी आवे शरीर में आज समझो 30 साल का छोरे के गोडो दुखे कड़िया दुखे क्यों आ ये दुई के कारण कमजोरी है पहली का जगह वा साधु दान खाता दुई ही को नहीं फिर काम काज आप विश्राम करता तीनों साफ भी विश्राम हो आज देखो पहने आप कपाई शायद बाकड़ देवा तो मैं बीम दुई संठे और किसो भी आज दुई संठे वो हुए आज सब्जी तो देखो दुई छांठ करे शेवल जान पड़ी आप हुए ना तो बस श्रावण में शेवल का सब्जी खावा ना अपन टीन दिए खास रोए फली है जान पे खावा तो आप निरोगी निरोगी का ही है पता है वही देखो नहीं तो शरीर में कमजोर को नहीं आवे
0: और गम में पीण रे पानी रे काई साथ
1: देखो साहब पीण को पानी तो नेर को तो करी शे के आवे है बाकी तालाब की साफ सफाई बढ़िया अमीर है और
0: गरम टांका बनड़े
1: अरे पूरा घर घर टांका बनड़े के छत को पानी उतार लेवे बस के ही लियावे तलाव जान कम पड़े जरा और ट्यूबवेल चाले जो नाउन दोन वास्ते ट्यूबवेल पानी आ जाए जरा टंकियां भर लेवे या कोई और भर लेवे
0: बिल्कुल फोड़े बात तो बलदेव जी वाह आप जानकारी के लिए आपने घने मान धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपने सर।
2: पापा लाइए 3,000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
2: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ।
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
2: और किसान भैया, अब देखो थोड़ी सी बात, अपना जिका दाव डांडा रखा बैंक वास्ते कर लिया, जिका अपना पालतू पशु है वेन है जी को अपना संतुलित पशु आहार खुआवा तो ज्यादा ठीक रहे। अबे बात आवे भाई संतुलित पशु आहार कैन तई कहीं वास्ते, तो देखो संतुलित पशु आहार है जी को पशु री जी की दैनिक जरूरत है शरीर रे मायने, जिका शरीर चालन वास्ते, बीरी वृद्धि रे वास्ते, दूध उत्पादन रे वास्ते, बिंग के वास्ते बीरे अनुसार बिने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और विटामिन एकदम सही अनुपात रे मायने होना चाहिए। नहीं जना कने आप कहवा ना भाई दूध कम है या बजे गावड़ी थाक्यूड़ी है या बैं थाक्यूड़ी, तो ये सगली चीज़ा आहार रे माते निर्भर गया। ओ पशुआ ने स्वस्थ राखण वास्ते और बिरा दूध उत्पादन बढ़ाने वास्ते बेहद ही जरूरी है। अब ये संतुलित पशु आहार राजी का मुख्य घटक है, वेन रे बारे में आप थोड़ी सी बात करा तो एक आदर्श और पौष्टिक पशु आहार बनाने वास्ते अपन ने अनाज, मक्का जो या गेहूँ, दलिया इनको मिश्रण लेवा तो ज़्यादा ठीक रहे। खड़ खड़ रे मायने सरसों री खड़ है, बिनोलाड़ी खड़ है, सोयाबीन री खड़े बा देशका चोकर या दाल चुन्नी फाइबर और प्रोटीन भरपूर या करे गेहूँ रो चोकर, अरर, चना री चूड़ी चूरी और खनिज रो मिश्रण जिका अंग मायने आप देशका हड्डियां मजबूत करे और मिलरन मिक्सर और नमक रो आप मिक्सर देशका। और साग साग ये एक बहुत ही जरूरी बात किसान भैया के अबार मानसून रो टेम चाले और मानसून रे टेम रे मायने अपने जिका भारत रा माननीय प्रधानमंत्री जी है बे जी को कहवे कि भाई बरसात रे पानी जी को है वो अमृत है जो बरस है, तो ये अमृत ने आप है जी को यहाँ एड़ो मत गमो क्यों रो मतलब घरारे माते ई टाइप री व्यवस्था करो के घरारो पानी छत्रो है जी को सगड़ो कोई टांकारे मायने या कटई और कोई संग्रहण है दिन के मायने भेड़ो जावे और वो अमृत है जी को अपने दाव डांडा बात है, खेती बात है या पछे पीवन रे वास्ते साल भर काम अबोरे ई रे सागे सागे आप यहाँ करा बरसात हुए तो कोई कुआ है तो बैंको कूप पुनर्भरण भी करा कुआ रे मायने है जी को छोड़ा तो वो भरी जी जना पानी है जी को जल स्तर ऊपरे भी उठी, तो ऐ सगली बात आप ध्यान रखा ई वर्षा रे मायने आप वर्षा जल संरक्षण रो पूरो पूरो प्रबंध करा करियोड़ो है तो बिने साफ सफाई करा कटई नाडी रे मायने पानी जा रही हो तो रस्ता रे मायने कोई मान लो अवरोध है या साफ सफाई नहीं है तो बा सगली है जी को सुनिश्चित करा और बरसात रे जी को ये अमृत रूपी पानी ने आप संचित करण रहा।

जाबता जतन करा। और अब देखो किसान भैया, आप बातें ही बातें करा, आप क्या देव इन वास्ते, अब आपने सुनावा लोक गीत जिना और यो जिकान गावे है चंपा मैथी और हमारी पार्टी।

अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमय चैनल। शाम के 7:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के मिले जुले स्वरों से सजा हुआ यह गीत। फिल्म का नाम है कारवां। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत RD बर्मन का है।

फिल्म संगीत में अगला गीत आपको सुनवाते हैं जीने की राह फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से। लीजिए अगला गीत आपके लिए अनोखी अदा फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुर की है और सुरों से इस गीत को सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म संगीत का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है फ़र्ज़। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से। अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म रूप तेरा मस्ताना से।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हमजुली से, आवाजी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की है, गीत आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर और क्षमा कीजिए आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाई फिल्म हमजोली के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगा हर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं लोक गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबंद।

0: Hello, Gurband, Ram Ram Shah.
1: Hey, Ram Ram Shah, Ram Ram Shah, Abhranyam Vijay Gokinir Gaon Vijay.
0: Naam Prem Kumar Pradapal, Gaon Champasar, Dilo Phadobi.
1: Oh, ho, Prem Ji, Champasar mein koi karo.
0: Kaka, Dariyam Bande kaam kara, kheti baadi kara aate.
1: Are you why you walk the yellow com kid of jelly?
0: Com pretty sale.
1: Hey, kitty body and cookery.
0: Kitty body, take a ball. He had the story. They would be happy in the dawn. I in the dawn, Karan, Baki, and Bayaki, but a part of the day.
1: Are you why you are Ramji kid you ship it? Or come meet Pivar Misha Pian you?
0: Sabotiga, what the putty I am.
1: Hey, Binri Aga, you won't get it, Tony?
0: No, Binri Aga, won't get a con, got a Binri Aga.
1: आज कौन करोगे ना बिन्नी होगा नहीं करे तो आधे हाका करो कोई बिन्नी ने
0: नहीं नहीं कौन करा
1: अरे वाइशिया प्रेम शुरू जो की बात दी वो को एक सवाल करी उसका जवाब भी ना होगे कहीं
0: हाँ बताओ काका पूछो
1: ए चलने को तो चलता हूँ गर्मी में सुख पहुँचाता हूँ पैर भी है मेरे दीन मगर आगे नहीं बढ़ पाता हूँ कहीं होता है
0: काका कौन नहीं समझ पायो
1: ए लुंगे
2: कहीं को काका
1: ए भाई हार गया हम जीत गया है
2: काका तो एक कर में हम जावे जड़ो है
1: हे तो हमज में आऊं जाए तो तुम कहीं भाई की तरफ जाऊं का कहीं
2: आऊं भाई जी ने बताई तू कोई काका
0: हां राम राम मणि भाई
2: राम राम साहब भाई जी निनान करो खेल दी नीचे उबा हो
0: मैं तो दरी बिना हां मैं तो अन करे थे लुगाई टाबर
2: दरी बिना
0: हां
2: दिन रात कितना दिन एक दरी बन लो
0: ए तीन चार नौ दो तीन नौ चार पौने डिजाइन आरू हाँ हुती वाली दरी बनाए
2: ए काके ताने आड़ी पूछी जकीरो और तू ए के तीन पंख रहा हूँ और गर्मी में सुख पहुँचा तो तब तू पंखो हुए तो
0: ओ पंखो हुए छत पंखो
2: हाँ
0: हाँ ठीक ठीक
2: और प्रोग्राम केड़ो लगे
0: प्रोग्राम बढ़िया लगे बहुत ही बढ़िया लगे हंगलाई होना परिवार हंगलो हंगलो
2: हाँ दरिया बनता रहो रेडियो चालतो रहे
0: हाँ रेडियो चालतो रहे दरिया बनता रहो
2: आज कहीं होना ला
0: आज एक बार आओ तुम्हें जी पौन होना तो नौ ले हूँ थोड़ा
2: हाँ ले लो सा
0: लीला कुमारी
2: हाँ
0: संतोष कुमार कोमल कुमारी तरुण कुमार टाबर टिंग सब होने
2: काका आयो
1: आ बेटा
2: भाई जी के जान दो एक बार आओ नहीं जवाई जी पावना
1: ओ जा मारी बेटी

0: सरकार राम राम।
1: ए राम राम जय, राम राम जय। आप नाम विजय कोकिनीर गांव विजय।
0: नाम शिवलाल है, कुमारवाड़ा में बोलो।
1: ओहो शिवजी, कुमारवाड़ा में कोई करो
0: माला
1: भाई? माला तो भेज नहीं पड़ी, जिन उम्र कती ले लियो?
0: उम्र 64 है।
1: ओहो जना माला भेजो, माला गिड़का काट बोकरो पीरे और टाबरिया खाई करियो।
0: टाबरिया धंधा मा जावे, काम करे आप रो।
1: अरे वाह, सेवा जोगी बात है, पोता पोती टाबरिया सेवा करे थोड़ी। हाँ जोगी बात है। ए भाईयो
0: तू
1: मारे बटका भरती बोलिया, हाल प्रेम से नहीं कह सकती। कहीं कहीं कहते हो काका?
2: आने काका ते अंबर तो कौन सुखो मीठा दिराव मीठी बोलू ना।
1: अरे राम राम राम, आमा रोजी नहीं खावे, आज दिराव थे भाई भोने दाजी रुके। राम राम शाह।
2: राम राम सर, राम राम सर। दाजी तबियत पानी केड़ो के थारो?
0: ठीक है सर।
2: फेरो?
0: हाँ मारा करू लोनी भाई।
2: काका अड़ दई आका कौन करो, कोई चुड़ो कला कौन हो? ए काको तो बुढ़ा वे जू जी अना आपी खोड़ी ला उता जावे लोटो जलावे रे, एक सेकंड जे लेट हो जावे तो आका करना हारू कर दे।
0: अब या ने के बुढ़ा वे ना आका तो करबो करे तो
2: या बताओ, पुराने जमाने में हाथ तू बिलोणो करता ना?
0: हां पुराना जमाना में हाथ में करता तो बिलोणो,
2: हाथ तू बिलोणो करता तो काई काई सामान चाहिए तो बाको नाम बताओ।
0: लेनो रे, नेत नेत रे,
2: हां
0: हरी रे, बिलोणो एर हिंगलो। मारे डिगी पूरी का राजा बाजे से बाजे से बाजे।
3: राम राम काका, पता लागू।
1: ए जी उदारो राम जी थोरी लोमी उम्र घरे अंधन का भिंडार भरे आप रो न्याओ भिजो को गिनीर गांव भिजो।
3: नाव राकेश एतरा गांव रूपातले।
1: ओहो राकेश भाई, रूपातले में कोई करयो?
3: पढ़ाई करा काका, एयरफोर्स से तैयारी करा।
1: ओहो ए भी हाउल भिजो काके ने
3: काका, हवे जाता हम लागा।
1: ओ हवे जे हम लागो। ओ हा भाई, ओ जोगी बाजे थारे माई दान आशीष सब कुछ हुई, टेंशन मत करो भाई। ओ माई दान को कारज मत भूल जियो।
3: हाँ सही है काका।
1: हे माई दा पाने भगवान होते हैं देखो भैया।
3: हाँ माई भगवान हो।
1: पड़े आए लिखा आए आपने जार आंखें दी बेचारे।
3: हाँ काका सही है।
1: जो की मेहनत करो राम जी, आपने सफल बिना वेर को एक सवाल करे उसका जवाब बिना हो।
3: हाँ बताओ।
1: ऐसा कौन सा पेड़ होता है जिसके लकड़ी नहीं होती है?
3: इमली।
2: कहीं को काका?
1: ए भाई के आमली तुम कहीं के उठाओ?
2: आमली नहीं होती है काका।
1: ए तो कहीं होती है?
2: ए वो तो केला होता है, केला का पेड़।
1: आज ये वेरी गुड ढेंगू भाई को बोलो हेलो।
2: हेलो
3: ए काका, मैं राम राम लूनी भाई।
2: राम राम सर, राम राम सर।
3: एक पहले मैं तुम्हें पूछूं?
2: पूछो यो।
3: ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा आती है पर कभी नहीं आती?
2: वो क्या कल होता है क्या?
3: हाँ कल सही लूनी भाई।
2: और प्रोग्राम केड़ो लगे?
3: प्रोग्राम लूनी भाई बहुत शानदार लगे, बढ़िया लगे।
2: प्राइवेट पढ़ो कहीं हो?
3: हाँ प्राइवेट।
2: घर बैठ रहे?
3: हाँ घर बैठ पढ़ा सा।
2: बढ़िया सा, बढ़िया सा। आज कहीं होने ला
3: प्रोग्राम? आज बाजे सो बाजा राजा, मेरे डीगी का पूरी राजा सुना दो।
1: ए कहीं के भाई?
2: भाई जी के डीगी पूरी का राजा लो
1: सुनाओ। ए तो क्या मारी बेजा।

0: नाम ऊंचा करो बेचारी और गांव में परिवार में सब क्या नहीं बीरा
1: सब ठीक है।
0: ए प्रोग्राम कैसे हो लोगे थोने हो
1: प्रोग्राम ठीक लगे
0: ए ठीक लगे जी ने एक बात बीजो के खेत बाजिया कौन भैया खेता ने
1: कहीं भैया कहीं कौन भैया
0: आज ए तुम्हारे माताजी पिताजी कहीं करते हैं
1: कितने काम करे
0: और जो की बात जी बेटा ए लुंगे
2: हाँ काका
0: ए भाई ये जो को बड़ी करता तुम भाई को बोलो हेलो
2: हेलो भाई राम राम सा
1: राम राम सा राम राम सा
2: भाई जी दिनों दापुरा
1: हाँ गाय है
2: गाय के चरना हुयो कोई आड़ा में किन चरियो वो हरियो घास है
1: हाँ गणो उड़ो है
2: खुली चराओ बांध उड़ी ते नीरो
1: खुली चलावा
2: हाँ सही है बांध बांध मेहर काकी तो श्याम का छाबड़ी भर लावा काकी निनान करे तो मैं लारे कचरो चुगबो करूं कटो भर लिया वाओ
1: हाँ मैं चुगू कचरो
2: ए गाड़ी बताओ
1: हाँ बोलो
2: सिर पर कलंगी पर मैं चंदा गरजे बादल नाचे बंदा कहीं होता है
1: मोर
2: सही है सा और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है
1: हाँ
2: आज कहीं होनोला
1: कार्य कोच पूरे मेला में

0: राम राम काका करेजड़ा बोल रहे उमान राम।
1: आओ हो उमान जी करेजड़ा में कोई करो
0: कैंकरा साहब खानो खावा काका जी आज तो
1: आज खानो जिम जाओ जी ने कहीं खेत में जिमो के घर जिमो
0: खेत में जिमा काको जी खेत में जिमा।
1: अरे वाह शिवा कोई कोई बनायो भींगड़ी हो
0: आज तो शिरो बनाई है संडे को दिन हो बेरोजी महाराज को प्रसाद चाटियो चुको।
1: अरे वाह शिवा जो की ए भाई यो
0: हाँ
1: ए मैं बानी गई शो के करेजड़ा कनी यो
0: अभी तो है काको है
1: ए राम जी गरी राम जी माने ने जीरा को और बेटो घर में परिवार में सब क्या नहीं हो
0: सब सब मौज मस्ती बेका का सब मौज मस्ती।
1: आए भींगनी लाड जा के आज हीरो बना खुले हुए
0: आओ घणो ही लाड की कौन रखे लाड तो आपा कमार ले दिया टेमो टेम लाड तो राखे जी।
1: अरे वाई वाई क्या के उन्हें तो एक काका एक सवाल करता उसका जुबा बीड़ो।
0: हाँ बताओ।
1: ए चार पैरों वाली वो क्या चीज है जिसकी जरूरत हर किसी को पड़ती है।
0: चार पैरों वाली चीज है
1: अच्छा
0: भैंस होती है वो तो देने में साइज है मानसो है छोड़ने साइज है।
1: आज मानसो वो एक भैंस हुई हाई आई बताओ मुझे
0: मानसो जरूर से जरूरी है मानसो तो
1: आई लुंगे।
2: हाँ काका।
1: ए भाई मेरे को डालता नहीं मेरे को पहले तो उड़ जाता है फिर उड़ जा देता। ए भाई को बोलो हेलो
2: हेलो।
0: हाँ लड़ू भाई राम राम।
2: राम राम सर राम राम सर भाई जी यो काय करू काके ने अतई करने ले रहा हूं बस काके रहा के बोतल और छाता रे ले रहना पड़े चीटी और
0: आजो शिरो जिम लियो शिरो बनायो मैं तो आजो
2: ए शिरो जिम ते बेटा मौज करो निनाण करो
0: निनाण नो मैं तो कौन करा मैं तो मारो और ही काम करा कोई।
2: अच्छा और काम करो।
0: हां निनाण घर का करे मैं कौन करा।
2: हाँ तो लिखा ले आओ मौज तावड़े बोलने कौन पड़े थाने तो
0: तावड़े तोड़े कौन बड़ा संडे को दिनों फरी बैठा जन काकालो फोन तो मिला लिया
2: काकू के वा के मानसो वेर थी को भैंस वेर मानसो वे कुर्सी भी उसके तो
0: कुर्सी के।
2: हाँ
0: कुर्सी तो कई ग्राम लड़ी भाई हुए कौन पर मानसो हर घर में हुए।
2: सही है मानसो जरूरी हुए
0: मानसो से जरूरी हुए पहले।
2: सही है सर आज कहीं होना ला
0: ताड़ियो कूद पीड़ियो मेला में
2: काका आयो
1: आ वीडियो
2: भाई जी गीत सुनाया
1: ए ओइ क्या मारी बेजी।

0: राम राम काका जी।
1: ए राम राम शाही अब्रोन्यो वीडियो को किनिर गांव वीडियो।
0: हेलो गांव है जी अनूप शहर तहसील बादरा जिला हनुमानगढ़ है जी।
1: आओ हो कौन बोलता हो?
0: मैं गजानंद शर्मा बोलूं जी।
1: ओ गजानंद जी बड़े भादरा में कोई करो
0: काम तो रंग पेंटिंग में काम करा जी।
1: ओ के लोग जाओ बार चौमासा में हो?
0: हाँ अब थोड़ा कम है चौमासो है बताऊँ।
1: जो की बात जैसा देखो जो आदरो काम है जी को तो जो करना ही पड़े सा।
0: हाँ करना पड़ेगा काका जी।
1: और जो गांव में परिवार में भादरा का निशब कैसा है?
0: एकदम आनंद मंगल खुशहाल है सब।
1: ए माका जो प्रोग्राम कैसो लगता है?
0: आरो प्रोग्राम बहुत जोरदार लगा काका जी तारीफ करा बिकती भी थोड़ी है।
1: गजानंद जी रो भादरो फोन है तुमसे कहना चाहूंगा है बात करना चाहूंगा बोलो। हेलो
2: हेलो राम राम सा पगे लगो
0: भगवान बनाए रखे।
2: और तबीयत पानी की करे आप रो?
0: हाँ एकदम बढ़िया भाई।
2: टाबरिया कहीं करे हो?
0: टाबरिया एक आईटीआई कर ली एक पीएचडी का पेपर दिया है एस ग्रेड का पेपर दिया है।
2: बढ़िया सब बढ़िया जना एक पर्सन थी बताओ।
0: हाँ जी
2: काली काया कड़वी बोली
0: जी
2: लेकिन चतुर कहलाता है वह कौन सा पक्षी होता है?
0: कोयल।
2: कोयल नहीं होती है
0: कौआ।
2: हाँ कौआ
0: कौआ
2: पक्षी हमें चतुर कागलो हुए।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ सही भाई।
2: पशुओं में चतुर कौन हुए?
0: पशुओं में पशुओं में भाई जान कौन
2: काका थान ध्यान
1: हो।
2: अरे काका बांदर नहीं होते थारे नैना थकारी कानी हुंडड़ी कौन की चालाक लोमड़ी।
0: चालाक लोमड़ी
2: आज कहीं उड़ाला भाई जी हो?
0: आज संगत कराला निर्मल सागरी
2: काका आयो
1: आ बेटा
2: गजानंद जी हाथ संगत कर लो।
1: ए ओ जा मारी बेटा।

0: अरे काका जी राम राम सा।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही, अभ्रोन्यों भीजो खोके नीर गांव भीजो।
0: गांव तो भगवाना है, नाम खाना राम है ही।
1: औ हो कौन जी भगवान में शिव गया नहीं हो।
0: ठीक है काका।
1: ए थारी तबीयत पानी गया नहीं।
0: अब ठीक है।
1: आओ हो यही बात जैसा मैं पानी कैसे हो गये हो।
0: अबे मांगे पूरे ही पर हाथ को नहीं आवे।
1: ए करी राम जी माते ने जो राखो, राम जी करी हो, यान मत करो, टेंशन मत करो। और बचो गांव में परिवार में हगला किया नहीं हो।
0: रेडी रहे थे काका।
1: ए कहीं हो तो लाऊं जाओ दुकान में तो।
0: हाँ आओ नी मेर बे धानिया रुक जी हाथ ही आवा बे याद करता तेरे धानिया रुके राम जी अपनी।
1: आज मैंने रामा श्यामा कही जो एक मारे हिसाब पूछ गयो जी को करो नहीं हो।
0: अबे याद तो काका अब जमा न उड़ दे करा बार कटे हिसाब।
1: अरे छे होड़ो तो शरी हो।
0: करो करो
1: ए तेरा तेरा कीता हुए हो।
0: सही सुबह
1: ए पाचा तेरा कम कर दे दिन लार की तरह दे दा बजो जी कनी।
0: तेरा तेरा तेरा तेरा
1: ने तेरा ने मेरा लुन गया।
2: कई बात है काका, कई हरू या तेरा मेरा करता।
1: अरे भाई एनी मने फसावे जन मैं आज भाई ने फसा दियो जी। भाई एनी मन पाछो फसा दियो तू जवाब कर दिया भाई को बोलो। हेलो
2: हेलो।
0: हां बेटा लुड़ा राम राम।
2: राम राम सा, राम राम सा। पगे लागू।
0: खुश रहो बेटा, खुश रहो।
2: और की करे आपरो तबीयत पानी?
0: तबीयत तो बस ठीक है लुड़ी।
2: वाजन वकी खेत हरियो दिखे जन चौकी रेवे तबीयत है?
0: हाँ ठीक रेवे।
2: अरे यहाँ बताओ ई रुद्र महीने आप किसा किसा धान बाई सका खेता में?
0: मैं एक आपने सियर ऊपर फल छोड़ सगे बो गनी मोट बाजरी ग्वार ज्वार मैं ते सगे आई जा नहीं भाई।
2: अगले आ गया।
0: ओ मारे रुगे ताने याद करता करे धानियावा।
2: अरे बाने रामा समा कई जोर के वो प्रोग्राम हुनो टेमो टेम।
0: दे टेमो टेम हुने आ वो फांग धान के साले नी मैच जरे कोनी मांग के तब आ गए।
2: आ मार मैच समझ कोनी आवे।
0: वो आ तो कमी ना आ तो 8 बजे आ जे ही।
2: हां हां आ तो आ जे 8 बजे।
0: वाह वाह बेटा।
2: जन आज गीत की सो हुनो ला।
0: आज बाबा रामदेव और पाजो भजन हुना आई दे गोड़लियो घुमा दे मां।
2: काका आयो।
1: बिजो
2: कान्हा राम जी के गगवाने तई घोड़लियो घुमाई दो।
1: ओइया वाली बेटी।

0: हे मारे भैया ओ तो भयंगी बोयंगी शिवगी पीसीन को पोगाम।
1: हेलो गोरबान
0: ही पोगाम में कोई बाइक की दे बजने हूं ना जाऊं दाए तुम कहीं क्यों ता हो
1: तो काका दी त्वार के दिन 12 बजे ले प्रार 1 बजे तो नागौर आकाशवाणी फोन करना है। नंबर है मेंडी 1582 दुओ
0: अहे
1: दुओ चको मेंडी 1618
0: आए वाह मारी बेटा जीवती रे ए भाई
1: काई को काका
0: ए भैया का फोन है जुमे की कुमी हम लेनी सीखा तो उनका पाना बांचो बेटा।
1: ए काका भीरमदास जी दो तीना हूँ है काका सरवण जी बिच्छू सिनियाला हूँ है काका निजामुद्दीन जी कुचेरा हूँ है मनीष मुकेश खिलेरी संकवासी हूँ है काका।
0: हाथ जोड़ के अगले दीदवार का फोन गड़गड़ी जो
2: इस कार्यक्रम में काका की भूमिका में थी सुभाष कंडारी और लोणी की भूमिका में थी भीकी देवी चौधरी।
0: ओ भाईयो
1: काको काका
0: अब बदो आज के प्रोग्राम में तकनी का हयो किसका ही
1: ए है दुर्गा राम जी बाम्बू
0: आज के प्रोग्राम के फसदूत गीता
1: ए अशोक कुमार गोयल
0: अब हंदीश लगो मारी बेटा
1: ए स्वस्थ रहो हेलो गवर्नमेंट
0: तब आप रे कोके नीर होगी
1: ए लूण की ने दिरा उसी कर करते हैं
0: रोम राम शाही।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबंद। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 MHz पर। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर

0: निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मूज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मूज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मूज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मूज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
3: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। यह अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।

0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
2: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुआ हांजू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन ही बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सिमी समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील है। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रखा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वह नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 103.7 MHz पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिन्ह चैनल। रात्रि के 9 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। इसमें आज हम सुनेंगे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई चंद गजलें। पेश है पहली गजल।

0: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में गाई इस गज़ल के साथ ही हमारा आज का ये सुगम संगीत का प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
1: ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गाना आत्माराम फिल्म से है। इसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। गीत विश्वेश्वर शर्मा का है, संगीत है शंकर जयकिशन का।

आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में हम सब उस्ताद हैं फिल्म का गाना। गीत असद भोपाली ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का,

कार्यक्रम के अंत में सुनिए स्वयंवर फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, गीत गुलजार का है, संगीत राजेश रोशन का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

बिमल रॉय के पिता हेमचंद्र रॉय की पूर्वी बंगाल के सुआपुर में जमींदारी थी, जो आज के बांग्लादेश का हिस्सा है। बचपन की पढ़ाई लिखाई हुई थाना धामराय के अरमानी टोला स्कूल में। बचपन में बिमल दा को चित्रकारी करने और वायलिन बजाने का शौक था। उन दिनों सुआपुर की जमींदारी में दुर्गा पूजा के मौके पर मंचित किए जाने वाले नाटकों में भी बिमल रॉय भाग लिया करते थे। इन्हीं में से एक नाटक था मिस्र कुमारी। 1957-58 में इसी कथा को बिमल दा ने सेल्यूलॉयड पर उतारा था। यह फिल्म थी यहूदी।

बिमलदास जिन दिनों ढाका के जगन्नाथ कॉलेज में पढ़ रहे थे, पिता हेमचंद्र रॉय का देहांत हो गया। जमींदारी की देखभाल करने वाले मैनेजर ने अमानत में खयानत करते हुए जमीन जायदाद हड़प ली और बिमलदास का परिवार सब कुछ लुटाकर खाली हाथ कोलकाता चला आया।

वक्त की इस बेरहम मार से घायल बिमल दा को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर परिवार के लिए रोजी रोटी जुटाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। दक्षिण कोलकाता के चक्रबेरिया रोड पर उन्होंने एक किराए का मकान ले लिया और संघर्ष में जुट गए रोजी रोटी के।

बिमल दा रोज ही न्यू थिएटर्स और अन्य स्टूडियोज के चक्कर काटने लगे। बस किराए के पैसे बचाने के लिए पैदल चलते। खैर, न्यू थिएटर्स में बिमल दा संपर्क में आए प्रमथेश बरुआ के, जिन्होंने बिमल दा को फिल्म अधिकार की स्टिल पब्लिसिटी से संबंधित काम की जिम्मेदारी सौंपी। न्यू थिएटर्स में बिमल दा फिर नितिन बोस के सहायक हो गए और न्यू थिएटर्स में ही उन्होंने सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ निर्देशन की बारीकियां सीखी। सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम करते हुए बिमल दा ने न्यू थिएटर्स की जिन फिल्मों को सेल्यूलॉइड पर उतारा वो थी गृहदाह, माया, मुक्ति, बड़ी दीदी, अभिनेत्री और प्रमथेश चंद्र बरुआ निर्देशित देवदास।

0: अब दिन
1: न्यू थिएटर्स के श्रेष्ठतम छायाकारों में शामिल बिमल दा अपने अनुभवों के आधार पर फिल्म निर्देशन में अपनी प्रतिभा को आजमाना चाहते थे। जल्द ही उन्हें मौका मिला और उन्होंने न्यू थिएटर्स के लिए निर्देशित की फिल्म उदेर पौथे। फिल्म की नामावली में स्थापित नाम थे कंपोजर आरसी बोराल और तत्कालीन बांग्ला रंगमंच के नामी कलाकार विश्वनाथ भादुड़ी के। कई लोगों ने इस फिल्म के बुरी तरह फ्लॉप हो जाने की भविष्यवाणी कर डाली। फिल्मों से जुड़े लोगों और समीक्षकों ने भी इसके विरोध में ही विचार व्यक्त किए। 1 सितंबर 1944 को फिल्म उदेर पौथे कोलकाता के चित्रा सिनेमा घर में रिलीज हुई और इस फिल्म ने न्यू थिएटर्स की पहले की सभी फिल्मों की कामयाबी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चित्रा सिनेमा घर में यह फिल्म एक वर्ष तक हाउसफुल चली। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसका हिंदी संस्करण बनाया गया हमराही। इसके बाद बिमल दा ने जो दो और फिल्में निर्देशित की वो बुरी तरह असफल रहीं। फिल्में थीं अनजानगढ़ और मंत्रमुग्धा। न्यू थिएटर्स के लिए उन्होंने आखिरी फिल्म निर्देशित की पहला आदमी, जिसके प्रीमियर के लिए बिमल दा जब मुंबई आए तो दादर के चेतना सिनेमा में उनकी मुलाकात हुई अपने मित्र हितेन चौधरी से, जिन्होंने सावक बाचा और अभिनेता अशोक कुमार को बिमल दा के नाम की सिफारिश की फिल्म निर्देशन के लिए। और इस तरह मुंबई में बिमल दा ने बॉम्बे टॉकीज के लिए पहली फिल्म निर्देशित की मां। यह फिल्म जिस अमरीकी फिल्म से प्रेरित थी वो थी ओवर द हिल्स। लीला चिटनिस को दी गई मुख्य भूमिका और रोमांटिक लीड में अनुबंधित किया गया तब की एक जूनियर आर्टिस्ट मीना कुमारी को, जिनके बदले बाद में श्यामा को रख लिया गया और उनके नायक बनाए गए भारत भूषण। मुंबई में अपनी इस पहली फिल्म के लिए बिमल दा को मिले कोई 25,000 रुपए। इस बीच अभिनेता अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज से नाता तोड़ चुके थे। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति परिणीता के अधिकार उनके पास थे। अशोक कुमार यानी दादा मुनि ने परिणीता के निर्देशन के लिए बिमल दा को अनुबंधित कर लिया। यह फिल्म बेहद कामयाब रही और बिमल दा की प्रतिभा को मिला सम्मान और

0: भारतीय महानगरों में यूरोपीय सिनेमा की चर्चित फिल्में भी दिखाई जाने लगी थी, जिनके माध्यम से भारतीय फिल्मकार परिचित हुए। डी सिका, रोजेलिनी और कुरुसावा जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के फिल्मकारों की कृतियों से एक दिन बिमलदा, ऋषिकेश मुखर्जी और एक दो अन्य साथी मुंबई के इरोस थिएटर में फिल्म रोशमोन देखकर बेस्ट की डबल डेकर बस से मालाड लौट रहे थे। सब खामोश थे। ऋषिदा के मन में सवाल उठ रहा था, ऐसी फिल्म हम क्यों नहीं बना सकते। उन्होंने बिमलदा से अपने मन की बात कही। बिमलदा ने फौरन कहा, लिखेगा कौन। खैर, आपसी बातचीत के बाद तय हो गया कि ऐसी एक फिल्म बनाई जाएगी और इस तरह रोशमोन की प्रेरणा से बेस्ट की डबल डेकर बस में जन्म हुआ बिमल रॉय प्रोडक्शंस का। इस बैनर की पहली फिल्म थी दो बीघा जमीन। फिल्म दो बीघा जमीन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इसी शीर्षक की एक कविता से प्रेरित थी, जिसे लिखा था सुप्रसिद्ध संगीतकार सलिल चौधरी।
1: तक तक तक तक तगन तगन गिन गिन रे, जग जग जग जग जगन जगन गिन गिन रे।
2: जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग जग, जग ज

सन 1953 में यह फिल्म केवल 4 हफ्तों के लिए मुंबई के मेट्रो थिएटर में रिलीज की गई, जहां इसके प्रीमियर में आए फिल्म इंडस्ट्री के नामी गिरामी सितारे। फिल्म के प्रीमियर के आंखों देखा हाल की रेडियो के लिए कॉम्पेयरिंग कर रहे थे बलराज दत्त, यानी जाने माने अभिनेता सुनील दत्त।

दो बीघा जमीन को हालांकि उदेर पौधे जैसी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस फिल्म की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। चीन और तत्कालीन सोवियत संघ में भी इस फिल्म को सराहा गया। 1954 में कान फिल्म महोत्सव में इसे सोशल प्रोग्रेस के लिए मिला कार्लोवी वेरी पुरस्कार। ब्रिटिश अखबार मैनचेस्टर गार्जियन और न्यू क्रॉनिकल में भी समीक्षकों ने इस फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा की।

आए रे। लेकिन नौकरी असफल रही। बिमलदा अपने बैनर के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। 1954 में बिमलदा ने अपने दोस्त हितेन चौधरी के लिए फिल्मांकन किया विराज बहु का। अपने बैनर के लिए बिमलदा ने शरद बाबू के उपन्यास देवदास के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसी उपन्यास पर प्रमथेश बरुआ की फिल्म का छायांकन बिमलदा ने ही किया था, जिसमें नायक थे कुंदनलाल सहगल।

अपने बैनर तले निर्मित की जाने वाली फिल्म देवदास में पारो और चंद्रमुखी की भूमिकाओं के लिए विचार किया गया नरगिस और मीना कुमारी के नामों पर, लेकिन चुना गया सुचित्रा सेन और वैजयंतीमाला को। नायक की भूमिका के लिए चुने गए दिलीप कुमार। चुन्नीलाल की भूमिका दी गई मोतीलाल को। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।

बिमल रॉय प्रोडक्शंस का भविष्य इस फिल्म के जरिए दांव पर लगा हुआ था। '58 में निर्मित पुनर्जन्म पर आधारित फिल्म मधुमति बेहद कामयाब रही और मधुमति ने बिमल रॉय प्रोडक्शंस को गहरे आर्थिक संकट से निकालकर किनारे पहुंचा दिया।

1959 में निर्मित बिमलदा की फिल्म सुजाता एक और बेहद खूबसूरत और मासूम सी फिल्म है। सुनील दत्त और अभिनेत्री नूतन की जोड़ी के काम को इस फिल्म में बहुत पसंद किया गया। फिल्म सुजाता बिमलदा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है।

बंदिनी बिमलदा की एक और बेहतरीन कृति है। नूतन, अशोक कुमार और धर्मेंद्र अभिनीत ये फिल्म हिंदी सिनेमा की अनमोल धरोहर है। इसी फिल्म से बतौर गीतकार शुरुआत की थी गुलजार ने।

0: टैगोर की कृति पर विमलदा ने बनाई एक और मर्मस्पर्शी फिल्म काबुलीवाला।
1: मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े।

विमलदा ने बाहर के जिन बैनरों की फिल्में निर्देशित की वो थी अनजानगढ़, मंत्रमुग्धा, जिसमें उनके सह निर्देशक थे सुदीश घटक, इनके अलावा पहला आदमी, माँ, परिणीता, विराज बहु, बाप बेटी और यहूदी। बतौर कैमरामैन और सहायक कैमरामैन उनकी डॉक्यूमेंट्रीज थी हाउ केरोसिन टिन्स आर मेड, ग्रैंड ट्रंक रोड और बंगाल फैमी। बतौर कैमरामैन विमलदा ने जिन कथा फिल्मों का छायांकन किया उनके नाम हैं मीरा, गृहदाह, नाला थांगल, देवदास, माया, मुक्ति, चंबे दी गली, बड़ी दीदी, अभिनेत्री, उदयर पौथे और हमराही। हमराही उदय पौथेर का ही हिंदी संस्करण थी। विमलदा की अधूरी फिल्म सहारा को उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने चैताली नाम से पूरा किया। विमलदा एक और फिल्म बनाना चाहते थे, अमृत कुंभेर सौंधाने, लेकिन ये फिल्म एक सपना बनकर ही रह गई। 8 जनवरी सन 1966 को विमलदा की जिंदगी की रील चलते चलते थम गई। जिंदगी मौत की बंदिनी बन गई। विमलदा नहीं रहे, लेकिन अपनी महान कृतियों के रूप में वो जो कुछ छोड़कर गए हैं उसके लिए सिनेमा उनका सदैव ऋणी रहे।

0: जाना।
1: अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

अभी आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण सुन रहे थे। एफएम पिंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 10 बजे हैं। हमारी आज की ये सांध्यकालीन प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। अब आपसे हमारी मुलाकात कल सुबह 8:51 पर हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा में होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।